यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 भाद्रपद माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 36 सेकंड हुए हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडिया वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। कार्यक्रम शुरू हो रहा है नमस्कार लखनऊ। स्वीकार करें अनुमेहा गुप्ता का सादर अभिवादन। शुरुआत करते हैं हिंदी समाचार से, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज फलदार वृक्षों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, फलदार वृक्षों की व्यावसायिक बागवानी जहां आप कर रहे हैं वहां हानिकारक कीट और बीमारियों के चलते कुछ नुकसान होता है जिससे आपको वांछित लाभ नहीं मिलता है, तो इन हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन इस समय कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीपी सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो भी फलदार वृक्ष इस समय बागों में हैं तो उनमें हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन?
2: नमस्कार किसान भाइयों। इस समय किसान भाई, जैसे हमारा अमरूद की खेती किसान भाई कर रहे हैं, जैसे आप देखें कि आज का जो हमारा अमरूद की फसल आ रही है उसमें सबसे पहले किसान भाई देखते हैं कि उसमें एक डांसी मक्खी का प्रकोप जो है सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसमें किसान भाई जब देखते हैं कि पहले उनका अमरूद जो है देखने में अच्छा दिखता है, लेकिन जब उसको हम काटते हैं तब अंदर में देखते हैं तो छोटी छोटी कीड़ी जो है उसमें दिखाई देती है। तो ये जो कीड़ी होती है, ये जो डांसी मक्खी होती है, उसी डांसी मक्खी का जो है छोटा मैगट, इसको लार्वा हम लोग बोलते हैं।
1: ये क्या फल मक्खी है क्या?
2: हाँ, फल मक्खी भी इसको बोलते हैं, इसको किसान भाई डांसी मक्खी या फल मक्खी भी बोलते हैं।
1: जी।
2: तो इसको क्या होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं, जैसे एडवांस जो है थाई गुआवा का खेती कर रहे हैं,
1: हाँ।
2: अमरूद की जो है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, उसमें कम फल लेते हैं तो क्या है, बैगिंग कर देते हैं इसे बचने के लिए जो शुरू में ही। लेकिन क्या है कि जो हमारे इधर उन्नाव का बेल्ट है या हमारा इधर आपका इलाहाबाद का है, तो यहाँ पे जो किसान भाई अमरूद की खेती करते हैं तो उसमें जो प्रबंधन के लिए किसान भाई क्या काम करते हैं कि इसका मिथाइल यूजिनाल का ट्रैप लगाते हैं। तो जब उनके अमरूद की साइज थोड़ा सा मटर से थोड़ा बड़ी हो जाती है तभी किसान भाई क्या है उसमें जो आपका 8 से 10 ड्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई लगाते हैं,
1: यानी लुभावना चारा एक तरह।
2: लुभावना चारा है। इसमें लुभावने चारे में क्या होता है कि इसमें जो कि एथेनॉल एक केमिकल होता है और प्लस मिथाइल यूजिनॉल होता है और एक मैलाथियन जो है जहर होता है, इसको मिला करके हम लोग जो है इसको जो अनुपात जो होता है 6:4 और 2 के अनुपात में जो है बना करके इसमें चाहे लकड़ी का गुटका डुबो देते हैं या कोई जो है सूती रस्सी होती है मोटी,
1: जी, जी।
2: उसको हम 48 से 72 घंटे अगर हम उसमें डुबो देते हैं, फिर उसके बाद में क्या है कि कोई भी हम अपना ले लेते हैं, चाहे ट्रैप खरीद लेंगे मार्केट से, नहीं तो किसान भाई क्या है कि जो पानी की बोतल आती है उसमें 4 छेद कर देते हैं आमने सामने,
1: जी।
2: और उसी में अगर इसको लटका देंगे, इससे किसान भाइयों को देसी तरीके से बहुत ही अच्छी जो डासी मक्खी या फल मक्खी का कहने के बाद किसान भाई प्रबंधन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान देना है कि इसमें वो लगाएंगे लुभावना ट्रैप कैप्सूल, उसमें इसको हर 1 महीने के बाद में उसको चेंज करना पड़ेगा,
1: यानी परिवर्तन करते रहें
2: तभी वो अच्छा काम करेगा।
1: तो अगर नुकसान का स्तर अधिक है फल मक्खी का, तो उसका क्या सुरक्षात्मक छिड़काव भी कर सकते हैं?
2: इसमें क्या है कि छिड़काव किसान भाई जब पता चलता है कि इसका अधिक स्तर होता है तो छिड़काव तो हम नहीं इसमें रिकमेंड करेंगे किसान भाई, क्योंकि क्या होता है कि जो अमरूद का फल रहता है बीच बीच में पकता रहता है, किसान भाई उसको तोड़ते रहते हैं मार्केट में बेचते रहते हैं, और जहरीले रसायनों का जो प्रभाव होता है वो ज्यादा दिन होता है, तो जो भी अगर हम लोग खाएंगे या जो भी उसको मार्केट में लोग खाएंगे उसी तमाम तरीके की उनको बीमारियां होती हैं।
1: जी।
2: तो इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि जो हमने बताया कि आपका मिथाइल यूजिनॉल और जो आपका मैलाथियन है इसका बना करके घोल जगह जगह ऐसे ही लटका देते हैं, या जो टब होता है छोटा उसमें रख देते हैं जगह जगह पर पे, तो इससे भी उनका पूरा नियंत्रण इससे हो जाता है छिड़काव। एक चीज और इसमें करना पड़ेगा कि जो उनको लग रहा है उनके जो बाग में ऐसे फल गिरे हुए हैं कि जिसमें फ्रूट फ्लाई का या इसका डांसी मक्खी का प्रकोप हो गया है,
1: तो उसको इकट्ठा करके
2: नीचे जमीन में अगर दफना देंगे,
1: हाँ।
2: तो फिर उनको आगे कोई छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, अमरूद की बागवानी में एक समस्या और है उकठा की,
2: जी।
1: तो इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, और इसका प्रबंधन बागवान भाई बहन कैसे करें?
2: इसमें क्या होता है कि किसान भाई देखेंगे कि जो अमरूद का उनका जो बाग है उसमें शुरू में क्या होगा कि ऊपर पत्तियां पहले जो है हल्का सा जो है मुरझाती हैं, हल्का लाल पड़ के फिर जो है नीचे गिर जाती हैं, और डंठल क्या है ऊपर से सूखने लगता है, और साथ में कि उसमें जड़ जो है अगर उठा के देखेंगे तो जड़ में हड़का सड़न उनको महसूस होती है, और जब जड़ को उसको फाड़ के देखते हैं तो उसमें काले काले रंग की धारी दिखाई देती है, तो इससे किसान भाइयों को पता चल जाता है ये उठा बीमारी से जो है ग्रसित पौधा है। तो जो पौधा ग्रसित है तो उसको तो तुरंत वहां से हटा देना चाहिए, हटा करके बाग से, ताकि इन्फेक्शन और न फैले,
1: यानी जड़ सहित।
2: जड़ सहित,
1: हाँ।
2: और क्या है कि जो किसान भाई बाग उनकी है उसको क्या

0: ट्राइकोडर्मा नाम का एक हमारा जैविक फफूंदी नाशक है, उसके द्वारा किसान भाई जो 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में अच्छी तरीके से उसमें मिला दें, और मिलाने के बाद में उसमें जो पौधे के 1.5 से 2 फीट छोड़ करके उसमें मिला करके अच्छी से जब नमी खेत में
1: थाले में,
0: हाँ थाले में उसकी अगर गुड़ाई कर देते हैं तो इससे उनको बहुत फायदा।
1: और हल्की सिंचाई भी करनी होगी,
0: हाँ नमी होनी चाहिए, बिना नमी के बाद में ही उसको डालना है, अगर नमी रहेगी तो बहुत अच्छा फायदा इससे किसान भाइयों को होगा।
1: डॉक्टर जीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फलदार वृक्षों में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना फलदार वृक्षों में कीट रोग प्रबंधन विषय पर भेंट वार्ता। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन की शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, आइए सुने सुविचार। आज का विषय है विश्वकर्मा पूजा, आलेख व वाचन डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ला का।
3: विश्वानि कर्माणि यस्य सः विश्वकर्मा, जो एकमात्र ब्रह्म परमात्मा समस्त संसार की उत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत समस्त कर्म करने की योग्यता रखता है, उस परम पिता परमेश्वर को विश्वकर्मा कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इनके जन्मदिन को विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार, वास्तुशास्त्र का देवता, प्रथम इंजीनियर, देवताओं का इंजीनियर और मशीन का देवता कहा जाता है। पुराणों में भी भगवान विश्वकर्मा का समुल्लेख प्राप्त होता है। इसी कारण हिंदू समाज में विश्वकर्मा पूजा का सर्वाधिक महत्व है। भगवान विश्वकर्मा के वंश के विषय में अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों में उन्हें भुवना का पुत्र बताया गया है। महाभारत और हरिवंश पुराण में उन्हें वसुप्रभास और योग सिद्धा या अंगिरसी का पुत्र बतलाया गया है। भगवान विश्वकर्मा के 3 पुत्रियाँ बहिर्स्मति, समज्ञा और चित्रांगदा तथा 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टर, शिल्पी, दैवज्ञ हैं। वामन पुराण में विश्वकर्मा को अप्सरा घृतची का पति बताया गया है। जब विश्वकर्मा की पहचान त्वष्टर के रूप में की जाती है तो उन्हें विश्वरूप नामक पुत्र का पिता भी बतलाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन मिलता है। विराट विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता, धर्मवंशी विश्वकर्मा महान शिल्प विज्ञान विधाता और प्रभात पुत्र, अंगिरावंशी विश्वकर्मा आदि विज्ञान विधाता वसुपुत्र, सुधन्वा विश्वकर्मा महान शिल्पाचार्य विज्ञान जन्मदाता अथवी ऋषि के पौत्र, भृगुवंशी विश्वकर्मा उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य शुक्राचार्य के पौत्र। भगवान विश्वकर्मा शिल्प के देवता हैं। उन्होंने देवताओं के लिए अनेक भव्य एवं आलीशान भवनों, दिव्य अस्त्र शस्त्रों और सिंहासनों का निर्माण किया है। आदिकाल से ही भगवान विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण न केवल मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित एवं वंदनीय हैं। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी आदि का समुल्लेख प्राप्त होता है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनंदिन व्यवहार में उपयोग आने वाली वस्तुएं भी इनके द्वारा ही निर्मित हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। असुरों से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीच की हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया। यह वज्र इतना शक्तिशाली व प्रभावशाली था कि असुरों का सर्वनाश हो गया। इन्होंने ही रावण की नगरी लंका, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर का निर्माण किया। उड़ीसा स्थित जगह।

जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण भी इन्हीं की देन है। यही कारण है कि भगवान विश्वकर्मा का देवों में विशेष स्थान है। शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों, दफ्तरों एवं कल कारखानों की सफाई की जाती है। साथ ही भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों को भी सजाया जाता है। घरों में लोग अपनी गाड़ियों, कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य मशीनों की विधिवत पूजा करते हैं। मंदिरों में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या फोटो की पूजा अर्चना करने के पश्चात आरती की जाती है और अंत में प्रसाद वितरण किया जाता है। इस प्रकार यंत्रों के अधिष्ठाता देवता भगवान विश्वकर्मा का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन की शुरुआत प्रभु की वंदना से हो तो पूरा दिन खूबसूरत हो जाता है। आइए करते हैं प्रभु वंदना कार्यक्रम आराधना में।

ना कोई साथ था मेरे, ना कोई पास था मेरे, मुझे बस तुझ पर ही विश्वास है, बस तू ही साथ है मेरे।

जहाँ भगवान की भक्ति होती है वहीं सच्चा सुकून मिलता है। इसलिए दोस्तों, लकीरों पर नहीं बल्कि लकीरों को बनाने वाले भगवान पे भरोसा कीजिए।

मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है।

हे माँ तू शोक दुख निवारिणी, चंड मुंड विधारिणी, सर्व मंगल कारिणी, शुंभ निशुंभ सिधारिणी।

राम उठत राम चलत, राम श्याम भोर है, राम बुद्धि राम चित, राम मन विभोर है, राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राम से बड़ा राम का नाम, जिसे जीवन में अपनाने से जीवन सुंदर हो जाता है। आइए जपते हैं राम का नाम और सुनते हैं श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे भाग 296।

विभीषण ने श्री राम की पवित्र भक्ति मांगी और वो उन्हें प्राप्त हो गई। श्री राम की वानर सेना के सामने समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण का कहना है कि यद्यपि श्री रघुनाथ का एक ही वाण करोड़ों समुद्रों का जल सोख सकता है, तथापि नीति कहती है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। वो ऐसा उपाय बताएंगे जिससे रीछ और वानरों की अपरिमित सेना बिना किसी कठिनाई के सागर पार चली जाएगी।

0: अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज और सतीश भाटिया की संदेश संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान भाग 296। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनिए संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रभु आराधना के बाद होनी चाहिए कुछ स्वास्थ्य की बात, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है सेहत का खजाना राई, और जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से मसाले की जो हर भारतीय रसोई में पाया जाता है और जिसका स्वाद हर व्यंजन में एक अनोखा तड़का लगाता है, ये है राई। छोटे छोटे काले भूरे रंग के ये दाने जितने साधारण दिखते हैं, इनके स्वास्थ्य लाभ उतने ही असाधारण हैं। ये न केवल स्वाद को बढ़ाने का काम करती है बल्कि शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होती है। चाहे पाचन तंत्र को सुधारना हो, दिल की सेहत को बेहतर बनाना हो या फिर त्वचा और बालों की देखभाल करनी हो, राई का उपयोग हर क्षेत्र में फायदेमंद होता है। राई का उपयोग भारत में प्राचीन काल से किया जाता रहा है। ये न केवल मसाले के रूप में उपयोगी होती है बल्कि आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। भारतीय भोजन में राई को खासकर दक्षिण भारतीय व्यंजनों, दालों, सब्जियों, अचारों और सांभर में तड़के के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी महक इतनी अनूठी होती है कि खाना बनाते ही इसकी खुशबू सुगंध पूरे घर में फैल जाती है। राई को पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये हमारे शरीर में पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने का काम करती है जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है। जिन लोगों को बार बार पेट फूलने, भारीपन या अपच की शिकायत होती है उनके लिए राई किसी औषधि से कम नहीं है। जब इसे खाने में तड़के के रूप में डाला जाता है तो ये भोजन को हल्का और पचने में आसान बना देती है। इसके साथ ही ये गैस की समस्या को दूर करने और आंतों को साफ रखने में भी मदद करती है। अगर आप सर्दी, खांसी या गले की खराश से परेशान हैं, तो राई इसमें भी बहुत कारगर हो सकती है। इसे गर्म पानी में उबालकर उसकी भाप लेने से सर्दी में आराम मिलता है और बंद नाक खुल जाती है। इसके अलावा राई के तेल से शरीर की मालिश करने से ठंड के मौसम में जोड़ों के दर्द और जकड़न से राहत मिलती है। आयुर्वेद में इसे शरीर की गर्मी बनाए रखने वाली औषधि माना जाता है जिससे ये ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है। राई दिल की सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये रक्तचाप को संतुलित रखती है और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। जो लोग नियमित रूप से अपने भोजन में राई का इस्तेमाल करते हैं उनमें हृदय रोगों का खतरा कम हो सकता है। त्वचा और बालों की देखभाल में भी राई का उपयोग किया जाता है। ये त्वचा को निखारने और दाग धब्बे हल्के करने में सहायक होती है। अगर त्वचा पर किसी तरह की खुजली, जलन या रैशेज हो जाएं, तो राई के पेस्ट को हल्का गर्म करके लगाने से राहत मिलती है। बालों के लिए भी राई बहुत फायदेमंद होती है। इसका तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों के झड़ने की समस्या को कम करता है। राई का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है। ये मालिश के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर सर्दियों में। ये शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। बच्चों की मालिश के लिए भी राई के तेल का उपयोग किया जाता है जिससे उनकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। श्रोताओं, राई केवल एक साधारण मसाला नहीं है बल्कि सेहत और स्वाद का अद्भुत संगम है। ये पाचन से लेकर हृदय स्वास्थ्य, बालों और त्वचा तक हर तरह से फायदेमंद होती है। ये न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाती है बल्कि शरीर को भी स्वस्थ रखने में मदद करती है। इसे अपने आहार का हिस्सा बनाइए और इसके गुणकारी लाभों का पूरा आनंद उठाइए। श्रोताओं, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक राई के इस छोटे से लेकिन गुणकारी मसाले का भरपूर लाभ उठाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
0: अभी आपने सुना नीना सोनकर से सेहत का खजाना राई विषय पर जानकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको देते हैं

श्रोताओं, आपको बता दें, प्रातः 10:30 पर आप सुन सकेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से। रात 8 बजे से सुनिए विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत हमारे दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, आपको बता दें, प्रातः 10:30 पर आप सुन सकेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से। रात 8 बजे से सुनिए विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत हमारे दिल्ली केंद्र से। जिले की हलचल आप सुनेंगे प्रातः 9:15 से। आज सुनिए सुल्तानपुर और रायबरेली जिलों की खबरें। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का ये उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी का समय होगा प्रातः 9:50 से और दोपहर 2:45 से। आज सुनिए अनुराधा के गाए कुछ अवधि लोकगीत। बहनें सुन सकेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दोपहर 1:15 से। दोपहर 2:30 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिए फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन विषय पर डॉक्टर नीलिमा गर्ग से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। युवा श्रोता सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 से। शाम 5:45 पर कार्यक्रम नई उड़ान का प्रसारण होगा और शाम 6:30 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोक आयतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिए शशिकांत द्विवेदी गोपाल की आयुष्मान भारत योजना से बदली गांव की तस्वीर विषय पर वार्ता।

शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा किसान वाणी। इसमें आज सुनिए पपीता की उन्नत बागवानी विषय पर डॉक्टर दिनेश कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। शाम 7:31 से कार्यक्रम खेल जगत का प्रसारण होगा। श्रोता शास्त्रीय संगीत का आनंद ले सकेंगे रात 10:30 से। आज सुने विदुषी गिरिजा देवी का गायन। इसके साथ ही श्रोता समय समय पर फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी यहीं संपन्न हुई।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त अनुमेहा विविधा के आज के अंक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मना रहे हैं श्री विश्वकर्मा पूजा। आज का यह कार्यक्रम समर्पित है देव शिल्पी, वास्तुकार और निर्माण कला के अधिष्ठाता भगवान श्री विश्वकर्मा को। भारतीय संस्कृति में विश्वकर्मा पूजा केवल पूजा अर्चना का अवसर नहीं, बल्कि श्रम, शिल्प, तकनीक, औजार और सृजन के सम्मान का पर्व है। आप सभी को श्री विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

मिडिवेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। विविध जानकारियों और रंगों से भरा कार्यक्रम विविधा सुनिए बस कुछ ही पलों में। प्रेजेंटर हैं अनुमेहा गुप्ता और आज का विषय है श्री विश्वकर्मा पूजा।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के दिव्य शिल्पी हैं। उन्होंने देवताओं के लिए भव्य भवनों, नगरों और अनेक दिव्य वस्तुओं का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा से जुड़ी अनेक कथाएं पुराणों और भारतीय लोक परंपराओं में मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार स्वर्णमयी लंका के निर्माण का संबंध भगवान विश्वकर्मा से जोड़ा जाता है। कथा है, उन्होंने भगवान शिव के लिए लंका का भव्य निर्माण किया था और बाद में रावण ने उसे प्राप्त किया। इसी प्रकार द्वारका नगरी के निर्माण की कथा भी भगवान विश्वकर्मा से जोड़ी जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र के बीच एक भव्य और सुरक्षित नगरी का निर्माण किया गया। भारतीय परंपरा में इंद्रपुरी देवताओं के भवनों, अनेक दिव्य अस्त्रों, शस्त्रों और उपकरणों के निर्माण का श्रेय भी विश्वकर्मा को ही दिया जाता है। इन कथाओं का मूल भाव यही है कि भगवान विश्वकर्मा ज्ञान, कल्पना, तकनीकी कौशल और सृजनात्मक शक्ति के प्रतीक हैं।

भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। एक मान्यता में उन्हें ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति से उत्पन्न दिव्य शिल्पी माना गया, कहीं उन्हें देवताओं के निर्माणकर्ता और वास्तु के परम ज्ञाता के रूप में वर्णित किया गया। इसी कारण उन्हें केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि शिल्प और निर्माण की परंपरा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है।

विश्वकर्मा पूजा की यह परंपरा हमें भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण विशेषता की याद दिलाता है, वो है श्रम का सम्मान। और आज के आधुनिक युग में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। भारत विज्ञान, तकनीक, उद्योग, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों के केंद्र में है कुशल मानव और उसका ज्ञान। भगवान विश्वकर्मा का स्मरण हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने हुनर को निरंतर विकसित करें और अपने काम में गुणवत्ता और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान दें। धार्मिक दृष्टि से यह विश्वास किया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यवसाय और कार्य में उन्नति, सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। कारीगर और व्यवसायी अपने औजारों, मशीनों की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके कार्य में निरंतर प्रगति हो और कार्यस्थल पर सुख शांति बनी रहे। पूजा के अवसर पर मशीनों और उपकरणों को साफ करके उन पर रोली, अक्षत, पुष्प और माला अर्पित की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा की जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। विश्वकर्मा पूजा को केवल मशीनों की पूजा कहना उचित नहीं होगा। यह वास्तव में कर्म और कर्म करने वाले हाथों के सम्मान का पर्व है।

यदि हम भगवान विश्वकर्मा की कथाओं को आज के संदर्भ में देखें तो उनका संदेश अत्यंत आधुनिक दिखाई देता है। विश्वकर्मा हमें सिखाते हैं कि कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए ज्ञान और कौशल आवश्यक है। आज का इंजीनियर नई मशीन तैयार करता है, वास्तुकार भवन की कल्पना करता है, वैज्ञानिक नई तकनीक विकसित करता है और श्रमिक उस योजना को धरातल पर उतारता है। अर्थात निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया में हर व्यक्ति की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा हमें यह संकल्प लेने का अवसर भी देती है कि हम अपने कार्यस्थल को सुरक्षित रखेंगे, मशीनों का उचित रखरखाव करेंगे और अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे। कर्म में कुशलता और व्यवहार में भिन्नता, व्यवहार में विनम्रता, यही इस पर्व की सच्ची भावना है। तो आइए विश्वकर्मा पूजा के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें, श्रम का सम्मान करेंगे, कौशल को महत्व देंगे, अपने कार्य में ईमानदारी रखेंगे और अपने देश के निर्माण में पूरी निष्ठा से योगदान देंगे। इस संकल्प के साथ ही मुझे विविधा का ये अंक समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम विविधा, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में

0: शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने को दी मंजूरी। देश भर के 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: कैबिनेट के इस निर्णय से सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दूरदर्शी निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के मजबूत कवच का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का सुनिश्चित लाभ मिलने से श्रमिकों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित होगा और लाखों कामगारों को एक स्थायी तथा सम्मानजनक कार्य व्यवस्था भी प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 अक्टूबर को शासन प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष का सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर आज से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज विशेष आयोजन होंगे।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। इस विशेष यात्रा के निमित्त प्रमुख नदियों और पवित्र संगमों जैसे गंगा, यमुना, आमी, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेतवा, अलकनंदा, कुआनो, वरुणा और सरयू सहित संगम का पवित्र जल एकत्रित किया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि सेवा यात्रा पर निकलने वाले युवा बाइकर्स अगले माह गुजरात के वडनगर पहुंचेंगे।
4: एक सेवा यात्रियों के रूप में फ्लैग ऑफ करके झंडी दिखाकर हमारे सभी अतिथिगण उनको विदा करेंगे और उसके बाद इस यात्रा पर जगह जगह पड़ाव रहेंगे और इस प्रकार से आगे यात्रा बढ़ेगी और दूसरे प्रदेशों से होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरात पहुंचेगी। इसमें 20 दिन का समय लगेगा, 7 अक्टूबर तक के वडनगर पहुंचेगी यात्रा।
0: आज से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य में 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें आशीर्वाद का दिया, मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा, नमो सेवा अनकही कहानियां, सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर से वाराणसी यात्रा और सुशासन सेवा संवाद प्रमुख हैं।

0: एक रिपोर्ट।
1: अभियान की शुरुआत सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से होगी। शाम 7 बजे नागरिक अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलित कर सेवा और विकसित भारत 2047 के सामूहिक संकल्प से जुड़ेंगे। प्रदेश में प्रमुख विकास कार्यों और अवस्थापना परियोजनाओं से जुड़े चयनित स्थलों पर भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा। अस्पतालों में फल वितरण, रक्तदान शिविर और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर टूल किट वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और अभियान के प्रभारी योगेंद्र उपाध्याय के मार्गदर्शन में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन से लेकर जनपद स्तर तक त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से जनजीवन में आए सकारात्मक बदलावों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कल्याण मंडपम का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है।
3: बिना भेदभाव के हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ, गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन का लाभ और युवा को नौकरी की गारंटी। लगातार इस सुविधाएं आज प्राप्त हो रही हैं।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से संचालित चैरिटेबल ब्लड बैंक सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से बन रही है।
3: गोरखपुर में आज 2 मेडिकल कॉलेज, 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर के अंदर संचालित है। महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया, बस्ती में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गए हैं।
2: मुख्यमंत्री ने कल शाम को गोरखपुर के 2 दिवंगत अधिवक्ताओं के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को 15-15 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे। पिछले 6 सितंबर को एक हादसे में दोनों अधिवक्ताओं की मौत हो गई थी। देशभर में आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 शुरू हो गया है। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पुनर्गठित बोर्ड में प्रदेश के अयोध्या जिले से यतीन्द्र मिश्र को भी शामिल किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने को दी मंजूरी। देश भर के 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज काशी में सेवा संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। वाराणसी से गुजरात के वडनगर तक की सेवा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 40 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के दिया जा रहा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। और स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर

0: अनुसंधान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज सुनिए निखिल बनर्जी का सितार वादन राग अहीर भैरव।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके साथ ही आज का नमस्कार लखनऊ यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2000

0: 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि आलीपुर में जीडी कन्ना लोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज, सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में

0: पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
1: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
0: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
2: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
0: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी।

0: योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 1.25 लाख दीयों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी @76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 8:15 हो रहे हैं और अब समय हो गया है प्रोग्राम नमस्ते बरेली का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्ते बरेली।
3: आओ अपने ट्यून

ओम विश्वकर्मणे नमस्तुभ्यं सर्व शिल्प प्रजापते तत्प्र प्रसादान्मया देव कार्य सिद्धि भरवेत सदा। ओम विश्वकर्मणे नमः। इस सृष्टि के शिल्पी, और कहा जाए आज के आधुनिक शब्दों में तो इस ब्रह्मांड के इंजीनियर, सुपर इंजीनियर प्रभु विश्वकर्मा जी को आज हम उनकी इस विशेष दिन विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आकाशवाणी बरेली की समस्त प्रोग्राम टीम और

0: समस्त अभियांत्रिकी टीम मिलकर आज विश्वकर्मा देव को कोटि कोटि प्रणाम करती है। श्रोताओं, आज का दिन उन सभी हाथों को नमन करने का दिन है जो अपने हुनर, श्रम और सृजन से दुनिया को आकार देते हैं। आज है विश्वकर्मा भगवान की पूजा का पावन अवसर। भारतीय परंपरा में यूं तो विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार, वास्तुकार और निर्माण कला के अधिष्ठाता के रूप में स्मरण किया जाता है इनको, और ये भी मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए भव्य भवनों, अस्त्र शस्त्रों और दिव्य संरचनाओं का निर्माण किया। जहां कल्पना को आकार मिलता है, जहां हुनर से निर्माण होता है, जहां औजारों से सृजन होता है, वहीं भगवान विश्वकर्मा की भावना दिखाई देती है। विश्वकर्मा पूजा केवल मशीनों, औजारों या कारखानों की पूजा तक सीमित नहीं, ये तो वास्तव में श्रम, कौशल और तकनीक, साथ ही साथ सृजनशीलता के सम्मान का पर्व है। तो आज के दिन हम सम्मान करते हैं हमारे सभी अभियांत्रिकी से जुड़े हमारे सभी भाई बंधुओं को, बंधु बांधवों को, जो किसी भी रूप में किसी भी अभियांत्रिकी से जुड़े हैं, निर्माण की किसी भी कला से जुड़े हैं। आज हम सम्मान करते हैं उनके श्रम को। और श्रोताओं, आज आपको बताते चलें कि इस विशेष अवसर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे वर्क्स रोड नंबर 4 इज्जत नगर बरेली में कार्यरत राजीव अग्रवाल जी। और सभी बरेली के वैसे तो प्रतिष्ठानों में आज विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि उनके प्रतिष्ठान में किस प्रकार मनाया जा रहा है विश्वकर्मा पूजा के ये जो आयोजन है और क्या क्या उपलब्धताएं हैं। आइए बात करते हैं राजीव अग्रवाल जी से।
1: आपने ट्यून किया 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। आप सभी को एक बार फिर से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रोताओं, हमने जैसा कि आपको अभी बताया कि विश्वकर्मा पूजा एक खास दिन समर्पित है भगवान विश्वकर्मा को, और ऐसे में शहर में बहुत सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बड़े स्तर पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन होता है। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रोड नंबर 4 पूर्वोत्तर रेलवे के SSC ऑफिस वर्क्स के राजीव जी, और आइए जानते हैं क्या कुछ खास हो रहा है उनके प्रतिष्ठान में इस विश्वकर्मा पूजा पर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव जी कार्यक्रम नमस्ते बरेली। तो राजीव जी, ये विश्वकर्मा पूजा आपके संस्थान में, आपके प्रतिष्ठान में कैसे मनाई जाती है?
2: हम लोगों का तो ये वर्षों से होता चला आ रहा है, बहुत पुरानी पूजा है ये, जो कि इसमें जो भी लोहे का आइटम होता है जो है उन सबकी मतलब पूजा की जाती है। उस दिन उन मशीनों से काम नहीं लिया जाता है, इसी दिन रेस्ट दिया जाता है और उनका सब मतलब पूरा रंग पेंट करके, तिलक करके उनकी पूजा की जाती है, और विश्वकर्मा भगवान जी उनकी पूजा होती है।
1: जी अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि वो मशीनरी जिनसे आप लोग साल भर काम लेते हैं, आज के दिन आप उनसे काम नहीं लेते बल्कि उनको पूजा जाता है, इस भाव के साथ कि आप इसी तरह हमारी सदैव मदद करते रहिएगा और विश्व के कल्याण में हमारे काम में हमारी सदैव मदद करें, है ना?
2: जी जी, इसलिए विश्वकर्मा जी जो है वो विश्व का मतलब जो ही औद्योगिक मशीनरी वाला जो है सब उन्हीं के उससे चल रहा है।
1: जी बिल्कुल, सारी औद्योगिक मशीनरी प्लांट जो है उनकी कृपा उन पे रहती है, तो ऐसा कहा जाता है कि मशीनों के देवता जो है अगर कह रहे हैं तो विश्वकर्मा जी। तो क्या कुछ खास आयोजन होता है इस आपके संस्थान में, प्रतिष्ठान में आप जहाँ पर कार्यरत हैं?
2: हमारे यहाँ रोड नंबर 4 पर सबसे पहले पूजा की जाती है
1: जी,
2: उनकी कथा होती है विश्वकर्मा भगवान जी की
1: जी,
2: और उसके बाद में आरती करने के बाद में प्रसाद वितरण होता है, फिर उसके बाद में भंडारा रखा जाता है हम लोग यहाँ पर।
1: अच्छा।
2: भंडारा रखने के बाद में सब उसमें हमारे जो भी अधिकारी गण है, DRM कोऑर्डिनेशन ब्रांच ऑफिसर जितने भी आते हैं सब आगे वो प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपटाया जाता है।
1: जी जी, तो राजीव जी एक बात और, क्या इस पूरे आयोजन के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम कुछ ऐसा भी आयोजन होता है आप लोगों के?
2: नहीं, रंगारंग कार्यक्रम हम लोगों का नहीं, हमारे यहाँ तो केवल यही प्रोग्राम रहता, बाकी और जगह वर्कशॉप है जिस जगह वर्कशॉप वगैरह में भी कुछ मतलब ऐसा रंगारंग प्रोग्राम का मतलब ये कि मतलब भजन गीत सब होते हैं वहाँ पर।
3: अच्छा अच्छा
2: वर्कशॉप में।
3: तो राजीव जी आप हमसे जुड़े, आपने इस विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर

बहुत बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला और ये खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको एक बार पुनः से सभी के साथ विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम और सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं, जैसा कि हम लोग समय समय पर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और हमारे यहाँ स्पॉट जो बचते हैं विज्ञापनों के माध्यम से भी संचारी रोग और जो इस तरीके के जीवाणु जनित रोग हैं इनके प्रति जागरूकता फैलाते रहते हैं, लेकिन हम इन दिनों देख रहे हैं कि बरेली में जो है मलेरिया और एक अजीब तरह का वायरल बुखार जो है वो पांव पसार रहा है। ढेर सारे मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और ऐसे में हम लोगों को अपना विशेष ध्यान रखना है। विशेषज्ञों ने कुछ कुछ सलाह दी है और वो सलाह एक सामान्य सलाह है जो आपको ये रोग होने से बचाने की दिशा में उठाया गया आपका एक कदम है। जैसे कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, किसी भी प्रकार का पानी अगर इकट्ठा है जैसे कूलर में, ऊपर किसी टायर में या किसी सामान आपने रखा हो कूड़े कबाड़ में और वहाँ पानी इकट्ठा हो गया हो उसमें, तो वो सारे पानी को डिस्कार्ड कर दें वो, या फिर उनमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल और या डीजल भी कुछ बूंद डाल सकते हैं, वैसे तो उसको हटा दीजिए। बाहर आपके आसपास कहीं नाली रनिंग वाटर है तो वहाँ उस नाली में भी थोड़ा सा जो है वो पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल आप थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरी बाजू के कपड़े पहनिए। दरअसल ये प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर, क्योंकि ये जो वायरल है ये करीब करीब 5 से 6 दिन ले रहा है, इसकी जांच में भी शुरुआती सिम्टम्स में कुछ पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए हम सभी को अपना विशेष ध्यान रखना है और इस बीमारी को पांव पसारने से पहले ही इसकी कमर तोड़ देनी है। फिलहाल पांव पसार रहा है, अपना विशेष ध्यान रखिए। खास तौर से कुछ प्रमुख गांवों में बरेली के आसपास ये बीमारी पांव पसार रही है, तो अपना ध्यान रखिए और बताई गई जो आवश्यक कदम है वो उठाइए। और अगर आपको लगता है कि आप बुखार की चपेट में हैं तो स्वयं के डॉक्टर ना बने, चिकित्सक से परामर्श लें और उनके द्वारा दी गई सलाह का पालन करें।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और सुबह की बेला है, चाय का कप है आपके पास और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप लोगों को जिन्होंने लेट अपना रेडियो ऑन किया है, उनको बताते चलें कि आज हम मना रहे हैं विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से, और बरेली में जितने भी औद्योगिक संस्थान है आज बड़े धूमधाम से वहां पर विश्वकर्मा पूजा की जो आयोजन है उसे मनाया जा रहा है। और श्रोताओं आपको बताते चले, अब आने वाले समय में त्योहारों की है धूम, तो इस समय बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने चलाई हैं और कई ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं, बहुत सारी ट्रेनों में कोचेस बढ़ा दिए हैं। तो अगर आप भी यात्रा करने वाले हैं आने वाले त्योहारी सीजन में, तो अपना

टिकट तुरंत बुक कर लीजिए। और ट्रेनों की आधिकारिक जानकारी के लिए आप कहीं भी इधर उधर न सर्च करिए, क्योंकि इन दिनों बड़ा डिजिटल फ्रॉड भी हो रहा है। तो आप चुपचाप जो है वो IRCTC की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC.co.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ट्रेन और परिचालन से संबंधित। साथ ही साथ श्रोताओं, आपको बताते चले कि बरेली में इन दिनों मौसम भी जब अटखेलियां कर रहा है, कभी जैसे उमस हो जाती है, बीच में आधे शहर में कहीं बारिश हो जाती है। अब परसों की बात ले लीजिए, यहाँ झम के आपने जो रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी, इधर कितना बढ़िया से लाल फाटक साइड में अच्छा और तेज पानी पड़ा और पूरे बरेली शहर में धूप छाई रही, उमस रही। और फिलहाल मौसम विज्ञानी ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो दिन है वो और सूखे होंगे, शुष्क होंगे, तो अब मौसम परिवर्तन का चक्र जो है वो तेजी से घूमेगा। साथ ही साथ आपको एक बात और बताते चले हैं श्रोताओं कि हम ये देखते हैं कि मौसम का चक्र परिवर्तित होता है और लगातार हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और इन दिनों चूंकि आकाशवाणी बरेली, और हम तो लगातार ये बात कहते ही हैं आपसे कि सिविक सेंस जो है वो एक ऐसा महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें घर से सीख कर ही निकलना होगा। और बहुत सारे लोग सीखे होते हैं लेकिन उसे लागू सिर्फ अपने घर पर ही करते हैं कि सारा सिविक सेंस उनका घर पर, कि यहाँ मत फेंको, वहाँ मत फेंको, जूते चप्पल बाहर उतारो, और घर से बाहर निकलते ही सारा सिविक सेंस छूमंतर हो जाता है। बात करें सिविक सेंस की तो वो ये कि हम जब पब्लिक प्लेसेस में हों, अपने घर पर ना हो, तो कैसे बिहेव करें। जैसे कि हम कहाँ पर कचरा फेंकना चाहिए, कहाँ पर हमको टॉयलेट करना है, कहाँ हमको थूकना है। लोग कहीं भी मुंह से बस थूक देते हैं। अभी हाल ही की घटना है, एक दिन हम जा रहे थे, मस्त बगल से एक बस निकली, बस में से एक सज्जन ने मुंह निकाला, भला हुआ हमारे हेलमेट महोदय का और हमारे गाड़ी की ब्रेक का, कि हमने सही समय पे ब्रेक लगाया और उनने मुंह से जो लाल रंग की पिचकारी मारी है, मतलब पान मसाले की, तो क्या ही कहें, रंगाई पुताई होते होते बच गए। तो फिलहाल अब समय आ गया है श्रोताओं कि हमें सभ्यता का परिचय देना होगा, ये बताना होगा कि हम लोग सभ्य हैं, सिविक सेंस है हमारे अंदर, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान में भी बरेली वासी हैं, तो हमें अपनी तहजीब और नफासत की जो है वो मिसाल पेश करनी होगी, अपने शहर को एकदम साफ और हरा भरा करना होगा।

तो फिलहाल बरेली में आज ट्रैफिक सामान्य रहेगा, ऐसा कोई विशेष डायवर्जन नहीं है। नियमित रूप से जो ट्रैफिक चलता है वो ट्रैफिक चलता रहेगा। और अब प्रोग्राम नमस्ते बरेली का जो समय है लगभग संपन्न हो गया है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर दीजिएगा। और वो आप दे सकते हैं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे फेसबुक कॉमेंट के माध्यम से और ईमेल के ज़रिए भी। ईमेल है आपका patramela.bareilly@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर है 9457395859। और लेटर लिखने का तो पता आपको पता ही है, कार्यक्रम आपका पत्र मेरा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। तो प्रोग्राम संपन्न करने की मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। और अब स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हो रहे हैं, समय हो गया है लोकगीतों के कार्यक्रम का। आइए कार्यक्रम लोकगीत के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं वंदना वाजपेयी के स्वर में ये मधुर लोकगीत।

शारदा सिन्हा की गाय इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकगीतों का अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और चित्रलोक कार्यक्रम चल रहा है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अजय अतुल का गाया ये गीत फिल्म धड़क से, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल का संगीत।

लैला मजनू इस फिल्म का गीत अब सुनिए अरिजीत सिंह और जोनीटा गांधी की आवाजों में। इरशाद कामिल की रचना है और निलाद्री कुमार ने इसे संगीत से सजाया है।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। साथियों, हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज का ही वो दिन है। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मरीजों की सुरक्षा और बेहतर देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सही दवा, सही उपचार, स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर संवाद रोगी सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा हर मरीज का महत्वपूर्ण अधिकार है। और आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। ड्रीम गर्ल इस फिल्म से मीत ब्रोज ने इसे गाया है, साथ दिया है अल्तमश फरीदी ने, शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, मीत ब्रोज का संगीत।

0: मलंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना सचेत टंडन की आवाज में। कुणाल वर्मा ने इसे लिखा था, द फ्यूजन प्रोजेक्ट म्यूजिक।
1: सुनिए
2: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे थे विविध भारती से, और अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

जी हाँ दोस्तों, हसरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हसरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मिडिल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कोई 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है जब हसरत जफरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मुशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी।

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक ड्यूट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों, दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने ख्वार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए गाने लिखे।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तुरी बाजे पहलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अम्बेडकर

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जयपुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की ताईद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल।

पगला कहीं का इसम का ये जो गाना उन्होंने लिखा है दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब शो को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। और अब समय हो गया है कार्यक्रम आपकी पसंद का, तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम आपकी पसंद।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM और लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम आपकी पसंद प्रोग्राम के साथ। मैं हूं आपका अपना रेडियो होस्ट एंड दोस्त ब्रजेश तिवारी। श्रोताओं, प्रोग्राम को शुरू करें और आपके कमेंट्स को पढ़ने का सिलसिला हम एक बार शुरू कर देते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि सारे ही कमेंट्स को शामिल कर लिया जाए, लेकिन आपसे एक करबद्ध निवेदन है, विनती है, अनुरोध है, एक बार ही मैसेज कीजिए, एक बार ही अपने नाम को किसी मैसेज में शामिल करवाइए। संज्ञान में आ जाने पर तो एक बार भी शामिल नहीं होगा अगर आपने एक से ज़्यादा बार मैसेज किया, और अगर एक बार ही करेंगे तो 100% आपका नाम ज़रूर ही शामिल होगा। और ना सिर्फ आपका बल्कि और भी बहुत सारे नए श्रोताओं के

नामों को हम शामिल कर पाएंगे। अब और अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ने का सिलसिला। शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से आप हैं प्रभाकर गुप्ता, अवधेश, सचिन देव, प्रियम, कायरव और गौरी गुप्ता। प्रोग्राम के इस गीत की फरमाइश करते हैं हमें झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया, अहमदाबाद मंडी पंजाब, अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अख्तर, जासमीन, शकीला, सना, समा, हीना, रजिया सुल्ताना और सुराज अंसारी और परिवार के सभी लोग। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा और स्वीटी छावड़ा का मैसेज भी आ गया हमारे पास। और आप हैं राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामभाव तांदले, जोतर धोतर जोटा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। इस गीत की फरमाइश करते हैं हमें सनैया धन सिंह बरेली से राय सिंह पाल, एनपी सिंह, धर्मवीर, जुगेंद्र, रविंद्र, प्रेम पाल, दिवाकर, महेंद्र, अनुज पाल और अनन्या पाल। अगला मैसेज जो हम पढ़ रहे हैं इसे भेजा है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जगेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदी जगेल ने। धमदा ग्राम सुगरी कला से आप हैं अमित, सकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंगेल। पद्मा टॉकीज निगमनगर मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह। इस गीत को सुनना चाहा है मनकारा मंडित बीदीए कॉलोनी करगैना से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और पृथ्व सिंह। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर से ओम पाल गंगवार, अनीता और परिवार के सभी सदस्य। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से मैसेज करने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी। इस गीत की फरमाइश हम तक आ पहुंची अमरावती महाराष्ट्र से शारदा वर्दे, सतीश, ऋषा और आपके सभी साथी। ग्राम गोपी क्रिया भांडेर दातिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल, ज्योति, अंजना, हरिमोहन और लक्ष्य का मैसेज भी हम तक आ गया है। और आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार अवरिया बिहार से शरीफ, आरजू, गुड्डू और आपके सभी साथी। और ये मैसेज हम तक आया है नरगुणा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन गोस्वामी, जोगेशपुरी टिंकल, दिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा मस्कीन का, दिशा गोस्वामी का। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से मैसेज करने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबी, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबी। चौखुंडी बुलंदशहर ऊपरकोट मोहल्ला से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, प्रवीन शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आपके परिवार के सभी सदस्य। और इसी गीत की फरमाइश की है हमें पदमपुर गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। अगले गीत को ही सुनना चाहे समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने। और ये कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, दुबिया ने वादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सलामी का ये गीत। पंकज उदास और अलका याग्निक के स्वर में गीत के बोल लिखे समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद, ट्यून किया है आपने 100.4 FM। आपके ढेर सारे मैसेज हम तक आ रहे हैं और प्रोग्राम के अगले गीत के लिए मैसेज हमें मिला है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र, रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और आपके परिवार के सभी लोग। फरासी जिला हिसार से आप हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। भेरूलाल वाक्तरिया धाकड़, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तरिया उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें मैसेज करते हैं और इसी गीत की फरमाइश की है हमें बहेड़ी से इश्तियाक अहमद ऋषि ने। और भाटपारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोकेलाल वर्मा। जिला नांदेड़ ये इतला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल का भी मैसेज हम तक आया है। और अडार नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से मकन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। पलाड़ी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनम देवा, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन का मैसेज भी हमें मिला और ये मैसेज हम तक आया है। लसुड़िया नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंदांगी का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पीएस नोहानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मोहरकर का भी मैसेज भी फ्लैश हो गया है। अकोला महाराष्ट्र अकोट से आप हैं राम।

राम राव नितोने शारदा नितोने और सानिका, साथ में है रिया। गजडुडवारा उत्तर प्रदेश से सेव वाटर सेव लाइफ के इस खूबसूरत मैसेज के साथ मैसेज करने वाले हैं पिलू खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाजिश, दानिश, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक का ये मैसेज मिला है हमें मजनू कटिल्ला से। गोवर्धन कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना डब्बू, चैतन मस्किन, मेघा आशीष चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रजता केशु और रिधान खुराना, और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बिट्टा बजाज का मैसेज भी आया हमारे पास। इस गीत की फरमाइश करते हैं हमें आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित, अभय, दीक्षा, अलागज शाहजहांपुर से मैसेज करने वाले हैं आप। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरबन सिंह जोड़ा का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। पुराना तालाब डबरा डुमराव से वसीउल्ला अंसारी, आसमानाज, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से आर एस अंसारी, एस डी अंसारी, फातमा नाज, और चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा का मैसेज भी आया। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर, अजन्नत और आपके सभी साथी। गडिया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मल्डर, आशीष, कुंदन, करीना, पूजा, आशीष और सुनीता देवी का मैसेज आया हमारे पास। भाटपारा देवरी से मैसेज किया है हमें केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक और मुरली क्षत्रिय ने। मुरादाबाद से मैसेज करने वाले हैं कसाना लदावली मुरादाबाद से, अजीत कसाना, माया, ऋतिक कसाना, आदित्य कसाना और आपके सभी साथी। शमशुल कमर राही, शाहीन, फातमा और अनु खान का मैसेज गंडुनवारा से फ्लैश हो गया है। और हमारे निमिष होता है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। मजनू कटिल्ला दिल्ली से ही मैसेज फ्लैश हुआ है, आपके नाम शामिल हो चुके हैं ऑलरेडी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल दिशानी और निमिता हुजा, इस गीत की फरमाइश करते हैं हमें गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजनगर, मऊमा भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, शिव मंदिर मऊ से आप हैं मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीयूष स्वर्णकार। हमारे निवेश होता है आप प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से, और खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू और भाविक सिक्का। आप हैं करेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन और आपके सभी साथी। इसी गीत की फरमाइश की है हमें परिमल कासगंज से, आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, एम असलम सैफी और शमशुल कमर। रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित गर्वी और हिमाक्ष का मैसेज आया है सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से। हुकुम करमकर, सुनीता करमकर और तनु का मैसेज आया बेरडी मध्य प्रदेश से, और इसी गीत की फरमाइश की है हमें ओखला संगम में हरदिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता सत्यम सुंदरम, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता। ये अगला मैसेज जो हम पढ़ेंगे वो अगले गीत की फरमाइश के लिए, फिलहाल आप सबने सुनना चाहा है फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर की आवाज़ में संतोष आनंद ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। आपकी ढेर सारे कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स रिपीट भी हैं। आपसे विनम्र अनुरोध कि आप अपने पुनरावृत्ति वाले कमेंट्स को हटा लीजिए और कम से कम ही कमेंट किया, मतलब एक बार भी अगर आप कमेंट करेंगे तो 100% आपका नाम शामिल होगा, ये इसका हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन एक ही नाम को अलग अलग मैसेज में डालना, अलग अलग नामों से मैसेज करना से बहुत सारे नए श्रोता या बहुत सारे श्रोता वंचित भी रह जाते हैं। फिलहाल प्रोग्राम के अगले गीत के लिए, भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र शिवा, कपिल ईशान और पूजा परिहार, इसी गीत की फरमाइश करते हैं। बुल्ढाना महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन संजय और ज्ञानेश्वर माठे। मुंडा टोला डोंडी लोहारा से डोमेंद्र नेताम, गगनेश्वरी चंचल, कामेश और माहिर नेताम का मैसेज भी आया हमारे पास। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु, रिधान कुराना और तुलसी मिस्कीन का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। सोमिया, नाजमीन, रुकैया, आफरीन, रिहाजा, रिहाना, प्रवीण और माहे आरजू, अररिया बिहार से आपने मैसेज किया। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से रतन माला मौर्य, मुकेश, प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश और मनु भाई का मैसेज भी फ्लैश हुआ। बन बगेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं योगेश सर्वा, आशा, नीरज, अंजलि और रोशनी सर्वा। उरेटा डोंडी लोहरा बालोद से देवशंकर, तामुरिया, प्रभा देवी, अजय, तुषार और डॉली पूजा तामुरिया। विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष का मैसेज जो आया है हमारे पास, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और आप हैं भाटपारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू, राहुल, चंपा और आपके सभी साथी। इस गीत की फरमाइश की है मैं गोंदूर धुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी, उदयन और अर्पिता ने। ये मैसेज किया है मैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास, रानी मानिपुरी और आपके सभी साथी। आप हैं नारायण खांडे, रजनी, तुषार, समीर और आपके सभी साथी। मैसेज कहाँ से आपने किया है? आपने किया है मैसेज मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से। कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का मैसेज आया हमारे पास। कहाँ से ये तो लिखना ही भूल गए आप। खिजरपुर सेथल नवाबगंज से हमारे नियमित श्रोता हैं आप, गुलाब हुसैन, रिजवान, इमरान, शबाब, फरहान और आपके सभी साथी। ये अगले गीत को ही सुनना चाहें नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिडाल का और आपके सभी साथी। विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूडत, चेतन नाहटा और आपके सभी साथी मैसेज करते हैं हमें पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। और टोडरपुर भूट बिसौली बदायूं उत्तर प्रदेश से आप हैं, पी एस यादव, अजय पाल, पवन, मयंक, प्रभात, मुन्नी देवी, नीतू, प्रतिभा या प्रतिज्ञा, नेमपाल सिंह यादव और आपके सभी साथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का मैसेज भी आया हमारे पास। और जामली बालोद से, बलोचिस्तान से आप हैं बरकत जमाली। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार का मैसेज अब पहुंच चुका है हमारे पास। और इसी गीत की फरमाइश की है मैं नागपुर महाराष्ट्र से कमल स्वाने, हाजी अफजल मलिक, संदीप, रामगढ़ कैंट से निपी स्वाने और आपके सभी साथी। बदायूं से इस्लाम नगर पर बसा बदायूं से आप हैं सत्यदेव कुमार राणा और विष्णु कुमार राणा। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग का मैसेज भी फ्लैश हुआ। न्यू मुल्तान दिल्ली से आप हैं सुरेंद्र खुराना और आपके सभी साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है प्रमिलागंज अलूट मरदलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। सहारनपुर से रॉन, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पॉल और विलेज डिकैस्ट्रो का मैसेज आ चुका है हम तक। और ये मैसेज हम तक पहुंचा है दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबता सुभाष, योगी, डब्बू और बब्बू का। सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौर, सुयश, आशीष, तन्मय, अपूर्वा और आपकी सभी साथियों का मैसेज भी फ्लैश हुआ। ग्राम बपोस खंडुआ गोठा से आप हैं रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम और आपके सभी साथी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेराज जहां का मैसेज आया आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और इसी गीत को सुनना चाहा है जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल और कुमार सौरभ महतो ने। दयानंद पेठ, भवानी पेठ, सोलापुर महाराष्ट्र से आप हैं विष्णु मिस्किन, ऋतिका, आरव और वानी। और इसी गीत की फरमाइश की है हमें मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वन्या, इंद्रा कॉटेज, तलीताल, नैनीताल से। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म डॉन का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम में आपकी ढेर सारे मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं और ये अगला मैसेज हमें अगले गीत की फरमाइश के लिए भेजा है। भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद अजरा और आपके सभी साथी। अनई जिला बनारस से आप हैं अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन और आफिया अंसारी। चोलड़िया नवाबगंज से इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू गंगवार, वेदपाल और संजीव गंगवार। महादेवगढ़ हाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज ज्योति, रियांश और बाबू रियांश ठाकुर का मैसेज भी फ्लैश हो गया है।

शेरवानी गजडुंडवारा उत्तर प्रदेश से, आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। प्रोग्राम का अगला गीत सुनने के लिए ही मैसेज हम तक आया है अशोकनगर मध्य प्रदेश से, विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकोबाई, निशा, प्रियंका, इश्का, खुशी, ऋषि नारायण और निधि नारायण। कस्बा उघैदी बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज प्रजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का मैसेज भी फ्लैश हुआ हम तक। गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से श्याम यादव और सोना यादव का मैसेज भी आ चुका है हम तक, और ये मैसेज भेजा है हमें गंगानगर राजस्थान से बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम और जयपाल, पूनम चालिया और आपके सभी साथी। कुष्ठ बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने, योगिता, प्रियली हागोने, पार्थ और आपके परिवार के सभी सदस्य। गंदगांव बिसौली बिनायू से आप हैं रामकुमार प्रजापति, राजपाल, शिवम, दुर्गेश, कृष्णपाल, वीरेश और सुधीर सागर। बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और आपके सभी साथी। कोरिया से डोनर पाबो, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गोरैया जलंधर से अशोक का मैसेज भी फ्लैश हुआ। करनाल से मैसेज करने वाले हैं ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ सरमकालिया और आपके सभी साथी। उत्तम कुमार बंगेल, रुक्मिली साहिल और भारती बंगेल का मैसेज फ्लैश हुआ। रघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से और चंडीगढ़ से इसी गीत की फरमाइश करते हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा और आपके सभी साथी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा, राज, दिव्या, भारती और बेताब रेडियो लिसनर का बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून का मैसेज फ्लैश हो गया है। हमारे अगले श्रोता हैं मुरादाबाद दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से फरमान सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, देवेंद्र रावत मैसेज करते हैं, आपके मैसेज का शुक्रिया। आप हैं आकाश विश्वकर्मा, जयंती की शुभकामनाओं के साथ मैसेज करने किया है आपने हमें। बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत ज्ञानेंद्र, इला देवी, बर्फा देवी, सुनील यादव, महावीर कश्यप, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार, बाबू राय, रमेश चंद सैनी, गौतम राम, श्री राम राठौर, पारस और राज कश्यप और आप हैं अलकनाथ मंदिर के पास से। आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीत, विनायक सिंह, मोहित, मोहिनी, मोहित सिंह और आपकी परिवार के सभी लोग मैसेज करते हैं हमें। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से, पतली गली बनारस से मुस्कान सुलेमानी, शाहिद सुलेमानी और आपके सभी साथी, यो का मैसेज भी आया हम तक। सिल्लोर से ये मैसेज करते हैं हमें संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली, प्रजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और प्रज्ञे और यज्ञेश घोटके। आदर्श नगर मरूर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी सौरभ और शाइना शर्मा, इसी गीत की फरमाइश की है हमें। कछार लोरमी भूत से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम। विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय, शुभम, पवन जरिए के, संजीव राव के, संजीव डाबे राव का मैसेज मिला है हमें आकोट से और ये मैसेज फ्लैश हुआ है हमें उसावा बदायूं से। धर्मवीर कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा कश्यप और कुंशकान कश्यप का। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से इसी गीत की फरमाइश की है दाता सिंह शेखावत, संगीता तुषार और जिंकी शेखावत ने और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आशिकी का ये गीत कुमार सानू की आवाज़ में।

प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये मैसेज हमें भेजा है पंचायत घर बाकरगंज तहसील फरीदपुर से सुनील बाबू, शिवम, अभिमीत, भगवान दे, स्वाति सिंह, तन्या गौतम और सभी साथी। इस गीत की फरमाइश आप मिली है मजमनिया काजिर पुसर सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति और एसपी जायसवाल का। आप हैं लक्कड़ बाजार खंडवा से रफीक पमार, बेनजीर, साकिब पमार, अलमास मोइन, शंकर लाल गंगराडे, वनीता गंगराडे और हसनैन पमार। प्रोग्राम का अगला गीत ही सुनना चाहा है राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिक, दीपाली युवान और आरके राजा ने लाल कुर्ती रूड की कैंट से। इंद्राज जैनी, अंकुश जैनी का मैसेज मिला हमें सिद्धुवाला सूरतगढ़ राजस्थान से। और आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशुतासु, अर्णव सत्यमानंद और आपके सभी साथी। बोड़ा गाजी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और आपके सभी साथी। उत्तम कुमार भगत का मैसेज मिला हमें पाकुड़ झारखंड से। करेली से इंतजार अंसारी।

गुंजाला पीठ महाराज से नारायण दुगे, सो सुनंदा दुगे, महेश निर्मला और भगवान का मैसेज भी आया हमारे पास। भरत लाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा का मैसेज मिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। बंदा नगर इंदौर से नारायण भाऊ खट से, ललिता आशा रानी खट से, संजना परी खट से, गणेश कार्तिक खट से, लड्डू देवी चौधरी, स्वाति प्रयागराज चौधरी और आपके सभी साथी। जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा का मैसेज मिला हमें झारखंड से। पांजरा बोली भंडारा महाराष्ट्र से, आप हैं बबन रामटेके, वैशाली आरामटेके, आरुषि और आस्था। नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रामाताई, दीक्षा ताई, रीमाताई और राहुल डोंगर दिवा का मैसेज भी आ गया है हमारे पास। और अरुण चंद्र शर्मा रेणुका और आपके सभी साथी हैं विराटनगर नेपाल से। वंदना मराठा, भाऊ मराठा, ललिता चौहान, चंदा वांखड़े, ललिता, लक्ष्मी नारायण भाऊ खट से, पूजा, रेखा, नंदिनी, बबीता और आपके सभी साथियों का मैसेज फ्लैश हुआ। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबुली से, आप हैं गजानन येले, विश्वदीप येले, अशोक येले और आपके सभी साथी। और इससे पहले अर्पण बोर्ड पर जो मैसेज हमने पढ़ा वो जिर पारदेशिया साफ साफ पढ़ने में इस जगह का नाम नहीं आ रहा है, तो साफ साफ ही भेजे मैसेज। सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार और विनीत कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा का मैसेज भी मिला हमें। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमित गंडियारपुर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र और संगीत है संकीर्ण जयकिशन का।

हरियाणा सफीदो सिटी से मैसेज करने वाले हैं नाना खन्ना, चंचल खन्ना, लवली, रजत, लव, कुश और आपके परिवार के सभी सदस्य। हिंगोली महाराष्ट्र से आप हैं शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के हनुमान और उत्तम जमदाड़े। कृष्णलाल सलूजा जनकपुरी दिल्ली से मैसेज करते हैं और राधा रानी जी का मैसेज मिला हमें। नर्मदा पाक मंगलवेड़ा से अलीम पटेल मुजाहिद और नदीम पटेल का मैसेज भी फ्लैश हुआ। और आप हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से, रफत साहेब, सईद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी का। स्मिता रेडियो ग्रुप छत्तीसगढ़ से आप हैं सुहन जोशी, राहुल कुमार मासी, हरमिंदर चावना बाली, लोकेश पायल जोशी, अकिता जोशी, गीता श्रीवास, लक्ष्मी ध्रुव और राहुल अग्रवाल। मुकेश गौतम, सुनील अमन गौतम का मैसेज आया हम तक। बुधनगर खंडवा से नदीम भाई, बहजोई से राजू जी और चंदोसी रोड चमनपुर उत्तर प्रदेश से थे मुकेश गौतम, सुनील और अमन जी। गिरिडीह झारखंड से यासीन अनजान, साइमा हसन, बाबू मिफ्रा और बेबी चाहत का मैसेज भी फ्लैश हुआ। और आप हैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से उमा सिंह, महेश्वरी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर, दिनेश और आपके सभी साथी। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म नमक हलाल का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे अनजान ने, संगीत है बप्पी लहरी का।

0: अभी जब हम आपके कमेंट्स को पढ़कर आगे ही बढ़े गीत की तरफ, तो हमारे पास हमारे कुछ चुनिंदा श्रोताओं के, हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं के और भी मैसेज आए। कटरा चांद का पुराना शहर से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखपाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश का मैसेज भी फ्लैश हुआ।
1: आज बहक जाए तो होश ना दिलाइयो, होश जो दिलाइयो।
0: कुतुब खाना सब्जी मंडी से आप हैं सुल्तान रजा इकबाल, जीशान, अफजल, मोनिश, सादिक और परिवार के सभी साथी।
1: आज रपट जाए तो हम।
0: जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा रियाज, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिरा नूर। हरवेश कश्यप, अर्जित, दिव्यांश और गायत्री कश्यप का मैसेज मिला। गुन्नौर उत्तर प्रदेश से नाना जी लाम से, तेजस, जय लाम से, हर्षिता लाम से का मैसेज फ्लैश हुआ। छिंदवाड़ा बेरड़ी से और मीरगंज से आदर्श दिवाकर लव, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और कल्लू भाई का मैसेज भी आया हमारे पास।

0: जी का मैसेज भी फ्लैश हुआ।
1: हसीना डरी डरी हाँ। बाहों में सिमट गई हाँ। सीने से लिपट गई रे।
0: बरखा काना से अफजल ताज, शाहीन सोनू, तंसीम, कमल कुमार और अफजाल मलिक।
2: तुझे तो सुझी हसी हाँ। मेरी तो जान फसी रे।
0: पूर्णा दिगाओं से सदाशिव थोरात, कविता श्रेया और बंटी थोरात का मैसेज भी फ्लैश हुआ।
1: नजर चुरा के आहा ओहो।
0: हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल मंजुलू, रंजना वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो।
0: राजेश चोलकर, पुष्पेंद्र और मीनाक्षी चोलकर इटारसी से मैसेज करते हैं हमें।
2: तो खुद भी उलझ जाए।
0: सरोज चौक अमरावती से सईद भाई, सूफिया, अनस, आयजा। सरोज चौक से कमरुल्ला, नसीम, आयशा और हादिया का मैसेज भी आया हमारे पास। उदयपुर से नवीज खान, सईबीहा का मैसेज भी आज फ्लैश हुआ है। राजुद्दीन खान, राजेश भीकम, रिजवान, सबिया, मुमताज, मी, फिरोज और अली हसन विधिपुर कचौरा हाथरस से मैसेज करते हैं हमें। अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रजन, संजीव, विपिन, अरुण कनौजिया, संजय, पवन या सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और सौम्या और आपके सभी साथियों का मैसेज भी मिला शिवाजी चौक कटनी से। सद्दाम सिद्दीकी, साध समद और सादिक का मैसेज मिला बदायूं उत्तर प्रदेश से।
2: सांवरी घटा से शोभा बरसे,
1: बादल से छम छम शराब बरसे।
0: जनूबी भक्कड़ पंजाब से रीना खान का मैसेज भी फ्लैश हुआ।
1: बूंदों की बजी,
0: मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या का मैसेज मिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से।
1: ये रात

0: भोजपुर तक सहारनपुर से मैसेज किया हमें इंतजार जावेद राहत अली जाकिर हुसैन और वकील अहमद ने
1: क्या
0: विनेश कुमार श्रीवास्तव रागनी मुस्कान बैंक सेंटर चनीटी बरेली से मैसेज करते हैं। तो श्रोताओं अब प्रोग्राम का समय लगभग संपन्न हो चुका है। आप सभी श्रोताओं के नाम हमने शामिल करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने एक से अधिक बार मैसेज किया, जो संज्ञान में आया उनके मैसेजेस को छोड़ दिया। और भी आप लोग बहुत सारे लोगों के इतनी तेज़ी से नाम पढ़ने के चक्कर में कई बार डबल नाम हम पढ़ देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है किसी का नाम दो बार पढ़ने की। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ एक बार ही मैसेज कीजिए, और एक बार अगर आप साफ साफ मैसेज करेंगे एक जगह अपनी जगह से, तो हम बहुत अच्छे से आपके नामों को आराम से पढ़ सकेंगे। इतने सारे मैसेजेस को शामिल कर पाना इतने कम समय में बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारे ये प्रयास था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। प्रोग्राम से मुझे यानी रेडियो दोस्त ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।

राहत फतेह अली खान की गाई इसी कवाली के साथ कार्यक्रम सबरंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 11:15 हो रहे हैं और अब समय हो गया है प्रोग्राम झुमका गिरा रे का। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम झुमका गिरा रे।

0: श्रोताओं, प्रोग्राम झुमका गिरा रे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम झुमका गिरा रे एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम है और साथ ही साथ इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम भी है। प्रोग्राम में हम पहुंचते हैं, यानी आकाशवाणी बरेली की टीम पहुंचती है एक खास जगह, खास विषय के साथ। और इन दिनों चूंकि आकाशवाणी बरेली एक सिविक सेंस के डेवलपमेंट की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही है और अपनी बरेली को साफ बरेली, स्वच्छ बरेली बनाने की इस मुहिम में हमारे सभी श्रोताओं का बढ़ चढ़कर हमें सहयोग मिल रहा है। और न सिर्फ श्रोताओं का सहयोग मिले बल्कि ये एक जन जन जन आंदोलन बने। और सिविक सेंस एक वो सेंस है जो हमें घर से ही डेवलप करना होगा, जो हम घर पर रहकर तो बहुत अच्छे से निभाते हैं लेकिन घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं वो सारी बातें भूल जाते हैं। जैसे कि हमें इधर उधर कचरा कूड़ा पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकना है, हमें इधर उधर प्रसाधन नहीं करना है, हमें खुले में कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है, कहीं भी खुले में नहीं थूकना है, पान मसाला टोबैको वैसे तो इसका सेवन प्रतिबंधित ही है और आपके लिए नुकसानदायक ही है लेकिन अगर फिर भी हम कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सोचना होगा 10 बार उसको थूकने से पहले कि हम जहां थूक रहे हैं क्या वो सही जगह है। और ये सोचने के लिए ही जो सोच की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं सिविक सेंस। और इन सारे सिविक सेंस के बातों को लेकर, कैसे इसको डेवलप करें, इन सारे मुद्दों को लेकर हम यानी आकाशवाणी बरेली की टीम पहुंची है सीआई पार्क बरेली, जो कि स्थित है प्रेम नगर में।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के

0: हमारे झुमका गिरारे बरेली के इस अंत में। आज आकाशवाणी की टीम आ पहुंची है बरेली के बीचों बीच प्रेम नगर स्थित सीआई पार्क में। सीआई पार्क के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। न सिर्फ ये पार्क बहुत खूबसूरत है, लोगों के सैर करने का एक प्रमुख माध्यम भी है। बहुत सारे लोग यहाँ नेचुरल फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉक करने भी आते हैं। अपनी सेहत के साथ साथ यहाँ की आप नैसर्गिक सुंदरता को आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ वॉक भी कर रहे हैं और अपनी सेहत के साथ साथ योग को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए इस पार्क में हम आपको बताएंगे इस पार्क की खूबियों के बारे में, साथ ही साथ हम यहाँ जानेंगे यहाँ सैर कर रहे लोगों से उनकी राय। दरअसल बरेली में एक सिविक सेंस डेवलप करने की हमारी जो एक मुहिम छेड़ रखी है हमने कि लोग सिविक सेंस का पालन करें, जैसे कि इधर उधर कूड़ा कचरा न फेंकें, इधर उधर न थूकें, साफ रखें, सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखें। तो ये एक सिविक सेंस की मुहिम को लेकर हम आ पहुंचे हैं आज बरेली के इस सीआई पार्क में। यहाँ हम जानेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि सैर कर रहे हैं, उनसे मुख्तलिफ उनकी अलग अलग राय को भी हम जानेंगे कार्यक्रम झुमका गिरा रे बरेली के आज के इस अंक में।
1: अंकल आपका नाम?
2: आकाश मिश्रा। कौन नाम है?
1: आकाश मिश्रा। तो मिश्रा अंकल, जैसे अंकल आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे हम लोग हरियाली, हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ रहा है, तो किन किन उपायों से, किन किन तरीकों से हम अपनी प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रख सकते हैं?
2: सबसे पहली बात ऐसे है कि हमारा जो नगर निगम है जी, उसकी भी व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक नहीं
1: जी,
2: क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह
1: जी जी
2: ये पड़े हुए हैं, डस्टबिन है, ये भी टूटे हुए हैं
1: जी,
2: और उनका कुछ थोड़ा सा भ्रमण करें, बताएं लोगों को, गाइड करें कि भाई ऐसा मत करो, कूड़ा मत फेंको
1: जी जी जी,
2: तो उसमें वो भी सुझाव होगी
1: जी, जरूरी
2: बगैर गाइडेंस के
1: जी जी।
2: अब अनपेक्षना कुछ मालूम भाई नहीं, सेंसी नहीं है
1: जी,
2: तो उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए, दो चार गाइड यहाँ पर आए और बताएं उनको, लोगों को यहाँ पैसा व्यवहार करो, कूड़ेदान डालो, बैठने उठने का भी सिस्टम अपने सही करें। बहुत से लोग जो है गंदगी करके पैर रख के बैठ जाते हैं
1: जी जी,
2: सीटों पर खाली
1: होते हैं।
2: हाँ, तो इसमें जो है थोड़ी सी हमारी सरकार की तरफ से भी गाइडेंस होना चाहिए। अब जैसे जो है ये सब एक आदमी यहाँ आई जे ट्यूटर है
1: जी जी,
2: तो देखे कि कोई
1: मतलब इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं। जैसे आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि नगर निगम भी आए, समय समय पे भ्रमण करे, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सुपरविजन बहुत जरूरी है, लेकिन आपको नहीं लगता है ये कि जो सिविक सेंस की हम बात करते हैं कि हम लोग अब घर से निकलते हैं, अब समय आ गया है कि हमें पता होना चाहिए कि कुर्सी पे हमें बैठना है न कि पैर रखना है, तो चीजों का इस्तेमाल हमको सही ढंग से करना है न कि उनको तोड़ना है, नहीं? आपको
2: बहुत से लोग जो है वो रिव्यू लेके होते हैं
1: जी,
2: उनको जो सेंस है ही नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं बैठे हैं। एक सिविलाइज पर्सन ही अपने सही व्यवस्था के अनुसार बैठेगा, उठेगा
1: जी जी,
2: तो उन लोगों के फिर हमें ये बात कहना।
1: बिल्कुल सही। अच्छा अब अंकल, चलते चलते एक बात हमको जरूर बताइए अपने अनुभव से, हम अपने नौनिहालों को, बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को, अब चलिए जो जिन्हें जो रिजिड है उन्हें तो नहीं, लेकिन ये सिविक सेंस या इस तरीके के संस्कार हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कुछ सुझाव दीजिए।
2: ये तो साहब सिविक सेंस जो है अपने माता पिता बच्चे को फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग शुरू से करते हैं
1: जी,
2: तभी वो जो है
1: वो
2: इस संस्कार में डलेगा,
1: आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच अपने बहुमूल्य विचार हमसे रखने के लिए अंकल, आप लोगों ने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर सैर करने आई एक अन्य महिला जुड़ रही हैं, आइए इनसे जानते हैं। श्रोताओं को आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम वर्षा सक्सेना है और मैं यहाँ प्रेम नगर थाने के पास रहती हूँ। तो मेरा कुछ अनफॉर्चुनेटली मैं जो हूँ मतलब नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर जो पहले थी मतलब पहले से ज्यादा यहाँ पे साफ सफाई नहीं है
1: जी। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना सुंदर पार्क है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, लोग इतने सारे लोग टहलने आ रहे हैं
3: जी, जी,
1: तो ऐसे में और यहाँ डेवलप भी किए हैं सुंदर सी बेंचों के ऊपर, अब देखिए ये तोड़ दिया गया है,
3: तो लोगों की लापरवाही है कि आ रहे हैं वो और उसको मिस यूज कर रहे हैं
1: जी।
3: जो मतलब अच्छी है, सरकार ने बनाई है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ही लोग हैं, हम ही आपस में आप लोग हैं, हम जैसे लोग हैं कि उसका दुरुपयोग करके उसको बेकार कर रहे हैं।
1: तो आप एक बात और बताइए मैम, कि हम जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से ही, आजकल बच्चों को पता है कि टॉफी खाई तो ये डस्टबिन में डाला, अब हम लोग आकाशवाणी बरेली के माध्यम से हम लोग एक और मुहिम शुरू कर रखा है हम लोगों ने, सिविक सेंस डेवलप। सिविक सेंस मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ थूकना है, कहाँ उनको डस्टबिन में मतलब।
3: ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इस तरह से आपने मतलब संस्था बनाई है और आप जो है जगह जगह जा जाके पार्क में, ये तो पार्कों की उसके बेहतरी के लिए है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: तो आपको क्या सोचती हैं आपकी, हम और किस तरीके से और समाज में जन जागरूकता फैला सकते हैं इन सारे विषयों पर?
3: वही मतलब सर, ये तो खुद से सेंस होना चाहिए, तो अगर अपने अंदर

0: अगर व्यक्ति के अंदर नहीं है कि हम अच्छे से रहेंगे या साफ सुथरा रहेंगे, जब तक मन में आपके नहीं होगा तब तक आप किसी को भी स्वच्छ नहीं कर सकते, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ, अगर आप में ये भाव नहीं है तो आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़।
1: और वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि 140 करोड़ का देश है, एक कदम अगर हर व्यक्ति बढ़ाएगा तो 140 करोड़ कदम देश आगे बढ़ेगा।
0: और जब हम पहल ही नहीं करते हैं तो फिर सरकार में इसको दोष कैसे दे सकते?
1: बिल्कुल सही बात,
0: हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम नहीं सुधरेंगे तो सरकार कैसे आगे बढ़ेगी? सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब हमें जज्बा नहीं है, हमें जज्बा नहीं है, जो चीज वो दे रही है उसको हम साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं तो क्या है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
1: तो मैम आप हमसे जुड़ी, आपने अपनी राय रखी,
0: थैंक यू सर मेरे को जोड़ने के लिए।
2: सदाओ पेड़ सिर्फ हमारे लिए ही बहुउपयोगी नहीं है, इस आवाज को आप सुन के महसूस कीजिए कि ये पेड़ इन जीव जंतुओं के लिए भी कितने महत्वपूर्ण है। एक ये संगीत का काम कर रहा है और हीलिंग पॉइंट है, ये हमको हील करता है। तो पेड़ और पौधों का वृक्षों का रोपण जरूर कीजिए, जिससे कि इन बाशिंदों को भी जगह मिल सके और इतनी खूबसूरत इस जगह को और सुंदर तरीके से ये पेड़ सुशोभित करते हैं।
1: तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम झुमका गिरा रे 100.4 FM पर, और हम देख रहे हैं कि इस सीआई पार्क में वरिष्ठ नागरिकों का एक बहुत बड़ा सा एक ग्रुप कहा जाए, जो यहाँ टहलने के बाद बैठ के विश्राम कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इस सीआई पार्क के अंतर्गत इन ग्रुप के लोगों से कि क्या सोचते हैं ये सिविक सेंस के बारे में, क्या सोचते हैं ऐसी पब्लिक प्लेसेस के बारे में, और क्या सुझाव देंगे ये अपने अनुभवों के माध्यम से कि ऐसी जगहों को और खास तौर से अपने शहर को, अपने जिले को, अपने गांव को स्वच्छ रख सकें। तो नमस्कार अंकल जी।
3: नमस्कार
1: जी। अंकल आपका नाम?
3: श्याम सिंह।
1: श्याम सिंह। तो श्याम सिंह अंकल जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ये इतना बढ़िया पार्क है, सुंदर है, बड़ा है, हरा भरा है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि लोग गंदगी फैला देते हैं, सिविक सेंस नहीं है, लोगों कहीं थूकते हैं, कचरा फैला, तो इस पार्क में आप कब से आ रहे हैं और लोगों को अंदर सिविक सेंस डेवलप करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
3: हम तो 2-3 साल से आ रहे हैं
1: जी,
3: और लोगों को सिविक सेंस डेवलप करने के लिए
1: जी,
3: उन्हें अपना आचरण सही रखें
1: जी,
3: ताकि लोग देखकर समझे
1: जी। नाम अंकल?
4: आर के सक्सेना।
1: आर के सक्सेना। अंकल आप यहाँ कब से आ रहे हैं?
4: हमें बड़ी बात, 8-10 साल।
1: 8-10 साल से। अच्छा, 8-10 साल से इस पार्क के स्वरूप में क्या बदलाव देखा आपने?
4: स्वरूप में यह भी बेंचें पड़ गई
1: जी,
4: फुब्बारे भी ठीक हुए
1: जी,
4: लेकिन फुब्बारे फिर अपनी उसी हालत में पहुंच गए। यहाँ झूले थे, बच्चे आनंद लेते थे, लेडीज भी आके झूमती, एक बात
1: जी,
4: सब देख रेख के अभाव में
1: वो
4: सब खत्म हो गए
1: जी।
4: अब ये बस नाम मात्र के अवशेष रह गए, तो इसमें स्टाफ की बहुत कमी है। अब जैसे आजकल छोड़ दीजिए बरसात है, वरना नियमित घास की कटाई नहीं हो रही है, हेजेस की कटाई नहीं हो रही है, फुलवाड़ी तो है ही नहीं लगभग,
1: तो देख रेख का बहुत अभाव है।
4: हाँ, बहुत ज्यादा अभाव है, और कोई खास बात ऐसी नहीं है।
1: अच्छा, एक बात हमारे श्रोताओं के साथ जरूर हम आप लोगों के अनुभव से जाने, आप भी अपने स्तर से कोई एक क्रिएटिव, जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, पेड़ डे बाय डे लोग, वन क्षेत्र का कटाव है बहुत सारे, तो और प्रकृति का इम्बैलेंस अभी हमने नेपाल में देखा कितना बड़ा हादसा हुआ, तो प्रकृति के इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए आप अपने भाग एकदम वेरी बिगिनिंग पीढ़ी से अभी जो है यहाँ से क्या क्या सुझाव दे सकते हैं?
4: नहीं, जो अब वृक्षारोपण अभियान होता है
1: जी,
4: तो ये सब हरियाली जो है आप देख रहे हैं
1: जी,
4: 4-5 साल से तो ज्यादा ही हो रहा है
1: जी,
4: वृक्षारोपण अभियान
1: जी,
4: तो ये सब हरियाली उसी की देन है, उसी की देन है, लेकिन एक कमी है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं है जहाँ आदमी खड़े होकर अपनी वो सेल्फी ले सके, ये कोई अट्रैक्शन इस टाइप का नहीं है, है ना, तो ये बहुत बड़ी कमी है।
1: बिल्कुल, आपकी ये बात पहुंचेगी नगर निगम तक और वो जरूर इस चीज को डेवलप करेंगे। समय आ गया है कि हम लोगों को अपने फर्दर, मेरा मतलब है कि अपने स्टेप भी आगे बढ़ाने होंगे, क्या लगता है आपको?
4: भाई ऐसा है कि छोटी क्लास में एक ना एक पाठ ऐसा होना चाहिए
1: जी,
4: जो बच्चों को सिविक सेंस की शिक्षा दे कि हम सार्वजनिक स्थान पर बैठे हैं
1: जी,
4: तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमें किस तरह से शिष्टाचार होना चाहिए, इधर उधर गंदगी ना फेंकें, डस्टबिन में गंदगी फेंकें, ये करें वो करें, ये
1: बिल्कुल तो बिल्कुल एक अच्छा सुझाव आपने दिया कि प्राइमरी लेवल पे ही बच्चों को नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम ये सेंस डेवलप कराएं कि सिविक सेंस क्या होता है, इसका सेंस क्या है, और उसकी जो सैंटिटी है, उसकी जो पवित्रता है, उसका जो भाव है वो क्या है। दरअसल कागजी बातें हम कितनी भी कर लेंगे वो कागजी ही रहेंगी जब तक कि वो धरातल पर नहीं उतरेगी।

0: एक वकील है
1: जी,
0: लागे एग्जाम पास करने के बाद में
1: जी
0: उसको कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता
1: जी,
0: नहीं कर सकता जब तक कि वो दो तीन साल तक किसी वकील के पास
1: प्रैक्टिस नहीं
0: करेगा।
1: तो आज सीआई प्रहार के इस धरातल से, ग्राउंड जीरो से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झमका गिरारे, और ट्यून करना ना भूलिएगा 100.4 FM ओनली ऑन आकाशवाणी बरेली केंद्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल लोग, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू सो मच।
2: नाउ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम झुमका गिरारे, और जैसा कि हम आज उपस्थित हैं यहाँ सीआई पार्क में, और हमारे साथ हैं एक आंटी जी, आइए जानते हैं इन्हीं से। नमस्ते आंटी जी।
3: नमस्ते।
2: आपका नाम?
3: मीना सक्सेना।
2: मीना सक्सेना। तो मीना सक्सेना जी, आप इस पार्क में कब से आ रही हैं?
3: मैं आती तो काफी दिनों से, पर अभी बीच में 6 महीने से तबीयत खराब थी, तब से नहीं आ रही।
2: तो मीना जी, हम ये देखते हैं कि बड़ा सुंदर पार्क है यहाँ, बहुत सारे लोग यहाँ टहलने आते हैं, वर्कआउट करने आते हैं, तो ये पार्क इसी दशा में रहे, इसी तरह रहे, साफ सुथरा, जैसे हम देख रहे हैं कोई ये बेंच एक टूट गई है, तोड़ दे, लोग हम देखते हैं पूरा कचरा जो रैपर,
3: वो तो पब्लिक है ना।
2: हाँ जी,
3: पब्लिक है ये तो, मतलब कुछ लोग आते हैं अपने गंदगी करने के लिए, कुछ लोग साफ सुथरे अपने टहले और चले गए
2: जी। तो मेरा मतलब हमारा आकाशवाणी बरेली के माध्यम से यही प्रयास है कि लोगों के अंदर एक सिविक सेंस डेवलप करना है, मतलब अब कुछ कचरा कहाँ फेंके, कूड़ा कहाँ फेंके, अब ये सब बातें तो सिखाने की बहुत ज्यादा अब नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि लोग अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझनी चाहिए?
3: समझना चाहिए, जिम्मेदारी तो समझना ही चाहिए।
2: बिल्कुल
3: भाई, तो यही स्टेशनों पे होता है
2: जी,
3: स्टेशन पे भी यही होता है, ट्रेन में भी यही होता है,
2: और हम लोग अपने घरों को कितना साफ सुथरा रखें,
3: घर पे भी,
2: तो यही सार्वजनिक जगहों को भी अगर हम साफ सुथरा रखें तो ये निश्चित रूप से हमारा दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी समाज की। थैंक यू आंटी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया आप हमसे। और श्रोताओं, इस पार्क यानी सीआई पार्क के बीचों बीच स्थित है ये शंकर जी का प्रमुख मंदिर, न सिर्फ लोग यहाँ सैर करने आते हैं बल्कि सुबह सैर के साथ यहाँ देव दर्शन का भी लाभ मिलता है। तो ऐसे ही इस पार्क की सुंदरता और पवित्रता को बनाए रखें, इस पार्क को साफ सुथरा रखने में नगर निगम का सहयोग करें और स्वयं भी श्रमदान करें। इस सिविक सेंस की मुहिम को लेकर आकाशवाणी बरेली की टीम पहुंची आज सीआई पार्क में, तो इस कार्यक्रम झुमका गिरारे को सुनना ना भूलिए आप ओनली ऑन 100.4।
4: तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी प्रस्तुति कार्यक्रम झुमका गिरारे की आज की। प्रोग्राम का समय अब संपन्न हो चला, श्रोताओं कार्यक्रम से अनुमति दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM रेनबो के प्रोग्राम जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, इसी ट्रैक के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुका है। ये जानते हैं कौन है वो, क्या संदेश देना चाहते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, प्लीज उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, नेटवर्क में आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो में। ये बताइए आपका गुड नेम क्या है।
1: हमारा नाम अल्तमस अली है
0: अल्तमश अली जी, कहाँ से
1: जी,
0: बात कर रहे हैं।
1: गांव भंसरिया जिला लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से। बताइए वैसे आप क्या करते हैं।
1: सर हम पढ़ाई करते हैं, टेंथ
0: अच्छा, किस क्लास में हैं।
1: में।
0: 10th में हैं, यानी बोर्ड से इस बार आपका। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मेल लिया हुआ था, उस मेल में
1: जी
0: बताया गया था कि बोर्ड्स में मैथ्स की तैयारी कैसे करें।
1: सर, बताया था कि 5 साल के पहले जो पेपर आए थे उनको ही सुना
0: बिल्कुल सही बताया
1: था
0: आपने,
1: सर।
0: और ये आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, बिल्कुल आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे बोर्ड्स में। वैसे ये बताइए, रेनबो सुनते रहते हैं,
1: जी सर, बहुत सुनते हैं रेमबो, अच्छे
0: कैसा लगता है।
1: लगते हैं प्रोग्राम सारे।
0: अच्छे लगते हैं। चलिए, आपके बोर्ड्स पेपर हैं तो थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिलहाल क्या संदेश रहेगा आपका।
1: जी सर, हमारा संदेश ये है कि जैसे अगर माता पिता कुछ भी कहते हैं तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, और आपके वो भले के लिए ही कहेंगे
0: जी
1: और उनकी बातों पर ज्यादा से ज्यादा गौर करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जी सर, कुछ नाम लेना चाहते हैं प्लीज।
0: ज़रूर आप नाम ज़रूर लीजिए।
1: वो निदा हैं और शहनाज हैं।
0: जी चलिए, आपने ये नाम लिए, आपके साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई वो हमसे जुड़े रहते हैं और आप उनका नाम लेते हैं, अच्छा लगता है जान करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। भाई हम तो यही कहेंगे कि भाई आप अपने बोर्ड्स प्रिपरेशन पर ज़रूर ध्यान दीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए, यही FM रेनबो टीम की कामना है। फिलहाल 11:37 का वक्त और लगातार लोगों के फोन कॉल हम तक पहुंच रहे हैं और फोन लाइन्स ओपन है। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से डायल कीजिए 0522-22-38852 या फिर 0522-22-38854। अगर आपका कॉल नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आप हमें ईमेल भेज दीजिए fmakashwani@gmail.com पर। और एक बहुत ही प्यारा सा ईमेल आया हुआ है जलीस अंसारी जी का। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ ये हम आपको बताएंगे।

0: जी हाँ, 100.7 FM रेनबो पर आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल और बेहतरीन सा एक शो चल रहा है जिसका कि नाम है भाई क्या नाम है जल्दी से बता दे भाई नाम है इसका संदेश आपके गीत हमारे बहुत सारे लोग हमको संदेश भेज रहे हैं लगातार झमाझम संदेश हमको ईमेल के माध्यम से मिल तो रहे हैं फोन कॉल पर भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ा है आइए जल्दी से आपकी बात करवा देते हैं हेलो
1: हेलो
0: FM रेनबो में

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं सर आप? कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है?
1: सर, हमारा नाम हिमांशु यादव है, हम ग्राम कोकलवाड़ा, जिला श्रावस्ती।
0: श्रावस्ती से आप बात कर रहे हैं, कैसे हैं सर आप?
1: सर हम ठीक हैं सर, हमें सर मत कहिए, हम आपसे छोटे हैं।
0: आप हमसे छोटे उम्र में हो सकते हैं लेकिन आप हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं। आप हमारे श्रोता हैं, हमको सुनते हैं, इसलिए आप हमारे सम्माननीय हैं। और आपको एक बात जरूर बता दूं कि हमारे सामने छोटा हो या बड़ा, हमें सबको इज्जत जरूर देनी चाहिए।
1: हेलो
0: जी हाँ, तो ये बताइए क्या करते हैं आप,
1: सर? हम पढ़ाई करते हैं सर,
0: किस क्लास में हैं?
1: आपकी तो 10th में है सर।
0: 10th में हैं, यानी बोर्ड्स आपके भी हैं। इससे पहले भी हमारी एक कॉलर से बात हुई थी तो वो भी बोर्ड्स 10th में ही थे और फिलहाल इस बार आपका भी बोर्ड है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारियां, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है?
1: यस सर।
0: हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे नंबर्स भी गेन करेंगे बोर्ड्स में और अपनी पूरी
1: यस
0: तैयारी,
1: सर।
0: पूरी मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे।
1: आपको सर विश्वकर्मा पूजा की आपको बहुत ढेर ढेर शुभकामनाएं
0: बिल्कुल, आप सभी को, हमारे सभी
1: सर।
0: लिसनर्सों
1: आज
0: को, आपको
1: विश्वकर्मा
0: भी बहुत बहुत
1: पूजा था
0: शुभकामनाएं।
1: तो इसलिए स्कूल में छुट्टी है सर,
0: अच्छा आज छुट्टी है
1: और
0: आपकी,
1: फोन भी लगाने को मिल गया।
0: चलिए आपकी बात भी हो गई लाइव। फिलहाल क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को?
1: सर हम संदेश ये देना चाहेंगे, जो सर नहर होता है ना
0: जी, नहर जो गांव में बीच से पानी की नहर
1: सर,
0: गुजरती
1: गांव
0: है
1: में होता है, मेरे यहाँ भी है सर नहर, तो
0: जी,
1: कृपया नहर में बच्चे को नहाने चले जाते हैं, बड़े बड़े कई लोग सारे नहाते हैं नहर में, मना नहीं करिए तो
0: जी
1: हादसा हो जाएगा।
0: बिल्कुल
1: पिछले साल हमारे गांव में, मतलब मेरे नहर है ना सर,
0: जी
1: उसमें
0: जी
1: हादसा हो गया था एक बच्चे का।
0: अच्छा, तो ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। जो नहर का पानी होता है, एक तो साफ सुथरा नहीं होता है, दूसरी चीज वो नहर
1: और सर उसमें कीचड़ कीचड़ पता नहीं क्या क्या आता
0: नहीं,
1: है,
0: कीचड़ भी आते हैं, इसके अलावा कुछ जंगली जो सांप वगैरह होते हैं वो भी बहते हुए
1: जैसे जो
0: दिखाई
1: सर
0: देते हैं।
1: जो मगरमच्छ होता है सर।
0: जी, ये भी देखा गया है नहर में आपके यहाँ?
1: यस सर, मेरे यहाँ से वीडियो बहुत बनाते हैं जो आता है।
0: ओ, तो मतलब आपने जो बात कही है नहर में नहीं नहाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें भाई कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है और पानी तो खैर गंदा होता ही है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: सर हम नाम लेना चाहेंगे, एक श्रोता थे उनका नाम भूल गए, हमसे पहले ही जुटे थे, लखीमपुर
0: जी,
1: खीरी से, और विनीत कुमार जी हैं, पिंटू तिवारी जी हैं, रिंकी पिंकी हैं, और
0: जी
1: समा परवीन जी हैं, और सबसे पहले तो आपको सर डेडिकेट रहेगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और
1: नमस्ते।
0: इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। दोस्तों आप सभी की रेडियो सेट पर एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है फ्रॉम द मूवी खानदानी शफी खाना, तो इस म्यूजिकल ट्रैक को एंजॉय कीजिए और हमें डायल करते रहिए ऑन मोबाइल नंबर्स एंड फोन नंबर्स, एंड जो हमारे फोन नंबर्स हैं वो है 0522-2238-852 एंड 2238-854। कॉल नहीं लग रही, कोई बात नहीं, आप हमें ईमेल कर दीजिए भाई, fmakashwani@gmail.com पर आपका ईमेल जरूर लिया जाएगा और आपका जो संदेश है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, अपने दिल के साथ, RJ निखिल के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जी हाँ, 100.7 FM रेनबो सुन रहे हैं, 11:50 का वक्त, और हमारे साथ एक कॉलर छुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कौन है वो। हेलो हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी सर, नमस्कार, रेनबो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम?
5: मनोहर लाल वर्मा।
4: मनोहर लाल वर्मा जी, तो बताइए कैसे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
5: श्रावस्ती से बात कर रहे हैं।
4: अच्छा, श्रावस्ती से। अभी थोड़ी देर पहले भी कॉलर से बात हुई थी, वो भी श्रावस्ती से थे। खैर, क्या करते हैं सर आप?
5: खेतीबाड़ी का काम करते हैं।
4: अच्छा, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इस समय क्या खेतीबाड़ी में आपका क्या चल रहा, कौन सी फसल लगाई आपने?
5: खरीफ की फसल लगी।
4: खरीफ की फसल लगी है। बारिश का मौसम है, कैसा मौसम है आपके यहाँ? हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी सर, मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
5: हमारे यहाँ तो अभी सुबह से बारिश हो रही थी, 10 बजे बारिश।
4: अच्छा, बारिश का मौसम है। तो सर बताइए क्या संदेश रहेगा आपका? हेलो
5: हेलो
4: सर, क्या संदेश देना चाहते हैं?
5: सर हमारा संदेश ये रहेगा
4: जी,
5: कि जो लोग सर बाइक चलाते हैं
4: जी जी,
5: तो सर फोन कभी आ जाता है, इसका सावधानी रखें, और यही बात से कहना।
4: बिल्कुल सही बात कही आपने, बाइक चलाते समय बिल्कुल सावधानी जरूर रखनी चाहिए।
5: सर हमारा पहली बार कॉल लगा है इसका।
4: जी बहुत ही अच्छी बात है सर, आप तो कामयाब हुए। बिल्कुल आपका कॉल लगा है, इतने सारे लोग हमें डायल करते हैं, और जिसका भी कॉल लगता है हम कोशिश करते हैं उनसे ज़रूर बात करें। और जैसे कि हमने आपसे बात की, आप हमारे लिसनर हैं, हमको सुनते हैं, और आपका कॉल लगा हुआ है, ये हमारे लिए भी एक उपलब्धि है कि हमारे साथ एक लिसनर ऑन कॉल और जुड़े हैं लाइव वो भी। हेलो सर, किसी का नाम लेना चाहेंगे?

0: चलिए ठीक है। तो मनोहर लाल जी का ये कॉल था और उन्होंने बताया कि कैसे हमें बाइक चलाते वक्त बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और फोन पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। फिलहाल 11:53 का वक्त हो रहा है और जाते जाते आपको बता दें कि हमें एक भाई मेल भी आया हुआ था जलीस अंसारी जी का। इन्होंने लिखा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। इन्होंने नाम लिखा है साहिबा अंसारी, महेवागंज, जिला लखीमपुर खीरी से, और पूछा है कैसे हैं सर आप। बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी तारीफ भी किया इन्होंने, थैंक यू सो मच उसके लिए। लिखा संदेश ये है कि बारिश के मौसम में अपने बच्चों को छत पर जाने से रोक कर रखें, क्योंकि छत गीली होती है और पानी भी भरा होता है, पैर फिसल सकता है। और साथ में ये भी कहा है कि कुछ भाई बहनों के नाम इन्होंने लिखा है, जो ज़रूर ले लीजिएगा। तो बिल्कुल हम उनके नाम ज़रूर लेंगे। उन्होंने लिखा हुआ है शाजिया अंसारी, वकील अहमद, मंसूरी भाई, गुलसफा सिद्दीकी आपी, और आसिफ अंसारी भाई, और रोशनी दीदी, और बबीता दीदी। क्या बात है, इतने सारे लोगों के इन्होंने नाम लिखे, इतना अच्छा मेल भेजा, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नौशाद सिद्दीकी जी का भी हमें मेल आया हुआ है और इन्होंने लिखा है रेडियो एफएम रेनबो, नमस्कार भाई, नमस्कार आपको भी। और इन्होंने लिखा है बेहतरीन नगमे सुनने को मिल रहा है, आपकी प्रस्तुति लाजवाब है। क्या बात है, उम्दा पेशकश के लिए आपको मुबारक हो, शुक्रिया। और इन्होंने पुरानी भिलाई 3 छत्तीसगढ़ से, जी हाँ छत्तीसगढ़ से मेल किया हुआ है। और डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार, मतलब पूरा नाम लिखा है और शुक्रिया भी बोला है, थैंक यू सो मच आपका भी इस मेल के लिए। फिलहाल दोस्तों अब ये जो टाइम है ना 11:54 का, ये इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, बट कोई बात नहीं, एक प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप सबके लिए छोड़कर जाऊंगा।
1: बेचैन मन,
0: ये प्रायः सा म्यूजिकल ट्रैक है फ्रॉम द मूवी कोई अपसा। तो इस म्यूजिकल ट्रैक को आप एंजॉय करते रहिए और बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, सुरों का लखनवी एहसास।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। गोरखपुर में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आज श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव का आयोजन जटाशंकर पर किया गया। कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर काशी में आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। अहल्याबाई घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और डमरू की गूंज के बीच मां गंगा का पूजन किया गया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 76 बटुकों ने आचार्य उदित नारायण मिश्र के नेतृत्व में 76 लीटर केशर जल और दूध से गंगा का अभिषेक किया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री और शहर दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने कहा कि देवशिल्पी विश्वकर्मा जयंती के दिन जन्मे प्रधानमंत्री मोदी को आधुनिक भारत का शिल्पी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कार्यक्रम संयोजक डॉ. पवन कुमार शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी के विकास को नई दिशा दी और गंगा के प्रति आस्था के साथ उसके संरक्षण और स्वच्छता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर निगम लखनऊ द्वारा वृद्ध सफाई अभियान का आयोजन आज से आरंभ किया गया। इस अभियान का शुभारंभ प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर सुषमा खरकवाल ने की। इस अवसर पर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब से सार्वजनिक जीवन में कदम रखा है, तब से उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि आज से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान पूरे एक महीने यानी 17 अक्टूबर तक चलता रहेगा। इसके तहत नगर निगम में जोन के हिसाब से कार्यों का बंटवारा किया।

किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा की ओर से देशभर में सेवा संकल्प माह मनाया जा रहा है। अयोध्या में इसकी शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई। जनपद के भाजपा नेता अलग अलग जगह पर संकल्प सेवा माह मना रहे हैं। वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सेवा माह के तहत शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और यश की कामना के लिए घर घर दीप जलाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार आदाब। 100.7 FM रेनबो पर आपने ट्यून इन किया हुआ है और आगाज हो गया है आपके पसंदीदा प्रोग्राम शत्रुपा का। तो भाई आज का क्या सेगमेंट है, क्या टॉपिक है जो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम में, ज़रूर बताऊंगी आपको। लेकिन हाँ, एक चीज़ प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जो कहना चाहूंगी वो ये है कि प्लीज़ ख़ुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, मतलब हम सब की हैबिट होती है कि हम खुद को एकदम किनारे कर देते हैं। हम महिलाओं की स्पेशली ये हैबिट होती है कि हम खुद को किनारे रख देते हैं, बाकी

तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगी? बड़ा क्वेश्चन है ना। देखिए भाई, आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के अवसर पर हम आपसे बात करेंगे कि पेशेंट्स की सुरक्षा सिर्फ दवाइयों से नहीं होती, बल्कि सही वित्तीय तैयारी, जी हाँ, सही फाइनेंशियल लिटरेसी से भी होती है। और खासकर से घर की महिलाओं को इसकी बेसिक समझ होना बेहद ज़रूरी है, ताकि मुश्किल वक्त में वो बिल्कुल भी ना घबराएं, बल्कि मजबूती से स्थिति को संभाल सके। इसी बात को आसान बोलचाल की भाषा में समझने के लिए आज हम अपने साथ ऑन एयर इनवाइट करेंगे एक स्पेशल गेस्ट को। लेकिन हाँ, उनको इनवाइट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों किया है हम सबके लिए, तो इसे एंजॉय करेंगे और उसके बाद गेस्ट से हम जरूर इंटरेक्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड कीप एंजॉय 100.7 FM रेनबो।

0: ऑलराइट, म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज हम स्टूडियो में ऑन एयर इनवाइट करेंगे एक स्पेशल गेस्ट को. तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ ऑन एयर स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में लगभग 33 वर्षों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ विशेषज्ञ मिस्टर अमित कुमार निगम सर. और आप सबको ये मैं बता दूं कि सर NISM, NSE एकेडमी और IILM बिजनेस स्कूल जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थानों में फाइनेंशियल सर्विस ट्रेनर के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं. सर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: बहुत बहुत धन्यवाद फातिमा जी.
0: जी,
1: आपके सभी श्रोताओं और खासकर हमारी गृहणियों व महिलाओं को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर. अमित सर, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम आज अपने टॉपिक पर आते हैं. सबसे पहले एक आम गृहिणी या आम इंसान के लिए सरल भाषा में प्लीज आप बताइए हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम क्या होता है. और कई बार लोग ये सोचते हैं कि 5 लाख का कार्ड है तो अस्पताल का पूरा 5 लाख का बिल कंपनी ही भरेगी. इसमें कितनी सच्चाई है सर?
1: फातिमा जी, आसान शब्दों में समझिए.
0: जी,
1: हेल्थ इंश्योरेंस आपको आर्थिक ढाल है, यानी कि सुरक्षा कवच है.
0: जी,
1: जैसे हम बारिश से बचने के लिए छाता रखते हैं.
0: जी,
1: वैसे ही बीमारी के अचानक आए भारी खर्च से
0: जी
1: अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है.
0: जी,
1: रही बात 5 लाख के पूरे बिल की.
0: जी,
1: तो ये गलत फहमी है. दो पांच ये है, 5 लाख आपकी अधिकतम सीमा है, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम लिमिट होती है.
0: जी,
1: कोई खुला चेक नहीं है.
0: जी,
1: बिल में से कितना पैसा कंपनी देगी ये पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है.
0: ऑलराइट,
1: जैसे कमरे का किराया.
0: जी,
1: रूम रेंट लिमिट.
0: जी,
1: कई कंपनियों में 1% ऑफ दी सम इंश्योर्ड होता है.
0: जी,
1: दास्ताने, PPE किट जैसे नॉन मेडिकल सामान या कुछ खास बीमारियों की कैपिंग भी होती है.
0: जी,
1: इसलिए महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि पॉलिसी का कुल कवर कितना है.
0: जी,
1: और उसमें कमरे की लिमिट क्या है.
0: जी, मतलब अगर आपने बहुत VVIP लेवल का एक रूम ले लिया तो हो सकता वो उस कवर में ना इंक्लूड हो.
1: नहीं होता हो.
0: जी जी जी तो इसके अलावा एक और जो बड़ा कंफ्यूजन रहता है सबके मन में वो ये रहता है कि पॉलिसी खरीदते वक्त घर में रखी पॉलिसी में महिलाओं को कौन कौन सी कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें जरूर देख लेना चाहिए. और अगर किसी को पहले से किसी तरीके की बीमारी है, फॉर एग्जांपल BP है, शुगर है, तो क्या इंश्योरेंस बेकार हो जाता है? इस तरीके की भी भ्रांतियां होती हैं लोगों के मन में.
1: BP या शुगर होने से इंश्योरेंस बिल्कुल बेकार नहीं होता.
0: जी,
1: बस शर्त इतनी है.
0: जी,
1: कि पॉलिसी लेते समय बीमारी छुपानी नहीं चाहिए.
0: ओके,
1: 2 से 4 साल के इंतजार, जिसे हम वेटिंग पीरियड कहते हैं.
0: जी जी जी,
1: के बाद प्री एग्जिस्टिंग या पुरानी बीमारियों का खर्च भी मिलने लगता है.
0: जी,
1: घर की महिलाओं को पॉलिसी फाइल में 5 बातें जरूर देखनी चाहिए.
0: जी,
1: रूम रेंट लिमिट, एक दिन में कमरे का किराया कितना मंजूर है.
0: जी,
1: वेटिंग पीरियड, पुरानी बीमारियों का कवर कितने साल बाद शुरू होगा.
0: जी,
1: क्या कवर नहीं है. सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि क्या कवर नहीं है.
0: जी,
1: लोगों को लगता है कि सारी चीजें इंक्लूडेड है, बट ऐसा नहीं होता.
0: जी,
1: कौन सी बीमारियां या सामान बाहर है, मतलब एक्सक्लूजन्स.
0: अच्छा,
1: पेमेंट कोपे, मतलब क्या बिल का 10-20% अपनी जेब से देना है.
0: जी,
1: कैशलेस अस्पताल की लिस्ट अपने घर के पास, कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल है, इस पे बहुत जरूर ध्यान रखिए कि कौन से हॉस्पिटल आपकी पॉलिसी में कवर्ड है. इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है.
0: तो सर, इसके

0: जब कोई पॉलिसी लेता होगा तो जो पेपर साइन करता होगा तो उसमें ये सारे पॉइंटर्स मेंशन होते होंगे
1: जी, इस
0: जी
1: सारे पॉइंट्स में अगर जब पॉलिसी आती है,
0: जी
1: जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लें,
0: जी
1: हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो
0: जी
1: सबसे जरूरी है, क्या एक्सक्लूजन नहीं है, ये
0: जी
1: क्लियर होना बहुत जरूरी है।
0: जी क्योंकि ये जो एक्सक्लूजन है ना सर, ये काफी लोगों को नहीं पता होता है। इनफैक्ट वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, हम में से कई लोग उन्हें रीड भी नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्स हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक रीड कर लेना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जिनसे हम पॉलिसी ले रहे हैं उनसे कंफ्यूजन्स दूर कर लेने चाहिए।
1: ऐसा है कि जो एक्सक्लूजन्स होते हैं उसकी एक समरी भी पॉलिसी में होती है, स्टार्टिंग में जो
0: जी
1: मोटे मोटे अक्षर में होती है,
0: जी
1: उसको कम से कम पूरी डिटेल आप पॉलिसी ना पढ़ पाए, कम से कम वो मोटा मोटा डिटेल तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए।
0: जी ये इसी से एक और क्वेश्चन उत्पन्न होता है, और वो होता है कि कैशलेस, कैशलेस का सर असली मतलब क्या होता है?
1: देखिए
0: जी
1: देखिए फातिमा जी, पहला और सबसे बड़ा नियम है इलाज पे, मतलब एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि
0: जी
1: जब हम कैशलेस करने जाते हैं
0: जी
1: तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला नियम है इलाज पहले कराना है, कागजी कार्रवाई बाद में। ठीक
0: जी
1: है, इमरजेंसी में पहले उसको भर्ती कराएं
0: जी
1: और उसके बाद टीपीए काउंटर जाएं। ठीक
0: जी
1: है, कैशलेस
0: जी
1: में क्या होता है कि आपका जो हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है
0: जी
1: या बीमारी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो आपको प्री अप्रूव कराने पड़ते हैं। लेकिन इमरजेंसी के केस में तो क्या होगा कि आप पहले तो मरीज का इलाज कराएंगी ना, भर्ती
0: पहले मुझे भर्ती कराएंगे, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अ सडन।
1: कराएंगे, और 24 घंटे के अंदर आप अपने टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे।
0: जी
1: जब इन्फॉर्म करेंगे तो वो सैंक्शन करेगा उस पर्टिकुलर, जो आप इंफॉर्मेशन उसको देंगे ना, हॉस्पिटल का जो टीपीए वो जो होता है
0: जी जी
1: काउंटर होता है,
0: जी जी
1: जो टीपीए काउंटर होता है, या वहां पे मेडिकल क्लेम से रिलेटेड या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो काउंटर होता है
0: जी
1: उसको आप बताएंगे, फिर वो प्री ऑथराइजेशन लेगा हॉस्पिटल से इन
0: जी
1: केस ऑफ इमरजेंसी।
0: जी
1: 24 घंटे के अंदर वो आ जाता है, आज की तारीख में ऑनलाइन सब फैसिलिटीज हैं,
0: जी
1: तो उसमें वो क्लियर कर देगा कि जैसे सपोज आपका एक्स अमाउंट खर्च होना है तो उसमें से कितना अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, जरूरी नहीं है कि जो आपने जैसे 2 लाख का खर्चा है तो पूरा 2 लाख का 3 लाख का खर्चा मिलेगा,
0: जी
1: वो बता देगा कि आपका कितना अप्रूवल अमाउंट है डिपेंडिंग
0: हाँ
1: अपॉन द डिजीज एंड द कैपिंग जो आपकी वो साथ में लगी है।
0: जी
1: महिलाओं को क्या करना है,
0: जी
1: देखिए मैं आपको बताता हूं,
0: जी
1: अपने पति का और अपनी फैमिली का हेल्थ कार्ड हमेशा अपने साथ रखें,
0: जी
1: आधार कार्ड रखें, पॉलिसी नंबर, फोन
0: जी
1: और वो पर्स में हमेशा तैयार रखें।
0: जी
1: ये तो मैंने आपको इमरजेंसी का बताया।
0: जी
1: अगर आपको सपोज
0: जी
1: पहले से पता है कि मेरा 5 दिन बाद ऑपरेशन कराना है, तो उसमें आप 2-3 दिन पहले जाके
0: जी
1: उसका पहले से अप्रूवल ले लीजिए, अप्रूवल आ जाएगा फिर आपको पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट मुझे सैंक्शन हुआ है, और फिर आप अपना थोड़ा बहुत तो आपको दें, 100% आपको नहीं मिलेगा।
0: हाँ सर, आपने दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डिस्कस कर लिए कि प्री प्लान्ड हमारी डिजीज और एक अनप्लान्ड होती है जो इमरजेंसी होती है, तो दोनों के ही केसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सर आप से जो जानकारी प्राप्त हो रही है ना, बहुत बेनिफिशियल है हम सब के लिए। लेकिन इसी बीच में वक्त हो गया है कि भाई जिंदगी वाकई में एक पहेली सी लगने लगती है, इस तरीके की बातें करिए तो पहेली सी लगने लगती है। बस इसी नोट पर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे सर, और हम दोबारा आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे। तो हमारे लिसनर्स से रिक्वेस्ट है, रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: कभी तो हंसाए।
1: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद फिफ्थ एडिशन,
2: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
1: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री फ्री, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: ऑल राइट, 12:28 का वक्त हो गया है और हमारे साथ हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर अमित कुमार निगम जी, वो वापस से कनेक्ट हो गए हैं। स्वागत है सर आपका एक बार फिर से।
1: जी नमस्ते
0: जी सर।

0: दो और मेरे जहन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल लिसनर्स के लिए भी, हमारे जो कॉमनर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा मतलब एक जिटरी सिचुएशन का सबब बनते हैं। उसमें ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने जरा देर पहले बात की थी कैशलेस की, तो अगर कैशलेस ना मिले या क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या बीमा खत्म हो जाता है?
1: नहीं,
0: जी
1: बिल्कुल नहीं। कैशलेस
0: जी
1: मना होने का मतलब बीमा खत्म होना नहीं है।
0: जी
1: आप खुद बिल चुकाकर बाद में रीएम्बर्समेंट के लिए कागज जमा कर सकती हैं।
0: जी
1: अगर क्लेम रिजेक्ट हो तो
0: जी
1: रिजेक्शन के कारण पढ़कर दोबारा अपील, ग्रीवेंसेस सेल होते हैं, की जा सकती है।
0: जी
1: और अगर हाँ, आप एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा,
0: जी
1: अगर आपके पति की ऑफिस वाली पॉलिसी भी है
0: जी
1: या आपके और पर्सनल भी है तो दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। पहले
0: जी
1: आप ऑफिस वाली पॉलिसी से क्लेम लें, बचे हुए बिल के लिए अपनी पर्सनल पॉलिसी इस्तेमाल करें।
0: तो सर ऐसा तो
1: आप
0: नहीं
1: एक
0: होगा इस कंडीशन में कि जैसे पर्सनल ऑफिस वाली पॉलिसी हमने यूटिलाइज की, तो जो हमारी
1: जी
0: पर्सनल पॉलिसी है उसको रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा कि आप तो ऑलरेडी एक पॉलिसी अवेल कर चुके हैं?
1: नहीं, उसमें
0: जी
1: यह है कि आपको दो पॉलिसी से एक अमाउंट का क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे सपोज
0: जी
1: आपका 5 लाख की पॉलिसी है
0: जी
1: ऑफिस से
0: जी
1: और 5 लाख की है पर्सनल।
0: जी
1: अगर आपका क्लेम 5 लाख का है और आपने ऑफिस की क्लेम फाइल कर दिया तो
0: जी
1: आपको 5 लाख तक की जो भी अपनी लिमिट है या जो भी है उससे मिलेगा। ये नहीं है कि आप उसी बिल से दोनों से 5 5 लाख में जो है वो आप पैसा ले लें। नहीं, अगर आपका टोटल खर्चा 10 लाख का आता है, दस
0: जी
1: मतलब विद इन मतलब 5 से 10 लाख के बीच में आता है, तो फिर दोनों पॉलिसीज में से आपको क्लेम मिल जाएगा।
0: ओके ओके
1: मतलब लेकिन आपको दोनों एक ही डिजीज एक ही चीज के लिए दोनों पॉलिसी से आप फायदा नहीं उठा सकते। ओनली रियम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है।
0: अच्छा ओके हाँ सर, ये एक बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है, हम सब के दिमाग में चलता रहता है, और काफ़ी हद तक जो है इसका क्लैरिफिकेशन हमें मिल पाया है। हाँ अब इसी बीच में लिसनर से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ अपने पॉलिसीज़ के, अपने क्लेम्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर से प्रॉपरली, जब आप मतलब दिमागी तौर पर रिलैक्स हो तब ज़रूर उन्हें पढ़िए, लेने से पहले पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में सारी क्लैरिफिकेशंस हो। राइट अच्छा एक एक सवाल और आता है अमित जी, डिस्चार्ज के वक्त हॉस्पिटल से कौन कौन से कागज मांग कर हमें लेने चाहिए?
1: देखिए, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि
0: हाँ
1: ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी लेनी है।
0: जी
1: जो डॉक्टर डिस्चार्ज की एक समरी लिख के देता है, ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी, ये याद रखिएगा। फोटो कॉपी नहीं चलेगी। फोटो
0: ओके
1: कॉपी आप अपने रेफरेंस के लिए रखेंगी, लेकिन जो सबमिट होगी
0: जी
1: वो ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी सबमिट होगी।
0: ओके
1: दूसरा, अस्पताल का पूरा विस्तृत बिल होना चाहिए, आइटम वाइज ब्रेकअप होना चाहिए। ये नहीं कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस या इस तरह से,
0: जी
1: आइटम वाइज एक एक आइटम का आप समझ रहे हैं ना, ब्रेकअप होना चाहिए कि
0: जी
1: इस दवा का इतना पैसा, इस ग्लव्स का, सबका एक ब्रेकअप होना चाहिए।
0: तो सर ये डे वाइज होना चाहिए, जैसे डेट
1: वो बिल
0: वाइज?
1: देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो बिल वाइज बिल होना चाहिए, पक्का बिल।
0: अच्छा
1: हाँ, बिल होना चाहिए। और एक्चुअली हॉस्पिटल जब होता है ना, जब डिस्चार्ज करता है तो वो विस्तृत बिल देता है।
0: ओके
1: लोग क्या करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। एक तो मिस हो गए तो मिस हो गए, अगर मिस हो गए तो उसको उसका क्लेम नहीं मिलेगा।
0: ओके ओके
1: उसको इसीलिए संभाल के रखना है। आप
0: जी
1: एक एनवलप बना सकते हैं, एक थैला जिसे कह सकते हैं, उसमें आप डालते जाइए ताकि, क्योंकि घबराहट में आपसे कोई मिस ना हो जाए।
0: जी
1: दूसरा, सभी लैब व जांच रिपोर्ट और डॉक्टर का पर्चा रखें।
0: जी
1: डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है मेडिक्लेम में,
0: जी
1: मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में ये बहुत जरूरी है।
0: जी
1: और जो पैसे क्यों कट जाते हैं,
0: जी
1: कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन पेबल सामान है, जैसे ग्लव्स,
0: जी
1: सैनिटाइजर आदि।
0: जी
1: और महंगे का, आपने सपोज आपकी लिमिट है 1,000 की, आपने ले लिया 2,000 का,
0: रूम
1: तो क्या होता है कि अगर आपने लिमिट इंक्रीज करी तो डॉक्टर की फीस भी कमरे के हिसाब से इंक्रीज हो जाती है,
0: जी
1: तो वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा जो आपका, आप जिस कमरे के लिए

0: ऑथराइज है,
1: अच्छा
0: उसमें डॉक्टर की फीस कितनी है, उसकी आईसीयू की फीस कितनी है, उससे रिलेटेड, आप समझ गए, तो वो
1: सर,
0: प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो कट जाएगा।
1: सर इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे जब पेशेंट भर्ती होता है ना, तो कई बार होता है कि जो 1,000 वाला कमरा है वो नहीं खाली, फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने खुद से ही अलॉट कर दिया कि आप इस रूम में हो जाइए, तो इस कंडीशन में मान लीजिए वो 10 दिन भर्ती रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो 10 दिन वो रहा वहां पे, तो
0: नहीं, तो
1: अब
0: उसका जस्टिफिकेशन हॉस्पिटल हॉस्पिटल कभी नहीं करेगा,
1: हाँ
0: आपसे वो पूछेगा,
1: जी
0: आपके सैंक्शन के बिना वो नहीं करेगा। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, उस हॉस्पिटल तो हो सकता है ना कि आपको ज्यादा में कह दे कि नहीं है,
1: जी
0: तो बोले हाँ, इसलिए ये आपको जैसे प्री एग्जिस्टिंग और इसमें आपको बताना पड़ेगा
1: जी
0: कि आपको
1: ओके
0: ये तैयार रहना पड़ेगा कि अगर मैंने महंगा कमरा ले लिया है।
1: जी
0: अब जैसे आप किसी होटल में जाती है या
1: जी
0: कहीं जाती है, अगर आपको वहां अवेलेबल नहीं है,
1: जी
0: इसीलिए मेरा एक सजेशन ये रहता है कि
1: जी
0: आप अपने घर के पास कम से कम एक या दो लिस्टेड हॉस्पिटल रखिए, आपके
1: हाँ
0: पास ऑप्शन होना चाहिए,
1: जी मतलब पहले से ही आप इसकी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करके रखिए।
0: इन्फॉर्मेशन अपने घर के
1: हाँ
0: पास और उसके नंबर, ये आपको पता हो, मतलब देखिए बाकी तो ऊपर वाला मतलब पता है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन रखिए,
1: जी जी जी
0: यही
1: जी
0: अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है।
1: जी तो मतलब अगर हम पूरे ये जो हमारी पूरी टॉक हुई है इसको अगर समराइज करें सर, तो कौन से वो 5 पॉइंटर्स हैं जो निकल के आएंगे जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं सर?
0: देखिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट है
1: जी
0: जो हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है
1: जी
0: और पॉलिसी नंबर, वो हमेशा अपने पास रखें।
1: जी
0: और अगर आपके घर में पति, आप उसके अलावा कोई जिम्मेदार बेटा बेटी है,
1: जी
0: तो एक कॉपी उसको भी दें।
1: जी
0: जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि मेडिकल कार्ड की फोटो और पॉलिसी नंबर, और दूसरा मोबाइल पे रखें। कई बार क्या होता है कागज इधर उधर हो जाता है,
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: मोबाइल में एक फोल्डर बना के उसमें सेव कर लें,
1: जी
0: ठीक है। उसके बाद एक अपना नोट रखें जिसमें ये लिखें कि मेरी रूम रेंट की सीमा कितनी है,
1: जी
0: ताकि
1: मतलब
0: जब आप एडमिट हो तो उसी हिसाब से कमरा चुने,
1: जी
0: ताकि बाद में आपको झटका
1: ना
0: नहीं
1: लगे।
0: लगे।
1: जी जी जी जी और
0: ओ हाँ सॉरी,
1: नहीं नहीं नहीं सर प्लीज कंटिन्यू।
0: इलाज का पहला पहली प्राथ इलाज को पहला प्राथमिकता
1: मतलब
0: देनी
1: प्रायोरिटाइज
0: है
1: करें।
0: आपको।
1: जी जी जी जी
0: हाँ, इमरजेंसी के कागजों के चक्कर में ना रोके, कंपनी को 24 घंटे के अंदर खबर दें।
1: जी
0: 24 घंटे आपके पास सफिशियंट होते हैं आपको खबर देने के लिए।
1: जी
0: दूसरी चीज, बीमारी की सच्चाई कई बार लोग छुपाते हैं, ये छुपानी नहीं चाहिए। पुरानी बीमारियां बतानी चाहिए, अगर आपने नहीं बताई है तो क्लेम के वक्त आपका पैसा रिजेक्ट हो सकता है कि
1: जी
0: आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी।
1: तो सर ये पॉलिसी लेते वक्त ही वहां पे अपडेट कर दें, है
0: यस, एक्चुअली
1: ना?
0: लोग करते क्या है, अपनी बीमारी बताते नहीं है कि हमें ये बीमारी है या ये, वो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी जानकारी देंगे तो आपका क्लेम सेटलमेंट होने पे बहुत आसानी होगी,
1: जी
0: और सब पता लग जाता है। मेडिकल जब टेस्ट होते हैं तो पता लग जाता है कि बीमारी कितनी पुरानी है।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ बेशक बेशक
0: देखिए, वित्तीय रूप से जागरूक बने, इंश्योरेंस सिर्फ पुरुषों का काम नहीं है, लेडीज सब लेडीज ही हैं जो एक्चुअल में घर को चलाती हैं,
1: जी
0: और पूरे परिवार की कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आप किसी भी फैमिली में लीजिए, महिलाओं के ही पास होगी, तो
1: जी हाँ
0: महिलाओं को इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। जनरली देखा गया है कि लोग पुरुष
1: जी
0: अपने देते हैं, वो आपको जानकारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि आपके पुरुष लोगों को है, महिलाएं को फुल जानकारी होनी चाहिए।
1: जी तो
0: तो क्या
1: कहीं हाँ
0: जी,
1: बिल्कुल सही बात आपने कही सर कि महिलाओं को भी उतनी ही अपडेटेड अपने को खुद को रखना है जितना कि घर के मेल मेंबर्स रहते हैं।
0: हाँ, एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा कि
1: जी
0: आपके पास एक समराइज्ड हेल्थ हिस्ट्री जरूर होनी चाहिए अपने मेंबर्स की। ताकि उस समय आप कोई चीज भूले नहीं, आपके पास लिखा है कि ये चीज है तो

0: समरी में उसको डॉक्टर को बताएंगे तो आपके इलाज में भी आसानी होगी
1: जी। ओके तो सर, ये जो आपका 33 सालों का अनुभव जो आपने हमारे साथ साझा किया, हालांकि क्रिस्प था लेकिन हमारे लिसनर्स के लिए बहुत काम आया होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद फातिमा जी, सभी परिवार स्वस्थ रहें और वित्तीय रूप से सुरक्षित रहें।
1: ओके सर, ऑलराइट। तो अमित जी से हमने जो टेक अवे लिए, मुझे लगता है कि आज सबके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटा सा ब्रेक का, तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: लखनऊ के बुक लवर्स तैयार हो जाइए, गोमती पुस्तक महोत्सव इज बैक विद 5th edition,
5: जहां होंगे 200 से ज्यादा बुक स्टॉल्स, 22 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की किताबें, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, स्केचिंग, क्विज, थिएटर वर्कशॉप, साथ ही होंगे मशहूर लेखक और रंगमंच पर एक्साइटिंग कल्चरल एंड बैंड परफॉर्मेंसेस।
4: तो आइए 12 से 20 सितंबर सुबह 11 बजे से 8 बजे तक लखनऊ यूनिवर्सिटी में, एंट्री फ्री। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड सेकेंडरी एजुकेशन, उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ यूनिवर्सिटी।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: बेशक जिंदगी बहुत खुशगवार और बहुत हसीन है। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो, तो रहिए कनेक्टेड हमारे साथ। और एक और बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक मैंने क्यों किया हुआ है, सुरों के लखनवी एहसास के साथ, एंजॉय करिए इसे।
1: बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

All right, सुरों का लखनवी एहसास 100.7 FM रेनबो आपने ट्यून इन किया है आज अपनी होस्ट फातिमा के साथ और ऑलमोस्ट टाइम हो गया इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, लेकिन हाँ चलते चलते आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हमने चर्चा की, जिस पर हमने एक्सपर्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन लिए, उससे मुझे लगता है कि हमारी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अब कभी ऐसा हुआ कि उन्हें डॉक्टर के सामने या बिलिंग काउंटर पे हॉस्पिटल के खड़ा होना पड़ा, तो उनसे जो बेसिक सवाल किए जाएंगे ना, वो उनकी जानकारी दे पाएंगी कि भाई कार्ड नंबर क्या है, मेडिक्लेम में क्या क्या चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं जिसके लिए वो आई हैं, मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनके सब के जवाब वो दे पाएंगे। तो फिलहाल हम बस इसी नोट पर वाइंड अप करेंगे इस प्रोग्राम को और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप रहिए कनेक्टेड हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर। फिलहाल एक बेहतरीन सा ट्रैक हम सब के लिए, सो स्टे ट्यून। लेकिन हाँ, उससे पहले ये है

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं और अब समय हो गया है प्रोग्राम अनुरोध गीत का। आइए सुनते हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत।

श्रोताओं, आप सभी का प्रोग्राम अनुरोध गीत में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम अनुरोध गीत कितना खास है हम सभी के लिए, क्योंकि इस अनुरोध गीत कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके वो प्यारे प्यारे पत्र जो आप हमें लिख भेजते हैं इतनी दूर दूर से। और श्रोताओं, ये पत्र सिर्फ आपके नाम और पते का वाहक नहीं है, आपके पसंद के गीतों का ही वाहक नहीं है, बल्कि ये पत्र है वो प्रेम का वाहक, उस प्रेम का वाहक जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और हमारे और आपके बीच ये जो प्रेम है, ये वो प्रेम को कन्वे करता है ये पत्र, वो लेकर हम तक पहुंचाता है ये पत्र। और जितने प्रेम से आप इसे लिखते हैं, जितनी संजीदगी से आप इसे लिखते हैं, जितनी मेहनत से आप इसे लिखते हैं और पोस्ट करते हैं, उतनी ही संजीदगी से, उतनी ही मेहनत से, उतने ही प्रेम से, उतने ही भावपूर्ण तरीके से हम तक ये पहुंचता भी है। और इसीलिए ये कार्यक्रम हमारे दिलों के बेहद करीब है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम का सिलसिला। प्रोग्राम का ये जो पहला पत्र हम पढ़ रहे हैं, इसे लिखा है बरेली जंक्शन से गरीब भाई नासिर सादिक, विक्की भारद्वाज, प्रीरे सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, अयान खान, प्रदीप पाल, नमन और आपके सभी साथी। प्रोग्राम के इसी गीत को सुनना चाहा है कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य। अगला पत्र हम तक जो पहुंचा है, इसे लिखा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर और आपके सभी साथी। ये पत्र हमें लिखते हैं हमारे नियमित श्रोता हैं ककराला बदायूं से मशरूर खान, सरफराज खान, विकास, करमवीर, प्रवीण रावत, अमल, अमन अब्बासी और दीपक। इसी गीत की फरमाइश मिली है हमें होली चौक अशरफ खान छावनी से, और लिखने वाले हैं रामप्रसाद शर्मा, अजय शर्मा, वनोरमा देवी, रीता देवी, विनोद वंश, गणेश कौर, आपके सभी साथी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म ममता का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है रोशन का।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत, और प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें भेजा है कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, फरहान इदरीसी और आपके सभी साथियों ने। इस गीत की फरमाइश की है हमें कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय है, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबियाने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है हमें भवाली नैनीताल से इकराम अली, फैजान एहसान, शहनाज, गुलनाज अप्पी, बॉबी और अजहर, और ये पत्र हमें

ला है वजीरगंज लहरा लाडपुर बदायूं से होशियार मोहम्मद शेर मोहम्मद खोश खुशनुमा भी सुन नूर जहां बेगम संजुरन इज्जत जीशान आसमीन और चांदनी भी ने और इसी गीत को सुनना चाहा है। ग्राम पोस्ट बमरौली तहसील बीसलपुर पीलीभीत से श्री राम शरण दुबे अवधेश दुबे कमलेश सर्वेश सुमन सुजाता काजल अर्चना सुषमा अमित अनिकेत और राधिका दुबे। गजडुंडवारा से आप हैं शमशुल कमर और शाहीन कमर। परी महल कासगंज से आबाद खान गजाला खान का भी पत्र मिला हमें। किला छावनी से इस गीत को सुनने के लिए पत्र लिखते हैं हमें विश्वदत्त भारद्वाज शिवदत्त गंगादत्त गोपाल वर्षा कविता कल्पना ईशु मिश्रा भावना देव की देवी भारद्वाज शिप्रा नीलम और श्री राम राठौर। ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ये पत्र हमें मिला है और लिखने वाले हैं गजडुंडवारा से मुनव्वर लल्ला निस्रीन अरबाज शहबाज पप्पू अफसाना मैजबी।

गज डुडवारा से मुनव्वर लल्ला नसरीन, अरबाज शहबाज, पप्पू अफसाना, मेजबी और आपके सभी साथी। बीसलपुर दुर्गा प्रसाद मोहल्ला से ये पत्र हमें मिला है और लिखने वाले हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और परिवार के सभी सदस्य। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत, मनमीत, मनविंदर, गोलू काकू और जीएस रामगढ़िया का ये पत्र भी मिला हमें। और अहमदपुर गांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, कृष्णा और समर फूलवाली ये पत्र हमें लिखते हैं। प्रोग्राम का अगला गीत ही सुनना चाहा है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा, कासिम और नतीम अली, साथ में है जुनेद अब्बासी। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म काला का ये गीत जिसे गाया है तृप्ति डिमरी ने।

राम साबिर राही मिराज जहां गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर पोस्ट चटिया से आप हैं ओमपाल गंगवार, अनीता और आपके परिवार के सभी सदस्य। पिपरिया नगरिया सोवरनी बरेली से इसी पत्र को लिखा है, इसी गीत को सुनने के लिए पत्र लिखा है अमन गंगवार, आशा संध्या गंगवार और छोटेलाल गंगवार। उसावा शंकरपुर पोस्ट दातागंज बदायूं से आप ने हमें पत्र लिखा और आप हैं सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंगिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरश्री और गुनगुन यादव, और इसी गीत की फरमाइश भेजते हैं हमें बरेली जंक्शन से। पप्पू भाई, जमील, मेराज, मोइन, अफजल, बब्बू, फिरोज, परवेज, बासियत और हसीन भाई, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म रजिया सुल्ताना का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत के बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर ने और संगीत है खयाम का।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत और प्रोग्राम के अगले गीत को सुनने के लिए ये पत्र हमें भेजते हैं नवाबगंज बरेली से नसीम अहमद अंसारी मेराज जहां मुस्कान रेहान अलसिफा और मन्नत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है हमें लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा और दंतरिंगी से भागवत वर्मा। आप हैं आलिम खान, नेहा सालिम, आरिफ आलमशेर, वली अहमद जहूर और मुशीर खान गनगोला दातागंज से और बिलासपुर देवरी खुर्द से। इस गीत को सुनने के लिए ये पत्र लिखते हैं संतोष तलरेजा, आरती अर्चना सोनू, कुंवर सिंह गुड्डू, रामदास, आशा सिंह, उषा सिंह, ज्योति सिंह और आपके सभी साथी। ये पत्र लिखते हैं हमें डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, ईशान, आरिस और मरियम जहां और लक्सर हरिद्वार से आपने हमें ये पत्र लिखा है और आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी।

और श्रोताओं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अनुरोध गीत, ट्यून किया है 100.4 FM। और प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें मिला है श्रीनगर बहेड़ी से। इसे लिखा है लईक अहमद दरीशी, अशरफ, अतीक भी, शिफा भी और यास्मीन ने। और इसी गीत को सुनना चाहा है खान रेडियो क्लब कस्बा जादूपुर पोस्ट बहरापुर अबरेली से अनीस खान, मुनीस, आरिश, मुनाजिर, परवीन, आस्कारा, दरकशा और शाजिया खान। बेरड़ी से आप हैं हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक और तनु करमकर। ये पत्र हमें लिखते हैं वजीरगंज बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाष्णे, सुशीला प्रभात, अमरीश सलोनी, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिका, कार्तिक, वेद, ऋचा और ऐश्वर्य कमल वाष्णे। प्रोग्राम के अगले गीत को ही सुनना के चाहा है खंडवा लोहारी से राम राजेश कुमार, धनजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला, गायत्री, धनजे ने।

खुर्दी रोड मानपुर से ये पत्र लिखते हैं हमें विजय वैद, रानी महिमा वैद और नीतू वैद। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, तुलसी मस्कीन और जगमोहन प्रजापत का भी पत्र हमें मिल चुका है। और ये पत्र हमें लिखते हैं अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन तब मिथिलेश, तारनी सूरज, ज्योति रियांश और गुड़िया ठाकुर। लक्षणपुर से रामजिला रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू का भी पत्र हमें मिला। और इस पत्र को लिखते हैं करगैना उत्तर प्रदेश बरेली वीडियो कॉलोनी से पनीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष, अमर, हितेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ममता, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी, सारांश और आपके सभी साथी। ये जो पत्र हम पढ़ रहे हैं, इस पत्र को लिखा है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा ने खुर्जा उत्तर प्रदेश से। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मासूम का ये गीत अनूप घोषाल की आवाज़ में। इस गीत की बोली हैं गुलजार ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें लिखते हैं गुला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। इस गीत को सुनना चाहा है ग्यासपुर बीसरपुल से आबिद अली तबस्सुम, नेहा नाज और अलीका डबवाली से ये पत्र लिखते हैं बसंत सिंह छन, राजकुमार और सुनीता, साथ में कुलदीप गांधी। करोला मुरादाबाद से ये पत्र हम तक पहुंचा है जिसे लिखा है अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नवेद खान ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश करते हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ से। और मीरगंज से ये पत्र हमें लिखा है कल्लू भाई, नईम फहीम, नसीम, दानिश और आदर्श दिवाकर ने। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल और आपके सभी साथी। गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी आरती और तनिष सेतिया का पत्र भी हम तक पहुंचा है। आप सबने सुनना चाहा है

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत, और श्रोताओं प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें मिला है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। इस गीत को सुनना चाहा है गुंजाला तहसील जिला बीड महाराष्ट्र से नारायण देव धुगे, नानी भाई सुनंदा, महेश निर्मला और भगवान ने, और कृष्णा नगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से ये पत्र लिखते हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई, रीमाताई, सीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे, बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र।

नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का ये पत्र मिला हमें रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और आपके सभी साथी, और यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनने के लिए पत्र लिखते हैं। दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान मालाकार और कुमार सानू, अलका याग्निक की फरमाइश भी आपने भेजी है, लेकिन गीत के बोल और फिल्म का नाम बिल्कुल नहीं लिखा है आपने। तो ये पत्र हमें लिखते हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम और जामठी तहसील वरूड जिला अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं मुकेश कासलेकर दिनकर और विशाखा कासलेकर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म लाल सिंह चटा का ये गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र हमें लिखते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीरा मिका बलविंदर बिरग जयतेग बिरग और मिका बिरग, और इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है हमें कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। ये पत्र हमें लिखा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला नसीम, आयशा हादिया, आसमा सालिया, शोएब मुश्ताबा, राउफ और शाहिद ने। और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर का पत्र भी मिला हमें। ये अगला पत्र जो हम पढ़ रहे हैं इसे लिखते हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ शाहिना और निवान शर्मा। और ये इसी गीत की फरमाइश की है हमें ग्राम राजपुर थाना बहजोई संबल से नवदीप कुमार, रिंकी, आदित्य और आपके सभी साथी। और सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, कुसुम, सुयश, आशीष और राधिका गौड़ का पत्र भी मिल चुका है हमें। अगले गीत की ही को ही सुनना चाहा है खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू, प्रतीक कुमार और मानस साहू। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल कालका से आपने ये पत्र लिखते हैं हमें। आप सुंदर खेड़ महाराज माता नगर बुलडाना महाराष्ट्र से नरेंद्र, नरवने, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार का भी पत्र मिला। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये सॉन्ग।

प्रोग्राम अनुरोध गीत आप पहुंचाए अपने अंतिम पायदान पर, और प्रोग्राम के अंतिम पेशकश के लिए ये पत्र हमें मिला है मलोट नगर पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू जजौरिया का। इसी गीत की फरमाइश करते हैं हमें असालतपुरा मुरादाबाद से फरीद अंसारी, बिलाल और जुबैर अंसारी, और आप हैं हरी सिंह सदर बाजार कैंट बरेली से, और इसी गीत की फरमाइश की है हमें एरोड्रम थाने के पास बंद्रा नगर इंदौर से मध्य प्रदेश से रेखा संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबिता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, और पाकिजा रेडियो श्रोता संघ सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और रमेश गौड़, साथ में है शादाब खत्री, और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म बत्ती गुल और मीटर चालू का ये गीत आतिफ असलम की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत अब यहीं संपन्न होता है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। हमें आपकी

प्रतिक्रियाएं तीन तरीके से मिल सकती हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें लेटर लिख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 9457395859। एक बार फिर से सुन लीजिए 9457395859। आप हमें लेटर लिखना चाहते हैं तो हमारे एड्रेस है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला bareli@gmail.com। तो प्रोग्राम से मुझे यानी ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 2 बज रहे हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम रसरंग। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोकगीत के साथ, जिसे की गाया है दिशा सक्सेना ने।

अभी आपने सुना गीता पंत के आवाज़ में ये लोकगीत। प्रोग्राम में अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग और प्रोग्राम का अगला नगमा हम लेकर आ रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये मधुर गजल।

0: 20 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। ट्यून क्या है 100.4 FM।
0: दस लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रोग्राम के अंत में लेकर आ रहे हैं आपके लिए रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर का गाया ये मधुर नगमा।

रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की गाय इसी नगमे के साथ कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हसरत जयपुरी के। आज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम उनकी कलम से निकले गीतों से सजा है। कार्यक्रम में मुकेश की हसरत

0: बस कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की।

0: भाभी।
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम।
2: शेखर, मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अभिशगन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर उनकी कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: असरा जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हावड़ा ब्रिज फिल्म के स्कीप में ओपी नैयर का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। आइए सुनते हैं असरा जयपुरी की ये रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, जो गया आसमान फिल्म के स्कीप में संगीत शंकर जयकिशन का।
1: कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आज गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी की कलम, शंकर जयकिशन का संगीत।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज पगला कहीं का फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारी सारी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार
2: बिल्कुल,
1: मतलब ये कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं
2: और है, चाहती हैं जी चाहते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले ये जो हमारे सखी सहेली का परिवार है और साथ में विविध भारती का परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छा खूब ध्यान रखे,
1: हेल्दी रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत थोड़े बहुत उपाय भी तो करना चाहिए
2: जी।
1: ये कहा जाता है कि रोग आए उससे पहले आप उसका इंतजाम कर लो ताकि आपको बीमारी ना आए, क्योंकि एक बार बीमारी लग जाती है तो आप ना हक दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, डॉक्टर के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये अपना एहतियात इस तरह से बरते कि आपके ऊपर रोग आक्रमण ही न कर पाए।
2: बिल्कुल, 5 मिनट का है से ही शुरुआत कर सकते हैं हम। ममता जी छोटे में बताते हैं कि 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं आप। सैर कर लीजिए, घर से निकल जाइए बिल्कुल बाहर, और न संभव है तो घर में भी हम कदम ताल के तरफ तौर पर चल सकते हैं, हल्का फुल्का सा प्राणायाम भी कर सकते हैं। और आप देखिएगा ये सच में ऐसा होता है कि 5 मिनट के लिए हम शुरुआत करते हैं और वो कब 15-20 मिनट में तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता।
1: और एक बार आदत पड़ जाती है ना कि एक्सरसाइज करना, अपना ख्याल रखना, तो फिर जब आपका ये सब छूटता है तो आपको लगता है कि हाँ कुछ छूटा हुआ है और आप उसे नियमित दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अगर छूट जाता है कई दिनों तक तो फिर छूटता चला जाता है, तो इसलिए लंबा गैप नहीं देना चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है इसलिए हम आपका खास ख्याल रख रहे हैं और अपनी वो साझा कर सकते हैं।

0: ने लिखा है, सखी सहेली की महफिल सजी ममता जी और दीपा जी के साथ, ज्ञान संवेदना और मुस्कान लेकर बढ़ते जीवन के साथ। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का संदेश हमें समझाता है, हर रोगी की सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले आता है।
1: क्या बात है भाई,
0: पद्मश्री रोशन कुमारी की कथक कला की सुंदर कहानी, नृत्य की हर थिरकन में बसी मेहनत और प्रतिभा पुरानी। सोशल मीडिया भी जीवन का अब अहम हिस्सा बन गया है, सोच समझकर व्यवहार करें, यही संदेश मन में रह गया है। त्योहार की खुशियां में पर्यावरण का भी रखें ध्यान, कम कचरा स्वस्थ वातावरण, यही हो उत्सव की पहचान।
1: क्या बात है भाई, इन्होंने तो
0: आखिरी में दो लाइन और बस कि ममता जी की बातों में अपनापन, दीपा जी की आवाज में मिठास, सखी

0: सहेली यूं ही सजाते रहें हर दिन जीवन में खुशियों की आस।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस
0: जी
1: तुकबंदी के लिए और कविता के रूप में ढालने के लिए हमारे इस बताए गए विषयों को। और सबसे जो अहम मुद्दा है वो है सोशल मीडिया और हमारा व्यवहार कैसा हो। भाई सोशल मीडिया पर हम गाहे बगाहे चर्चा तो करते ही रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: लेकिन फिर भी कम पड़ता है। लगता है कि इसके बारे में और क्या क्या बोल दें कि सोशल मीडिया को एक जरूरी तौर पर उसका उपयोग किया जाए,
0: वो
1: न
0: ऐसा
1: कि
0: होता है ना
1: लत के
0: ममता
1: रूप
0: जी
1: में।
0: कि एक चैप्टर का रिवीजन कर लेना चाहिए, बस उस तरह की कुछ बात हो जाती है कि भाई
1: बिल्कुल।
0: दोबारा याद कर लें तो अच्छा रहता है।
1: तो सोशल मीडिया को का प्रकोप इतना ज्यादा ना हो कि वो कलह का कारण बन जाए घर में।
0: जी

0: देखते हैं हम, उसके बाद जिस तरह से जो दृश्य देखने मिलता है वो हम देख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, हम अपने ही घर में थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो हर जगह समाज और देश का भला हो सकेगा।
1: बिल्कुल। और कहानी पद्मश्री के अंतर्गत रोशन कुमारी जो कथक नृत्यांगना है इनके बारे में हम जानकारी देंगे, और अब सुनेंगे ये गाना श्रोताओं के साथ।

0: जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर प्रसन्नता हमेशा होती है, और जब प्रसन्नता रहती है मैडम तो ममता जी तो मन कहीं कुछ ऐसा थिरकने को लगता है ना, नहीं भी आता हो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को नृत्य करना है, लेकिन पैर की थिरकन एक अपने आप चल जाती
1: है। थिरकने से कहा जाता है कि डांस एक स्ट्रेस बस्टर होता है, आपके बहुत सारे तनाव मन के घुल जाते हैं कहीं, तो अगर आपको नृत्य आता है किसी भी प्रकार का तो आप हमें लगता है कि बहुत खुशहाल प्राणी कहलाएंगे, क्योंकि जरा भी मन उदास होता है दुखी होता है तो आप नृत्य करने लगे देखिए आप सब कुछ भूल जाते हैं,
0: बात बिल्कुल सही
1: या फिर गाना गाने लगे, तो संगीत में ताकत है, लेकिन नृत्य तो ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप सब कुछ भूल सकते हैं।
0: जी, और उसमें जब रियाज, समर्पण और अनुशासन जुड़ जाता है, और कई बरसों की शिक्षा अगर उसमें जुड़ जाती है, तो वो बड़े बड़े पुरस्कारों तक और सम्मानित भी हो जाती है वो व्यक्तित्व। जैसे आज हम जिनकी बात कर रहे हैं रोशन कुमारी जी, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में विशेषकर कथक के इतिहास में सबसे सम्मानित नामों में से एक हैं, और उन्हें जयपुर घराने की अग्रणी नृत्यंगना माना गया है। और रोशन कुमारी का जन्म अम्बाला में हुआ था, उनका परिवार कला से गहराई से जुड़ा था, पिता चौधरी फकीर मोहम्मद और वे थे प्रसिद्ध तबला और पखावज के वादक, और उनकी माता जी थी जोहराबाई अम्बाले वाली। 1940 का जो दशक था उस वक्त ये प्रसिद्ध शास्त्रीय और पार्श्व गायिका रही हैं,
1: और उनकी माँ चाहती थी कि वे एक गायिका बने, लेकिन रोशन का मन नृत्य में लगा रहता था तो वो अपने पिता के बेहद करीब थी। पिता पखावज बजाते और वो घंटों अपने पैरों में घुंघरू बांधकर रियाज करती। उन्होंने 5 बरस की उम्र से ही कथक सीखना शुरू कर दिया था।
0: जी, और जो शुरुआती नृत्य शिक्षा जो उन्होंने ली है वो ली है के एस मोरे जी से। 40-50 के दशक में फिल्मों में डांस डायरेक्टर थे वे, उनके प्रमुख गुरु सुंदर प्रसाद जी लखनऊ घराने के दिग्गज बिंदादीन महाराज के शिष्य थे। बाद में उन्होंने उस्ताद गुलाम हुसैन खान और गुरु हनुमान प्रसाद जी से जयपुर घराने की नृत्य की बारीकियां सीखी। गोविंद राज पिल्लई और महालिंगम पिल्लई से उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा। वो कभी स्कूल नहीं गई, घर पर ही ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई करती थी।
1: और उन्हें हमारे देश के और विदेश के नेताओं के सामने भी नृत्य प्रस्तुति का अवसर मिला। 1971 में उन्होंने मुंबई में नृत्य कला केंद्र की स्थापना की। इस नृत्य संस्था से उन्होंने अपने कई शिष्य तैयार किए। उनकी प्रमुख शिष्याओं में मुक्ता जोशी, अदिति भागवत, नंदिता पुरी, अनुना गुहा, ये बहुत सारे नाम शामिल हैं।
0: जी, और रोशन कुमारी ने फिल्मों में भी कथक को जीवित रखा। एक अभिनेत्री के रूप में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता, फिर सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब, बसंत बहार जो बंगाली फिल्म बनी थी उसमें, और सत्यजीत रे की जलसागर।
1: और उनके उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन और नृत्य कला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित करवाया। 1963 में उन्हें मिला नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में नृत्य विलास सम्मान उन्हें मिला, 1984 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, 2005 में अखिल भारतीय भुवलिका पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।
0: जी, और रोशन कुमारी की नृत्य शैली की यह विशेषता थी कि इसमें जयपुर घराने की तेज लयकारी, चक्कर पखवाज की थाप के साथ भरतनाट्यम जैसे अभिनय की गहराई का संगम, ये दोनों दिखते हैं। उस दौर में उनका कृष्ण लीला पर नृत्य करना लोगों को अटपटा सा लगता था ममता जी, लेकिन उसके बावजूद तब उनके पिता ने हर रूढ़ी को तोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया।
1: और उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि

0: कला में पहचान केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, प्रतिभा को साधना, अनुशासन और समर्पण से निखारना पड़ता है। जब घुंघरुओं की आवाज के साथ ताल मिलती है, जब एक कदम से लय जन्म लेती है और एक भाव पूरी कहानी कह देता है, तब समझ में आता है कि कथक सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धड़कन है। तो ये थी कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में जानकारी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी टिप्पणी में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं जिसमें नृत्य का ही एक स्वरूप देखने को हमें मिलेगा, उसके बाद उनकी टिप्पणियां भी शामिल करते हैं।
1: जी बिल्कुल,

0: दीपा जी, ये लेकिन फिल्म का गाना था आशा भोसले की आवाज में, और बहुत ही खूबसूरती से हेमा मालिनी नृत्य करती नजर आ रही
1: जी
0: है। हम बात कर रहे थे नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में, जानकारी दी थी इस गाने से पहले, और उन्हीं की बातचीत के बाद खास तौर से हमने ये गाना चुना था। और गुलजार साहब के बोल थे, सत्यशील देश पांडे का इसमें संगीत था, और हेमा मालिनी ने ये नृत्य किया। और ये तो सभी को पता ही होगा कि हेमा मालिनी तो नृत्य में कितनी पारंगत हैं
1: जी
0: और कितने तरह के नृत्य उन्हें आते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: और कुशलता से पर्दे पर वो दिखाती हैं, और अलग से वो क्लासेस भी लेती रही हैं।
1: जी
0: और बहुत सारी जानकारियां उनके बारे में हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी तो फिलहाल।
1: अब हम चलेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर, और एक बात और कहना चाहेंगे बस यहाँ पे, कि अगर नृत्य करते रहेंगे तो हमें शायद इस तरह के रोग से मुक्ति बहुत बहुत हमें मिलती रहेगी। फिलहाल ये बात करते
0: क्योंकि
1: हैं कि
0: एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती
1: जी
0: है नृत्य
1: जी
0: से।
1: जी तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे विश्व

0: स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया था। इसका मुख्य सिद्धांत था फर्स्ट डू नो हार्म, यानी चिकित्सा का पहला नियम है कोई नुकसान न पहुंचाना। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में हर 10 में से एक मरीज को स्वास्थ्य सेवा के दौरान किसी न किसी तरीके का जो भी नुकसान होता है उसमें से लगभग 50% नुकसान को रोका जा सकता है। और इस दिन का उद्देश्य है कि रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सरकारों में डॉक्टर, नर्सों और अस्पताल और मरीजों को एक साथ लाना और स्वास्थ्य प्रणाली में गलतियों को कम करना। इस साल यानी 2026 में इस दिन की थीम रखी गई है सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और स्लोगन दिया है सेफ केयर फॉर लाइफ, यानी जीवन भर के लिए सुरक्षित देखभाल। गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज या सांस फूलने वाले कोई पुराने रोग होते हैं, दुनिया में करीब 74% जो मृत्यु है इन्हीं बीमारियों से होती है।
1: WHO ने इस थीम को इसलिए भी चुना है क्योंकि मरीजों को सालों साल लगातार इलाज, दवाइयां और जांच की जरूरत पड़ती है और बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनमें नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे कि कई बार गलत निदान या फिर देर से निदान होना, इलाज करवाना, और दवाइयों में कई बार चूक हो जाती है। अस्पताल में जो संक्रमण की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। कई बीमारियां एक साथ होने से इलाज में दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं।
0: जी,
1: तो इस वर्ष आज के दिन के मुख्य लक्ष्य को रखा गया है कि मरीजों को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि साझेदार बनाना है ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा में हिस्सा ले सकें। और सरकार भी स्वास्थ्य नीतियों में रोगी सुरक्षा के तहत शामिल किया है अपनी नीतियों को और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित निदान और सुरक्षित दवा उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। ये आज इसका उद्देश्य है।
0: जी, और देश में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये भी जरूरी है कि डॉक्टर का पर्चा साफ साफ समझना सीखना चाहिए, दवा का नाम, खुराक, एक्सपायरी ये सब देखना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी बीमारी का पूरा इतिहास डॉक्टर को बताना जरूरी है, तभी सही इलाज संभव है। और इलाज के बाद फॉलोअप को कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ममता जी सिर्फ डॉक्टरों का दिन नहीं है बल्कि ये सब हम सबका दिन है, क्योंकि सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली तभी बनेगी जब मरीज जागरूक होंगे और स्वास्थ्य कर्मी भी समर्थ होंगे।
1: बिल्कुल, यहाँ पर एक बात और जोड़ना है कि फॉलोअप के लिए तो सजगता जरूरी है ही, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो पुराने प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, कई बार एक बार आपकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख दी और उसको आपने रख लिया, प्रिजर्व कर लिया अपने पास, और जब वापस मान लीजिए खांसी, बुखार और ये सब सिम्टम हो रहा है, वही दवा आप रिपीट कर लेते हैं। जरा सोचिए कि साल भर पहले जो बीमारी जिस वजह से आपको फीवर बुखार आया था, जरूरी नहीं है कि इस बार भी वही कारण हो, कुछ और कारण हो सकता है। उसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और दुनिया भर की जो बीमारियां फैली हुई हैं वो डेंगू जैसी बीमारी, तो पता चला वही दवा आप रिपीट कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुखार की दवा खाए जा रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, डॉक्टर से संपर्क कर लें पहले। और फिलहाल हम ये गाना सुनवा दें।
0: चलिए सुनते हैं।

0: तो देखिए, स्वास्थ्य का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे रामा रामा हम ये गीत के तौर पे गाएं तो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तबीयत के कारण या किसी और वजह से हम इस तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें।
1: और
0: और
1: हमारे बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ये हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। दरअसल अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस इतना ही है कि हम तो यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से टहलना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए,
0: जी
1: नियमित रूप से कसरत को शामिल कर लीजिए, और राजनृत्य की बातें की थोड़ा बहुत मूवमेंट, कुछ आजकल तो इस तरह की एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिसमें नृत्य की भावभंगिमाएं शामिल
0: जी
1: हैं, जिसमें
0: जी
1: पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ
0: जी
1: की, पैर की, आंखों की और चेहरे की, बाकायदा ट्रेनर आपको सिखा
0: जी
1: देते हैं।
0: बिल्कुल
1: और एक नया चलन ये भी चला है, हालांकि ये पुराना है लेकिन आजकल ज्यादा चलन में है, वो
0: आजकल
1: है
0: ज्यादा हो गया।
1: कि जिम जाना नियमित रूप से।
0: जी जी
1: तो आप जिम जाके भी अपने को फिट फाट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल हम एक संदेश सुनवा रहे हैं।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गड्डी ले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी पूजा और पायल जी का, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश। लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है। क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव किंदासर तहसील खोलायत जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं। लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गांवों में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के

कार बताते हैं। लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियाँ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ। जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्र नाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है।

गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठीमाला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता

0: कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों के

0: सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। आखी मन में चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आपने सुना। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और हमारा आज का विषय है आपकी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ के आज के ज्ञानवर्धक सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। आप सभी श्रोताओं को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं सना खान बात कर रही हूँ बरेली से।
0: सना खान जी बरेली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सना जी, क्या करती हैं आप?
1: जी, मैं पढ़ाई करती हूँ।
0: अच्छी बात है, आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और हम अपेक्षा करेंगे कि आप अपने जीवन में तरक्की करें और शिक्षित हों, है ना? तो आज जो हमारा विषय है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, वो ये है कि आपकी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है, तो क्या कहेंगे आप?
1: जी, मेरी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर खुदा है, क्योंकि उसी ने पूरी दुनिया बनाई है और हम लोगों को बनाया है, हम लोगों के अंदर दिमाग डाला है ताकि हम कुछ कर सके, इसीलिए मैं तो खुदाई को मानती हूँ।
0: बहुत अच्छे विचार आपके हैं। और सना जी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी, मैं आगाज मूवी का सुनना चाहूँ।
0: तो सुनते हैं बेहतरीन सा सॉन्ग, आप और हम सारे श्रोता।

0: तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: सर मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ। जी
0: वकार भाई, कैसे हैं आप?
1: सर मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं सर?
0: बस सब दुआएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। और वकार भाई, आपकी जुबां भी आपके धंधे जैसा, जैसा आपका काम है हलवाई का, तो वैसी चाशनी वाली आपकी जुबां है।
1: जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आज इस प्रोग्राम में आपकी बात आकाशवाणी के साथ में काफी समय के बाद शामिल हो रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आज का विषय आपको मालूम है,
1: जी सर बिल्कुल।
0: तो क्या विचार हैं आपके?
1: सर मेरे विचार ये है कि सबसे पहले तो जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं,
0: जी
1: है ना, वही सर अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं,
0: जी
1: और उनकी शिक्षा से ही जो बच्चे का भविष्य है वो बनता है।
0: जी
1: तो प्रथम गुरु कह सकते हैं कि जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं।
0: जी जी जी
1: जी यही मेरा विचार है।
0: तो मतलब आपकी निगाह में जो हमारे माताजी पिताजी लोग होते हैं, तो वो सबसे बड़े इंजीनियर हैं।
1: हाँ सबसे बड़े इंजीनियर वही होते हैं सर, और वही हमें संवारते हैं, है ना,
0: जी
1: और हमारा भविष्य बनाते हैं, तभी हम भी आगे चल करके एक सबसे बड़े इंजीनियर बनते हैं। और दूसरा सर कहना चाहूंगा कि प्रथम गुरु तो वही है, लेकिन दूसरे नंबर पे जब हम स्कूल जाते हैं और वहाँ जो हमारे गुरु होते हैं, गुरुजन होते हैं,
0: जी
1: वो भी उनका भी काम कम नहीं होता, वो भी बच्चों का भविष्य बनाते हैं।
0: तो बहुत ही नेक और अच्छे विचार हैं वकार भाई आपके। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर आज ये सुनूंगा मैं, फिल्म का नाम है किस्मत,
0: गाने के
1: और इसमें
0: बोल।
1: उदित नारायण की आवाज है सर, और ये गाना मैं बता रहा हूँ आपको, साथ साथ में थोड़ा सा दो लाइनें गुनगुनाना भी चाहता हूँ।
0: चलिए चलिए।
1: महबूब सनम तुझे मेरी कसम, ना देख मुझे ऐसी नजरों से, कुछ कुछ होता है।
0: तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आपकी पसंद का, हम सब लोग।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर। मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम शिवनगर चंपतपुर तहसील औंला जिला बरेली से।
0: हमारे साथ जुड़ चुके हैं आंवला से सद्दाम अली। और क्या करते हैं सद्दाम भाई आप?
1: सर मैं पढ़ाई करता हूँ और अपने घर पे खेती बाड़ी है वो करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया बात है, आप अपने शिक्षा के साथ साथ अपने घर वालों को हाथ बटाने के लिए खेतीबाड़ी भी करते हैं। तो सद्दाम जी, आज जो हमारा विषय है वो आपको पता है, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय पे? हाँ
1: कहना चाहूंगा, वैसे तो सभी इंजीनियर जो है शिक्षा ग्रहण करके और प्रैक्टिकल करके आते हैं, लेकिन असली इंजीनियर वही है जिसे अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाए, उसे हम अच्छा इंजीनियर मानते हैं।
0: अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी इंजीनियर भाई हैं वो भी सफलता पूर्वक कार्य करें और नई खोज की दिशा में बढ़े और देश को आगे ले जाने का कार्य करें।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सद्दाम भाई, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर आज सुनवा दीजिए, फिल्म लावारिस का गीत है, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले।
0: तो सुनते हैं ये गीत, हम और आप और सारे श्रोता।

0: भाई, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आपकी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है, तो इस विषय पे आपके क्या विचार हैं?
1: जी सर, इसने ये दुनिया बनाई है, वही सबसे बड़ा वो है। जी
0: तो यानी कि आपकी निगाह में सबसे बड़ा इंजीनियर ईश्वर है।
1: हाँ
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो मनोज जी, आज आपकी कॉल लगी है, कैसा लग रहा है?
1: जी, ठीक लग रहा है सर। मैं तो बहुत समय बाद इस बात का इंतजार कर रहा था। ऐसे मैं तो 1999 से रेडियो सुनता, मेरे बड़े भाई रेडियो सुनते थे, तो उन्हीं के द्वारा मैं भी सुनता हूँ रेडियो।
0: बहुत अच्छा करते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार हमारे केंद्र से जुड़े रहें। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: जी, प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना सुनना, शीशे की उम्र, प्यार की आखिर भी साक्षी हो, ये वाला गाना सुनना है सर।
0: तो सुनते हैं ये गीत, हम और आप और सारे श्रोता।

0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: को बस सभी सुनने वालों को विश्वकर्मा जयंती महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आपको भी और सारे श्रोता गणों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कौन बोल रहे हैं
0: जी? जहाँ तक मैं पहचान रहा हूँ, रावत भैया बोल रहे हैं और हम गंगवार बैगलान अलकनाथ के सामने से बेचे लाल गंगवार बोल रहे हैं।
1: तो बेचे लाल जी अलकनाथ मंदिर बरेली से बोल रहे हैं, तो मैं रावत ही बोल रहा हूँ। और बेचे लाल जी, कैसे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
0: अरे साहब, कार्यक्रम तो आपके ज्ञान वर्धक और मनोरंजन, मतलब तुलना का तो कोई सवाल ही नहीं है। और बहुत मनोरंजक भी होता है, ज्ञान वर्धक भी होते हैं और रेडियो चलता ही रहता है, काम करते रहते हैं।
1: तो बेचे लाल जी, हम चाहेंगे कि हमारे कार्यक्रम आता है आपका पत्र मिला
0: जी।
1: प्रत्येक रविवार को आता है, तो उसमें आप अपने सुझाव भेज सकते हैं कि फलाक प्रोग्राम हमें अच्छा लगा और उसमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, ये अपने सुझाव विचार भेज सकते हैं ना?
0: जी जी कमेंट करता हूँ मैं कभी कभी दादा, वैसे
1: अच्छा अच्छी
0: आपका पत्र मिला मैं और शामिल भी हुआ है मेरा एक दो बार।
1: जी जी तो आज जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय है वो ये है कि आपकी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है?
0: मेरी नजर में तो यही है कि जितना बढ़िया हो सके हर काम को, बढ़िया से बढ़िया करें तो आदमी हर काम का अपने काम का इंजीनियर ही होता है।
1: हाँ, बड़ा मन से लगाव से वो कार्य करना चाहिए जो भी करना चाहिए, है ना
0: जी। एक काम मैं ऐसा करता हूँ कि आप भी कह सकते हैं हाँ कुछ काम का इंजीनियर हो गया, जैसे किसी भी चीज पैंट की मैं 1 से 3 इंच तक कमर बढ़ा देता हूँ,
1: अच्छा अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: कि और जगह संभव नहीं है।
1: जी जी जी बहुत अच्छी बात है आपकी। और बेचेलाल जी, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
0: जी गीत आप अपनी समझ से बढ़िया कोई धार्मिक प्रवृत्ति का सुनवा दें जो सभी सुनने वालों को अच्छा लगे।
1: तो सुनते हैं ये गीत आप और हम और सारे श्रोता
0: जी। आकाशवाणी परिवार को सादर प्रणाम।
1: आपको भी प्रणाम।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं हरियाणा में जिला करनाल है और पास है गांव रावर। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा बात कर रहा हूँ सर।
0: ज्ञान भूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल हरियाणा से।
1: हाँ जी
0: तो ज्ञान जी, क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं एक प्राइवेट कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में HOD हूँ सर।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं अपने फैक्ट्री में।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो ज्ञान जी, आज जो हमारा विषय है कि आपकी निगाह में, आपकी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है?
1: मेरी निगाह में सर सबसे बड़ा इंजीनियर, वैसे तो देखो टेक्निक तो चलती रहती है,
0: जी
1: पिछले काफी सदियों से चली, सुई से हवाई जहाज तक बने,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा इंजीनियर है जिसका कोई भी सानी नहीं है सर, और
0: जी
1: वो इंजीनियर है ऊपर बैठा परमात्मा भगवान।
0: बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। और उससे बड़ा इंजीनियर कौन होगा जिसने पूरे संसार को रचा है ना?
1: और देखिए सर, सबसे बड़ा एक इंसान को बनाने वाला परमात्मा है। जब
0: जी
1: मां के गर्भ में पलता है तो नाक कहाँ लगानी है, आंख कहाँ लगानी है, पेट, लीवर, किडनी, नाखून, बाल, इससे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं हो सकता। दिमाग को भी इतना स्पेशलिस्ट बनाया है कि अगर हमारी दिमाग की छोटी सी नस, थोड़ी सी नस भी ब्लॉक हो जाए तो आदमी की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरी नजर में इससे बड़ा इंजीनियर दुनिया में ना कोई हुआ है और ना ही हो सकता है सर।
0: बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के। तो ज्ञान जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: लेकिन एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा
0: जी जी
1: सर
0: जी
1: कि एक इंजीनियर वो है जिन्होंने भाई हमें ऑनलाइन भाई ऐसा सिस्टम बनाया कि आकाशवाणी को हम पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी बैठे सुन सकते हैं। उन सभी इंजीनियरों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से उन्हें प्रणाम सर।
0: बहुत दूर तक आपने सोचा, और हमारे इंजीनियर ही हैं जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर तैयार करा कि बिना रेडियो के भी आप मोबाइल के माध्यम से, चाहे देश हो विदेश हो, कहीं पे भी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुन सकते हैं।
1: अब जैसे आकाशवाणी बरेली है, वहां पर भी जरूर इंजीनियर की एक टीम होती है, तो मेरा उनको भी सलाम है। उन्हीं के ही कारण हम इतनी दूर बैठे, इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे, हम बिल्कुल आकाशवाणी बरेली को साफ सुनते हैं।
0: तो वो हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब सुन रहे होंगे आपकी बात को, तो उनको अच्छा लगा होगा कि आपने उनकी मेहनत को सलाम भेजा है।
1: हाँ जी सर।
0: तो ज्ञान जी, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर एक खून भरी मांग है,
0: जी
1: रेखा जी और राकेश रोशन जी पर ये गीत फिल्माया है और हमारे जीवन में भी इसी गीत को ही मिलना चाहिए कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
0: बहुत ही बेहतरीन गीत आपने चुना है, तो सुनते हैं ये गीत, आप, हम और सारे श्रोता।

श्रोताओं, अब आपके कमेंट्स की बारी है। तो ये कमेंट्स हमें भेजा है रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल से गंगा सिंह रावत ने। आप कहते हैं, आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी नजर में सबसे बड़ी इंजीनियर मेरी माँ थी। जन्म से लेकर उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारी हर एक जरूरतों का ख्याल रखा, उन्हें पूरा किया, हमें अच्छे संस्कार दिए, तहजीब सिखाई। आज माँ को हमसे बिछड़े हुए 2.5 बरस हो गए हैं। उनकी कमी हमेशा महसूस होती है, मगर अपने आसपास उनकी मौजूदगी का एहसास भी अक्सर होता है। शार्दुल शहर से रामकुमार रेवाड़ लिखते हैं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ पेश करने वालों को प्रणाम। आपको भी प्रणाम। भगवान विश्वकर्मा दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, बधाई। मेरी नजर में संसार का सबसे बड़ा शिल्पकार, इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा जी हैं।

कार्यक्रम का अगला कमेंट है इंदिरा टॉक कॉटेज तल्लीताल नैनीताल से मोहन सिंह रावत का। आप कहते हैं, मनुष्य ने अपनी इस विकास यात्रा में ना जाने कितनी ऊंचाइयों को छुआ है। पहिए के आविष्कार से शुरू हुआ सफर हवाई जहाज और पृथ्वी के सौर मंडल से भी परे अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। पेड़ पर रहने से प्रारंभ हुई यात्रा अब गगनचुंबी अट्टालिकाओं तक पहुंच चुकी है। बिजली की खोज के बाद तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने हमारे रहन सहन को पूरी तरह बदल दिया है। आज सड़क, जल और हवाई मार्ग से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। मौजूदा दौर में कंप्यूटर और मोबाइल क्रांति ने तो जैसे हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया है। आने वाले कुछ समय में हमारी पूरी दुनिया रोबोटिक्स और एआई की गिरफ्त में होगी, जहां मनुष्य सिर्फ निर्देश देगा और मशीनें उसके निर्देशों का पालन करेंगी। सृजन अर्थात निर्माण की इस विकास यात्रा को विध्वंस अर्थात विनाशकारी शक्तियों ने समय समय पे नुकसान भी पहुंचाया है। आज देवताओं के शिल्पी, वास्तुकार और सृष्टि के पहले इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। संपूर्ण ब्रह्मांड, यंत्र, भवन, अस्त्र शस्त्र इन्हीं की रचना मानी जाती है। परम सत्य और सृष्टि की रचना करने वाले को विश्वकर्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विश्व का निर्माण किया। आज के ही दिन इंजीनियर, कारीगर, मिस्त्री, मजदूर अपने पुराने औजारों की पूजा करते हैं। मान्यता है कि औजारों की पूजा करने से काम में कुशलता और तरक्की आती है। इन्हें श्रम का देवता भी कहा जाता है। इनकी पूजा का संदेश है कर्म ही

पूजा है। आज के इस विशेष दिन क्यों ना हम सभी पृथ्वी से विध्वंसक शक्तियों के अंत का संकल्प लें। हम में जो भी बुराइयां हैं, यदि हम उसका संहार कर दें तो निश्चित इस धरा से विध्वंस का भी अंत हो जाए, और राज हो तो सिर्फ सृजन और निर्माण का, जो आनंद कुछ बनाने में है वो मिटाने में नहीं। जब हाथ से हाथ मिलते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ नया ही बनता है। आइए हम सब भी इस सृजन यात्रा के सहभागी बने, कुछ ऐसा निर्माण करें जो हमारा और भावी पीढ़ी का मार्ग सुगम कर सके। सच में नव निर्माण करने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर है। ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी कहते हैं, मेरी नजर में दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर मेरे माँ बाप हैं। इंजीनियर इमारतों का नक्शा बनाते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी पूरी जिंदगी का नक्शा तैयार किया। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखकर मेरी जरूरतों को अहमियत दी, मेरी छोटी सी खुशी के लिए अपनी बड़ी बड़ी खुशियां कुर्बान कर दी। जब मैं गिरा तो उन्होंने उठना सिखाया, जब मैं परेशान हुआ तो उन्होंने हौसला दिया, और जब रास्ते मुश्किल हुए तो सही राह दिखाई। माँ बाप की तरबियत इंसान की जिंदगी की वो बुनियाद है जिस पर उसके किरदार की पूरी इमारत खड़ी होती है। उनकी डांट में भी हमारी भलाई छिपी होती है, और उनकी खामोशी में भी बेपनाह मोहब्बत होती है। आज जिंदगी में जो कुछ भी सीख पाया हूं उसमें मेरी मेहनत से कहीं ज्यादा मेरे माँ बाप की दुआओं, कुर्बानियों और तरबियत का हिस्सा है। इसलिए मेरी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर वही है जो बिना किसी औजार के एक इंसान की जिंदगी संवार दे, और वो हैं हमारे माँ बाप। अल्लाह हर माँ बाप को सलामत रखे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें सब्र और उनके लिए दुआ करने की तौफीक अदा फरमाए।

कार्यक्रम में अगला कमेंट है करेली से लाल मोहम्मद अंसारी का। आप कहते हैं, आज का विषय है आपकी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है। तो हम आपको बता दें, वैसे तो हर व्यक्ति ही अपने आप में इंजीनियर है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है। हर व्यक्ति कुछ ना

कुछ करता जरूर है। वैसे तो मेरी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर वो है जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने पूरी धरती बिछाई, जिसने नीले आकाश को बनाया, जिसने एक खाकी पुतले में जान बख्शी, उसे खूबसूरत इंसान बनाया, इसने काली रात को सितारों से सजाया, वही असली इंजीनियर है जिसको हम अलग अलग नामों से याद करते हैं। वही ईश्वर है जो सारे निजाम को बिना स्वार्थ के चला रहा है। ये कमेंट था ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और लाडलू मिस्त्री अंसारी का। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विश्व मिस्किन ऋतिका आरव वाणी मिस्किन परिवार कहता है, मेरी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर वो इंसान है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और बिखरी हुई जिंदगी को संभालना जानता है। एक इंसान ने अपने अनुभव से कहा है, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े इंजीनियर देखे जो पुल बनाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं और मुश्किल मशीनों को आसान बना देते हैं, लेकिन समय के साथ समझ आया कि सबसे बड़ा इंजीनियर वो है जो बिना किसी नक्शे के इंसान के दिल को समझ ले, वो रिश्तों में आई दरार को प्यार से भरता है, दुख में हिम्मत देता है और असफलता के बाद फिर से खड़े होने का रास्ता दिखाता है। क्योंकि इमारत बनाना आसान हो सकता है, लेकिन एक टूटे हुए इंसान को फिर से उम्मीद देना, यही जिंदगी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है।

जबलपुर मध्य प्रदेश से इंजीनियर माधव नामदेव कहते हैं, सभी करता हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग भी अपने अनुभव से मकान बना सकते हैं। मकान बनाना सिर्फ इंजीनियर का काम नहीं, शहर के विकास में पर्यावरण और अपनी सृजनात्मक सोच से कुछ कर दिखाने और अपनी कला से प्रभावित करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा इंजीनियर है। नगर पंचायत आलागंज जनपद शाहजहांपुर से डॉक्टर अरविंद सिंह कहते हैं, हमारे जीवन के सबसे बड़े इंजीनियर हमारे माता पिता हैं। दूसरा नंबर आता है गुरुजी का, वो भी

किसी इंजीनियर से कम नहीं है। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू कहते हैं, हमारी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर तो परमात्मा है। जो इतने सारे लोग हैं फिर भी हम सब की चेहरा और बनावट रंग रूप सब भिन्न भिन्न है। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ कहते हैं, सबसे बड़ा इंजीनियर मेरे ख्याल से कोई एक नहीं है। वो तमाम व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी न किसी मशीन का निर्माण किया। सभी अपने आप में बड़े हैं। उनके द्वारा की गई खोज वो संसाधन मानव के उपयोगी हो रहे हैं। अशोक बब्बर कहते हैं कि सबसे बड़ा इंजीनियर वो परमपिता परमात्मा है जिसकी देखरेख में सब चीजों का निर्माण हुआ है। यहां तक कि हर इंसान, प्रकृति, धरती, आकाश सब उसके हाथ में है और उसी ने बनाए हैं। प्रवीण चौहान कहते हैं, भगवान विश्वकर्मा दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर भारत रत्न से सम्मानित एम विश्वरैया, जिनके जन्मदिवस पर हम इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर बाकी हमारे वे सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर्स जो इसरो में हैं। गांव अरायन जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से बनवारी लाल जैब पाल कहते हैं कि आज कलयुग में भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर है। सब प्रकार की चाबी अपने हाथ में रखता है। ग्राम व पोस्ट गोठा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, सत्यम मिश्रा, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी मिश्रा और शिवम मिश्रा कहते हैं, आज तक हमने चाहे रामायण हो या अन्य कोई भी धार्मिक ग्रंथ, उसमें विश्वकर्मा जी के अलावा किसी का नाम नहीं सुना है। रामायण में नारद मोह के समय श्री विश्वकर्मा जी ने माया नगरी बसाई थी और ये भी बताते हैं कि महान योद्धा दशानन रावण पर भी जो पुष्प विमान था वो भी प्रभु विश्वकर्मा से ही छीना गया था। लंका नगरी की रचना भी भगवान शिव के आदेश पर प्रभु विश्वकर्मा ने की थी। आज के शुभ अवसर पर हमारी तरफ से आपको और समस्त परिवार को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। केपी गुप्ता कहते हैं, सबसे बड़ा इंजीनियर दुनिया बनाने वाले विश्वकर्मा बाबा।

अभी आपने सुना आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय था आपकी नजर में सबसे बड़ा इंजीनियर कौन है। आकाशवाणी का यह बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारी आज की सभा की शेष और कल की सभा में प्रसारित।

और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में। रात्रि 8 बजे आप सुनेगा विशेष कार्यक्रम एशियन गेम्स पे चीयर्स फॉर भारत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से शाम 7:18 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेगा विभिन्न कार्यक्रमों को रात 8:30 पे और 10 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से रात 9 बजे। अब से थोड़ी देर में शाम 5:05 पे आप सुनेंगे भजन संध्या में कुछ भजन। नारी संसार सुनेगा बहन नूर फातिमा के साथ 5:30 पे प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम आप सुनेंगे युवाणी नेहा सिंह के साथ शाम 6 बजे। इसमें कुछ खास है आज में वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे पे जानकारी सुनेंगे। साथ ही होगा ओए लकी प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे पूनम बहन और भैया सुरेंद्र पाल के साथ। इसमें आज की बात का विषय रहेगा औषधीय फसलों की खेती। कृषक गोष्ठी में विषय रहेगा समय के साथ बदलता खेती का स्वरूप। प्रतिभागी रहेंगे राम भरोसे लाल झांझनलाल और संजीव मौर्य। साथ ही होंगे लोकगीत बाजार भाव मौसम कृषि समाचार और नसीहत। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की और समय रहेगा 6:30। ग्राम जगत सुनेंगे संध्या 7 बजे। इसमें साफ सफाई का रखे ध्यान विषय पर चर्चा सुनेंगे। साथ में होंगे लोकगीत और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। रेडियो हेल्पलाइन में विषय रहेगा माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या और उनका आधुनिक इलाज शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर विकास गुप्ता। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:50 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम सुनेंगे 5:50 पे। अपराह्न 11:30 पे। रात्रि 8:30 पे और 10 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 2:30 पे और रात 9 बजे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे सुनेगा समाचार प्रभात और रात 8 बजे कर्टेन रिजर्व एशियन गेम्स। प्रादेशिक समाचार सुनेंगे 7:18 पे लखनऊ केंद्र से। गजेंद्र सिंह के साथ आप सुनेंगे फिल्मी फ्राइडे सुबह 8:15 पे। लोकगीत 8:45 पे। आपकी पसंद 10 बजे। सब रंग 11 बजे। अनुरोध गीत 1 बजे और रसरंग दोपहर 2 बजे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के समय रहेगा 3:30। शीशपाल के साथ आप सुनेंगे आपकी बात आकाशवाणी के साथ शाम 4 बजे। भजन संध्या 5:05 पे। लकी थ्री का समय रहेगा 5:30। शाम 5:45 पे सुनेगा सामाजिक वार्ता। विषय रहेगा बच्चों के लिए हिंदी का ज्ञान। वार्ता कर रहेंगे अजय कुमार त्रिपाठी। युवाणी सुनेंगे प्रज्ञा पाठक के साथ शाम 6 बजे। प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना की। ग्राम जगत सुनेंगे भैया राकेश कुमार शर्मा के साथ 6:30 पे। प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव की। कृषि पाठशाला में विषय रहेगा कृषि उपज की बेहतर मार्केटिंग के लिए सुरक्षित भंडारण। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर बीबी चतुर्वेदी। समय रहेगा शाम 7 बजे। रेडियो हेल्पलाइन सुनिएगा 7:31 पर। विषय रहेगा गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर नीरज कुमार। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं भजन संध्या में कुछ भजन। कार्यक्रम का पहला भजन है हरिओम शरण के स्वर में।

भजन संध्या में अभी आपने सुने कुछ भजन। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। आइए सुनते हैं नारी संसार बहन नूर फातिमा के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

नारी संसार सुनने वाली तमाम प्यारी प्यारी सखियों का स्वागत है आपके अपने संसार यानी नारी संसार में। सभी सखियों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सखियों, आज का दिन है मेहनत को सलाम करने का, जो अपनी मेहनत और हुनर से हमारी दुनिया को बेहतर और खूबसूरत बनाते हैं उन्हें सलाम करने का। एक ऐसा दिन जब हम मशीनों, औजारों और उन तमाम साधनों का सम्मान करते हैं जिनसे इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देते हैं। सखियों, आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी ना, तो रास्ते में मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी जो आँखों पर काला चश्मा लगाए हुए और वेल्डिंग का काम करने में तल्लीन थी। उन्हें देखकर बस यही ख्याल आया

आज महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारियां ही नहीं संभाल रही हैं, बल्कि हर फील्ड में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे वो वेल्डिंग का काम हो, कंस्ट्रक्शन का मैदान हो, मशीनों और टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई प्रोफेशन हो या इंजीनियरिंग का कोई चैलेंजिंग क्षेत्र। आज महिलाएं हर जगह अपने हुनर, मेहनत और हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं। वेल्डिंग मशीन हो, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले टूल्स हो, या किसी कारीगर के हाथ में उसका छोटा सा औजार, इन सब के पीछे किसी न किसी की मेहनत, स्किल और डेडिकेशन छिपी होती है। सखियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि निर्माण करने वाले हर हाथ, हर हुनर और हर मेहनत का सम्मान करना चाहिए। तो आइए इस विश्वकर्मा पूजा पर हम उन सभी हाथों को सलाम करें, सम्मान दें जो कुछ बनाते हैं, उन सभी हुनर को सम्मान दें जो किसी सपने को आकार देते हैं, और अपनी उन सखियों को भी दिल से नमन करें जो ये साबित कर रही हैं कि महिलाओं के हुनर, हौसले और काबिलियत की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ सखियों, इसीलिए आज का जो हमारा सवाल है वो भी एक ग्रैंड महिला जो है, उन्होंने ग्रैंड पद हासिल किया है, उनसे संबंधित है। सखियो, आज का हमारा सवाल जुड़ा है राष्ट्रपति भवन और भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका से। तो हमारा आज का सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नई रक्षा अधिकारी कौन बनी है? आपको जवाब देना है। मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ और आपको सही जवाब देना है। क्या वो मेजर नविया शेखावत हैं, या मेजर भावना सिंह, या फिर मेजर प्रिया चौहान? आपके जवाब का इंतजार है हमें। और हाँ, आपको इंतजार होगा आपके अपने पसंद के गीत का। तो सखियों, हम बता दें कि जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं उसकी फरमाइश हमारे पास आई है महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति बाबू और रियांश की तरफ से। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम व पोस्ट गोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्रा, कृष्ण देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा सलोनी और शिवम मिश्रा की तरफ से। इसी गीत को सुनना चाहा है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से मंजू वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा ने। तो हमें इंतजार है आपके जवाब का, और आप तब तक सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, हम अपने घर की बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, कभी राशन का हिसाब, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी घर की जरूरतें। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक सवाल कई बार पीछे छूट जाता है, हम अपने आने वाले कल के लिए कितना सोच रहे हैं? क्योंकि जिंदगी सिर्फ आज का नाम नहीं है, आज की हमारी छोटी छोटी समझदारी ही तो कल की बड़ी राहत बनती है। और बचत सिर्फ पैसे को अलग रख देने का नाम नहीं होता है, यह अपने ख्वाबों को थोड़ा वक्त देने का नाम है, अपने परिवार को एक मजबूत सहारा देने का नाम है, और सबसे बढ़कर अपने भविष्य के लिए आज ही एक छोटा सा फैसला लेने का नाम है। कभी एक छोटी सी रकम बच्चों की पढ़ाई के काम आती है, कभी किसी जरूरत के वक्त घर का सहारा बनती है, और कभी यही छोटी छोटी बचत किसी बड़े ख्वाब की पहली सीढ़ी बन जाती है। इसीलिए सखियो, आज हम पहुंच गए अपनी सखियों के बीच, इनसे मिलिए सेगमेंट में अपनी एक सखी खलीका खानम जी के पास। खलीका जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: खलीका जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो बचत है, तो बचत हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बचत को हम अपने जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? आखिर जो आज की छोटी सी बचत है, वो हमारे आने वाले कल को किस तरह बेहतर बना सकती है?
1: बचत हमारे भविष्य की तैयारी है। जिंदगी में हमें नहीं पता होता कब हमारे सामने कौन सी जरूरत आ जाए। हम नहीं जानते कि अगर हमारी अपनी आमदनी में से हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं, मुश्किल समय में काम आता है। किसी के सामने हाथ हिलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। वो थोड़ी थोड़ी बचत जो होती है, धीरे धीरे हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। इसलिए जिंदगी में बचत करना बहुत जरूरी है, जो हमारे आगे जाके काम में आती है।
0: महिलाएं कहती हैं कि घर के खर्च पूरे करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता, तो ऐसे में आप सखियों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि बचत जो है हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होती है। अगर हम अपनी आमदनी में से थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कर दें, तो ये जरूरी है कि हम एक नियमित समय में कुछ ना कुछ अलग रखें, और एक समय में वो बचत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, वो आगे चलकर हमारे काम आती है।
0: घर की जिम्मेदारियां निभाने की बात आती है, तो सबसे पहले महिलाओं का नाम आता है। घर की जिम्मेदारियों

0: में महिलाएं बहुत बड़ा अपना किरदार निभाती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए आर्थिक समझ और बचत की आदत और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है ना?
1: बिल्कुल, महिलाओं को जो है घर की जरूरतों और खर्चों की बहुत ज्यादा करीब से समझती। अगर उनसे आर्थिक मामलों में जानकारी ली जाए तो उनसे बेहतर इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि औरतों को ही घर की बचत करने की आदत होती है। वो अपने परिवार, अपने बच्चों, सभी के भविष्य की बेहतर योजना बनाती हैं। यही महिलाएं आत्मविश्वास से भरी होती हैं जो बचत करती हैं और अपने बच्चों को उनका बचत किया हुआ इनकम जो होती है उनके बच्चों के आगे जाके काम में।
0: कोई हमारी सखी आज से बचत करना शुरू करना चाहती है, तो उसे सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्चों का वो एक हिसाब रखना शुरू कर दे, फिर ये तय करे कि उसको हर महीने अपने आमदनी में से कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। कोशिश करे कि अपने कुछ खर्चों को रोक कर धीरे धीरे हर महीने कुछ अमाउंट इकट्ठा करे, तो रकम आराम से बचाई जा सकती है। उस रकम को खर्च होने से पहले ही अलग कर दो, जिससे वो आप आने वाले वक्त में काम ले।
0: हमारी जिंदगी में अचानक कई सारी जरूरतें भी आ जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता है। तो अचानक आने वाली जरूरतों के लिए बचत कितनी मददगार होती है?
1: बहुत ज्यादा मददगार होती है। जो पैसा हमारे पास बचत के रूप में रखा होता है वो हम जैसे बच्चों की बीमारी है या पढ़ाई में या किसी फंक्शन में कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हम अपनी बचत से काम कर सकते हैं। तो वो बची हुई रकम जो होती है हमारे लिए उस वक्त एक बड़ा सहारा बनकर आती है। इसलिए बचत का एक हिस्सा आपातकालीन जरूरतों के लिए रखना बहुत बड़ी समझदारी है।
0: खालिका जी, बात बचत की चल रही है तो बचत की बात बच्चों से भी जुड़ती है। क्या आपको लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे की अहमियत और बचत की आदत सिखानी चाहिए?
1: जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अपने बच्चों को हमें जो भी हम पॉकेट मनी दें या कुछ भी दें तो उन्हें ये समझाना चाहिए कि जितना तुम्हें मिला है वो सारा खर्च ना करके उसमें थोड़ा थोड़ा आप बचाएं, ताकि उन्हें भी बचत करने की आदत बन जाती है। और हर पैसे को तुरंत खर्च करना जरूरी नहीं है, ये समझाना हमें उन्हें बहुत जरूरी होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होता है कि और भविष्य के बारे में भी सोचने की आदत उनके अंदर पैदा होती है, ताकि वो अपने पैसे बचाने की आदी हो जाए।
0: खलीका जी, अब एक थोड़ा दिलचस्प सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या बचत सिर्फ जरूरत के वक्त काम आती है या ये हमारे ख्वाबों को पूरा करने में भी हमारी मदद करती है?
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बचत जरूरत के वक्तों काम आती ही है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे ख्वाबों को हकीकत के रूप में बदलने का रास्ता भी बन जाती है। चाहे वो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो या अपना घर हो, कोई गृहिणी अपना कारोबार करना चाहे तो उसके पास जो बचत किया हुआ पैसा होता है वो उससे आने वाले कल की तैयारी कर सकती है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सक, कहीं घूमना है फिरना है तो वो अपने बचत के पैसे से साल के लास्ट में अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती।
0: और खलीका जी, आखिर में नारी संसार की सभी सखियों के लिए आपका क्या एक खास पैगाम होगा आज की बचत और कल के भविष्य के बारे में?
1: मेरा यही पैगाम है सभी से कि अपनी आमदनी का जो भी हिस्सा हो उसे थोड़ा थोड़ा कर बचत करने की अपनी आदत जरूर डालिए। आज थोड़ा हम बचाएंगे वो पैसा कल हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी में हमारा सहारा बनेगा, हमारे भविष्य में काम आएगा। आज की बचत भविष्य की बुनियाद को मजबूत करेगी।
0: हमने खलीका जी से बात की और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, और उनकी बातचीत ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाई

कि भविष्य किसी एक दिन अचानक नहीं बनता, वो आज के लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। आज अगर हम अपने खर्च को समझते हैं, आज अगर हम अपनी आमदनी में से थोड़ा सा हिस्सा बचाते हैं, आज अगर हम अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हम सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते, हम अपने कल का भरोसा जमा कर रहे होते हैं। और सखियो, बचत का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हम आज की खुशियों को भूल जाएं। बात सिर्फ इतनी है कि आज की खुशी के साथ कल की फिक्र भी थोड़ी सी जरूर शामिल करें, क्योंकि आज की छोटी बचत कल की बड़ी राहत बन सकती है। आज का एक समझदार फैसला कल के किसी बड़े ख्वाब की बुनियाद बन सकता है। खलीका जी, आपसे बात हुई, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारी सखियों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम आपसे पूछना चाहेंगे आपकी पसंद का एक गीत।

सखियों, सितंबर का महीना अपने साथ मौसम में बदलाव लेकर आता है। कभी हल्की गर्मी, कभी बारिश और धीरे धीरे बढ़ती ठंडक। इस बदलते मौसम का असर हमारी त्वचा पर, हमारे बालों पर दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें अपने बाल

बालों की और अपनी त्वचा की बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। बारिश के बाद उमस और धूल की वजह से चेहरे पर चिपचिपाहट जैसी महसूस होती है, इसलिए सखियो दिन में दो बार आप चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। और जब मौसम बदलता है तो जो हमारी स्किन है वो भी रूखी होने लगती है, तो चेहरा धोने के बाद अपनी स्किन के अनुसार मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। सितंबर में बादल हों तब भी धूप की किरणों का असर रहता ही है। घर से बाहर जब भी निकलें तो सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलें। मौसम बदलने पर होंठ भी सूखने लगते हैं, इसलिए दिन में कई बार लिप बाम लगाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीती रहें। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का एक गीत, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां की तरफ से। इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम गरेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी और अबरार हुसैन अंसारी ने।

सखियो, हमने आपसे पूछा था एक सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नई रक्षा अधिकारी कौन बनी है। सखियो, हमने आपको ऑप्शन भी दिए थे और हमारे पास इनका जो जवाब आया है, और आपको बता दें सखियो कि राष्ट्रपति मुर्मू की नई एडीसी यानी उनकी रक्षा अधिकारी बनकर इतिहास रचने वाली महिला भारतीय सेना अधिकारी कौन बनी है, तो वो है मेजर नव्या शेखावत। तो हमारे पास सही जवाब भेजा है सादुल शहर से रामकुमार रिवाड़ जी ने, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुहेल अनम और यशफ ने, दंतरेगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा ने, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से नव्य सिंह शेखावत सही जवाब भेजा है, और लाल मोहम्मद अंसारी जी ने और प्रवीण चौहान जी ने सही जवाब हमारे पास भेजे हैं। अब आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियो, आज के कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आप अपने पत्रों के माध्यम से और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। अब हम चाहते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नारी संसार बहन नूर फातिमा के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 6 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। नेहा सिंह के साथ प्रस्तुति है गौरव सक्सेना की।

हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, 100.4 एफएम पर वेलकम है हमारे सभी लिसनर्स का प्रोग्राम युव वाणी में आपकी आज की रेडियो साथी और होस्ट नेहा सिंह के साथ। सो कैसे हैं आप सभी? वेल, आजकल मौसम कितना अनप्रडिक्टेबल हो गया है ना, वेदर सडनली बदल जाता है। जैसे कि आज सुबह अचानक से बारिश होने लगी और फिर उसके कुछ थोड़ी देर बाद ही एकदम से धूप निकल आई। और दोस्तों, यही जो बदलता मौसम है ना, ये बनता है हमारी बीमारियों का कारण। इस समय वायरल फीवर, कोल्ड, कफ, ये सब प्रॉब्लम्स हमें काफ़ी इजीली हो जाती हैं, स्पेशली बच्चों में। इसलिए

अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इस मौसम में और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, इसलिए जितना पॉसिबल हो बारिश में भीगने से बचें, क्योंकि बारिश में भीगना हमारे लिए बन सकता है हानिकारक, और जो इसके कारण जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं इन्फेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अपने घर के आसपास बारिश का पानी बिल्कुल भी खट्टा ना होने दें, क्योंकि दोस्तों ये जो पानी होता है ना, इस पानी में पनपते हैं डेंगू मलेरिया के मच्छर, और ये तो आपको पता ही है कि ये कितने ज़्यादा हानिकारक होते हैं हम सबके लिए। साथ ही इस मौसम में रोड साइड जो फास्ट फूड मिलता है खुला हुआ, उसे तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना हाइजीनिक तरह से बना होता है, जिसके कारण पेट से जुड़ी बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। और साथ ही आजकल के समय में जो हम पानी पीते हैं उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिल्टर्ड वाटर ही पिएं। गंदे पानी को पीने से टाइफाइड, पेट दर्द वगैरह जैसी बीमारियाँ इजीली हो सकती हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए हमारी डाइट, हमारा डेली रूटीन, इसलिए मौसमी फल, सब्जियाँ, सलाद, ये सब हमें डेली ज़रूर खाना चाहिए। और प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच डाइट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है और हम बीमार भी जल्दी नहीं होते। खाने पीने के साथ साथ हमारा डेली का जो रूटीन है उसमें हम कितना वॉक करते हैं, कितना फिजिकल एक्टिव रहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रोज़ खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना या मॉर्निंग वॉक करना, या हफ्ते में 4-5 दिन योगा करना, या आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हम फिजिकली एक्टिव भी रहेंगे और बीमार भी आसानी से नहीं पड़ेंगे। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और लेंगे अब एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: दोस्तों, आजकल का जो समय है हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस डेवलपमेंट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं पे जो आजकल की जनरेशन है, टीनेजर्स हैं, एडल्ट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं हर चीज़ों में, जैसे कि सोशल मीडिया। इसका ट्रेंड तो आजकल हर किसी में देखने को मिलता है। हर कोई अपने फ़ोन में बस दिन भर इसी में लगा रहता है। इसके वैसे तो काफ़ी सारे यूजेस भी हैं, बट काफ़ी सारे नुकसान भी, और स्पेशली जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, टीनेजर्स हुए, स्कूल गोइंग के स्टूडेंट्स हुए या कॉलेज स्टूडेंट्स हुए, उनमें इसका ओवर यूज़ उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उनके लिए ये जो समय है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके करियर पर ध्यान देने का, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने का और आगे बढ़ने का। और अगर हम इसी प्रेशियस टाइम को इन सब चीज़ों में वेस्ट करते हैं तो इसके नुकसान उनको आगे जाके अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खल सकते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस विषय में अब हम लाए हैं आज आपके लिए वार्ता कि सोशल मीडिया के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, छवि के साथ।
3: नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम छवि है और मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ। आज मैं आपको सोशल मीडिया और फ़ोन यूज़ करने के नुकसान और फ़ायदे बताने वाली हूँ। जैसा कि हमें पता है, आजकल की जनरेशन कितनी ज़्यादा सोशली इंटरैक्टेड है। कुछ लोग इसे अच्छी तरह भी यूज़ करते हैं और कुछ लोग बुरे काम के लिए भी। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों का टाइम पास और मन बहलाने के लिए उन्हें बाहरी दुनिया में खिलाने के बजाय घर में ही हाथ में फ़ोन दे देते हैं, जिससे आजकल के बच्चों की आंखों और शरीर पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। कई बार बच्चे फ़ोन में गलत चीज़ें भी सीख जाते हैं। फ़ोन, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स को सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने वाले भी बहुत लोग हैं, जैसे कि हैकर्स। आजकल की जनरेशन में हमें अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस को भी देखभाल कर किसी को भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग उनका मिसयूज़ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर उन्हें वायरल कर देते हैं, और आजकल ये केस बहुत कॉमन हो गए हैं। हमें अपनी बैंक डिटेल्स, OTP या किसी भी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी किसी को ऑनलाइन या कॉल्स पर नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इस सब का भी हैकर्स गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, इस सब के फ़ायदे भी बहुत हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई फ़ोन से करते हैं, बहुत सारे बिजनेस वर्क भी आजकल ऑनलाइन होते हैं, और बहुत से सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स भी अपना टैलेंट दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं। फ़ोन की मदद से हम अपने दूर रहने वाले दोस्त और परिवार वालों से भी कनेक्टेड रहते हैं कॉल्स और मैसेजेस के ज़रिए। और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर आने वाली कुछ अच्छी और ज़रूरी जानकारी देखने के साथ साथ हम दूसरों तक इसे शेयर भी कर सकते हैं, और अपने मनोरंजन के लिए भी आजकल सोशल मीडिया पर देखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा घंटे फ़ोन चलाते हैं, लेकिन ये भी गलत है। हमें फ़ोन का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ख़तरनाक रेस आपकी आंखों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो आप इससे बचने के लिए अपने

फ़ोन में स्क्रीन टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं। इससे आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करने में मदद भी मिलेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही तरह यूज़ करिए और लिमिटेड भी। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। धन्यवाद।

भी अच्छा नहीं रह लगता। और ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। हमारी जो हेल्थ है वो हमारे लिए हर चीज़ डिसाइड करती है कि हम कहाँ आ जा सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं या नहीं, या हमारा जो डेली रूटीन है वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, इवन हमारी वर्क को भी। इसलिए फिज़िकली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के समय में जहाँ पर डे बाय डे बढ़ता पॉल्यूशन जो हमारा एटमॉस्फेयर तो ख़राब कर ही रहा है, साथ ही हम सबको और भी ज़्यादा वीक एंड वनरेबल बना रहा है, जिस कारण हम बीमार भी आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल का ये जो मौसम है वो हमें कितना आसानी से बीमार बना रहा है, इन सब के काफ़ी सारे रीज़न भी हैं। जैसे आजकल लोगों की इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई है, और ऐसे में हम में से कई लोग थोड़ा सा भी दर्द होने पर, बुखार, खांसी, जुकाम जब होता है तो खुद से ही मेडिकल से जाकर के दवाई लेकर ले आते हैं और उसको खा लेते हैं, जो कि कभी कभी तो हमें फ़ायदा भी करती है, बट बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन की जो दवाई है उसको खाने से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकते हैं। और या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि हम में से काफ़ी सारे लोग पैसे बचाने के चक्कर में किसी भी इनएक्सपीरियंस डॉक्टर से दवाई ले आते हैं, जो कि कई बार हमें गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिस कारण पेशेंट्स की हेल्थ को रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आज के दिन एक बहुत ही खास दिवस मनाया जाता है, जो कि है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये दिन स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान होने वाली गलतियों को कम करने और साथ ही मरीजों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2019 में की गई थी। फिर तब से ही ये दिवस आज के दिन यानी कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका जो मेन एम है वो स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, मरीजों को सुरक्षित इलाज देना है। और हर वर्ष इस दिवस की एक थीम भी रखी जाती है, और वर्ष 2026 की जो थीम का विषय है वो ये है कि गैर संक्रामक रोगों के लिए सुरक्षित देखभाल। और इस वर्ष का एक स्लोगन भी डिसाइड किया गया है, जो कि है सेफ केयर फॉर लाइफ। और ये जो अभियान है, इस वर्ष का थीम एंड स्लोगन, इसका मेन फोकस डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेस जैसी गंभीर और लंबी बीमारियों के इलाज के दौरान सुरक्षा और सावधानी पर फोकस करना है। फोकस तो हमें अपनी हेल्थ पर खुद ही रखना चाहिए। हम अपनी इम्यूनिटी को, अपने फिजिकल हेल्थ को इतना अच्छा बनाएं कि हम जो बीमार हैं वो बार बार ना हों और हमें डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

दोस्तों, आज के समय में हम सब की हेल्थ जो है वही हमारी रियल वेल्थ है। अगर हम फिजिकली हेल्दी और फिट नहीं रहते तो हमें कुछ

श्रोताओं, आपको हमारा आज का सवाल याद है ना, जो कि हमने अपने सोशल मीडिया के थ्रू पूछा था। हमारा आज का सवाल मैं आपको फिर से एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ, जो कि था कि वो कौन सा स्थान है जिसे विश्व की छत के नाम से जाने जाता है, यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसके नाम से हम किस प्लेस को जानते हैं? तो टिबेटन प्लेटू, इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तिब्बत के पठार की ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली 4500 मीटर से भी ज़्यादा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा प्लेटू है। पामीर माउंटेन्स में ये मध्य एशिया में स्थित है और ये हिमालय पर्वत, काराकोरम रेंज एंड हिंदू कुश माउंटेन्स के क्रॉस रोड्स पर स्थित है। साथ ही जो हमारा आज का सवाल है, उसका उत्तर का हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स ने अपने कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल सही दिया है, जैसे कि विष्णु मिस्किन, बलकरण वर्मा, रवि कुमार, राहुल अबाद खान, राजकुमार, विनोद नारायण कुशवाहा, मोहम्मद सई अब्बासी, अंसारी हसन, बीपी गौतम, वीरेंद्र भयान, अनिल तमराकर एंड और भी कई सारे लिसनर्स ने। वेल फ्रेंड्स, जो कार्यक्रम युववाणी है उसका समय बहुत ही लिमिटेड बचा है, एंड अब सुनते हैं आज का आखिरी गीत।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी नेहा सिंह के साथ, प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, बहन पूनम और भैया सुरेंद्र पाल के साथ। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।

0: शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज कल जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: गांव की मिट्टी में पले बड़े, मेहनत की रोटी खान वाले और किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनों को आपके भैया सुरेंद्र
4: और आपकी बहन पूनम की
3: राम राम। का हाल चाल है पूनम बहन आपके?
4: भैया हाल चाल बिल्कुल सही है और हमें उम्मीद है हमारे भैया बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे।
3: अच्छे होंगे। और पूनम बहन, उन्हें खेती बाड़ी अच्छी से हुई, लेकिन पूनम बहन आपने देखी आज सुबह?
4: हाँ,
3: मौसम में एकदम कितनों परिवर्तन आए।
4: हाँ, देख रहे हैं आप कितनी तेज आंधी चल रही और पानी बरसो, बहुत तेज बरसो भैया।
3: हमें तो जलाग रही कि आज हम आकाशवाणी पहुंच ना पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखी ना पूनम मैन तो धूप अच्छी खासी खिल गई।
4: हाँ, वो तो खिल गई।
3: तो हमारे किसान भैया बहन भी इस चीज को ध्यान दें कि अपनी खेती बाड़ी में जो उनके काम है मौसम को देखते हुए करें, क्योंकि मौसम में एक साथ परिवर्तन बहुत ज्यादा आजकल हुई रहो है।
4: हाँ भैया, वो तो हुई रहो है, लेकिन हमें लग रही है आप भी कार्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हो, क्योंकि आपने भैया बहन से अभी तक सवाल न पूछा है और भैया बहन इंतजार तो कर रहे होंगे कि आज तो भैया कतई कार्यक्रम में घुल गए हैं कि वे जब सवाल तो पूछिए ना आ रहे हैं तो हम जवाब कहाँ से देंगे।
3: तो पूनम बहन, अब देर ना करता अपने भैया बहन को बता देते हैं आज को सवाल। तो किसान साथियों, निकाल लो अपने अपने कॉपी और कलम और लिख लो हमारो आज को सवाल। हमारो आज को सवाल है, मटर की उन्नतशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इनको बुवाई को उचित समय कहा है। जब सवाल को जवाब को मिलान कराएंगे हम कार्यक्रम के अंत में, जब तक आप जो सवाल के उत्तर को ढूंढ कर आएंगे।
4: हाँ भैया बहनों, या तो हमें उम्मीद है कि आप ढूंढ कर रखोगे और खेती बाड़ी करते हो, लेकिन आपको पता है भैया कि जो हमारे भैया बहन है ना, वो ज्यादातर आप देख रहे हो कि धान है, गन्ना है, गेहूं है, यही चीजन को ज्यादा उगाता है ना।
3: लेकिन हम तो अपने भैया बहन से क्या कहेंगे, इन सब खेतियों के साथ साथ औषधीय फसलन की खेती भी जरूर करें, जैसे छतावर की खेती कुछ भैया कर रहे हैं, ज्यादातर करें, मेहनताय खेती करते हैं, अश्वगंधा की खेती करें, तुलसी की खेती करें, इन खेतों से कहा है ना मैंने, थोड़े हमारे भैया बहन की आय बढ़ जाती है।
4: हाँ, और आमदनी जब उनकी अच्छी होती है भैया, तो उनकी जो घर है वो आसानी से चलता है, तो हमारे भैया बहन के जो चेहरा है ना, वे खुशी से खेल उठा।
3: तो हम तो अपने भैया बहन से यह कहेंगे कि वे समय के साथ अपनी खेती में जरूर बदलाव लावे, कि किस तरीका से अपनी खेती में नए नए काम कर सकता है। तो पूनम बहन, एक कृषि गोष्ठी हम अपने कार्यक्रम में लेके आए हैं जिसको विषय भी है समय के साथ बदलता खेती का स्वरूप, और उसमें प्रतिभागी हैं राम भरोसे लाल, झांझन लाल, संजीव मौर्य और संचालन कर वो हमारे भैया रविंद्र नाथ। तो आप सुन लेते हैं जग कृषि गोष्ठी।
5: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार की नमस्कार और भैया राम राम
1: राम राम, राम, राम, राम।
5: तो भैया देखो, आज के हमारे कार्यक्रम को विषय है समय के साथ बदलता खेती का स्वरूप। आजादी के 80 साल पूरे हुए हैं, जैसे बदलाव तो हर जगह होते हैं, खेती में का बदलाव। तो भैया पहले कर लेते हैं परिचय, का नाम है, कौन से गांव से आयो?
6: राम भरोसे लाल, हम नौवा वीरान से आए, भतपरा नवाबगंज।
5: और भैया आपको का नाम है?
1: झांझन लाल, आसपुर खेड़ा, तहसील बहेड़ी, ब्लॉक शेरगढ़।
5: और संजीव भैया आप कौन से गांव से आयो?
7: बरकना से, तहसील नवाबगंज, भतपुरा।
5: तो देखो जो तो वो परिचय, अब बात करते हैं समय के संग बदलता खेती का स्वरूप। तो देखो झांझन लाल भैया की जो उम्र है वह है 61 साल, तो आप और आजादी को भय 80 साल, तो आप ज्यादा पुराने हो। तो जा बताबो कि पहले खेती कैसे हुए करती?
7: इंजन इंजन है ना, खेती बरसात के ऊपर होती, बहुत कम होती पैदावार, कठियार बैल चलाते से खेती होती, खाद उद कम ही, अब खाद उद काफी मिल रही है।
5: तो जैसे जुताई जो होती, तो वो जैसे मान लो 2 बीघा टुकड़ा हो तो कितने घंटा में जुताई होती?
7: अरे 2 बीघा कम से कम 3 घंटा लगी जाते जोतन में।
5: और रोटी उटी ले जाते?
7: हाँ, रोटी बांध के ले जाते, रोटी खाते खेत में जाएगा।
5: मतलब पहले जाए की खेती बड़ी कठिन ही?
7: बहुत कठिन खेती पहले,
5: मेहनत बहुत
7: करनी पड़ती।
5: कितने साल से खेती कर रहे हो आप?
7: पहले से खेती कर रहे हैं।
5: पढ़ाई करी थोड़ी बहुत?
7: हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी।
5: अच्छा, उस समय पढ़ाई को क्या माहौल हो गाँव में, पढ़ाई

0: राई को कैसे हिसाब चल तो
1: पढ़ाई हो ऐसी हारती पढ़ाई पहले तो
0: बालकन को पढ़ाते ही पहले के बड़े बूढ़े ना है
1: पढ़ाते बालकन
0: या खेती में लग जाते हैं बालक
1: खेती में वैसे ज्यादा लग जाते हैं पढ़त तो कम ही
0: पहले की खेती बड़ी कठिन ही
1: हाँ कठिन ही
0: बहुत मेहनत करने मेहनत जब हम लोग करते हैं तो मुश्किल से अनाज उत्पादन
1: हाँ,
0: होतो
1: हो तो
0: और मौसम पर आधारित थी
1: हाँ
0: खेती।
1: मौसम पर आधारित है पानी कोई साधन ना है पहले
0: अब जानते राम भरोसे लाल भैया आपकी क्या उम्र है
2: 54 साल है।
0: आप बताओ आपको बचपन कैसे बीतो और बचपन में कैसे खेत होते हुए देखी है आपने।
2: कुछ सुधार हो गए कि जैसे मान लो अंजन उंजन हो गए सिंचाई उचाई कर लिए थे। पहले तो कम वैरायटी अब ज्यादा वैरायटी चल गई है। पैदावार में कुछ अंतर आ गए काफी। पहले खाद भी इतनी ना आई अब कहीं DAP लगाओ कहीं NP लगाओ काफी बदलाव है खेती में।
0: पहले मतलब भराई उराई को का साधन हो
2: ले जाते डबल व्हील के इंजन से तो वाको फिट कराते और सिंचाई कराते उससे बोरंग से।
0: रहट ना चलते आपके समय में
2: राइट हमारे समय में नहीं चलाते
0: कुआं से पानी ना भरते बैलन से
2: ना उससे और पहले से भाई।
0: आपके समय में
1: हाँ
0: रहट
1: राइट
0: चलते
1: चलते हमने
0: तो
1: तो
0: रहट से कैसे भराई होती।
1: मैट से कम भराई होती तो पानी कहाँ वो बाल्टी टीन की है आज मोहम्मती हाँ वहां से भराई हो जाती दिन भरे में 5-6 बीघा की और का
0: मेहनत मतलब ज्यादा ही
1: बहुत मेहनत थी हमने तो हाथ से ढुकरी डाल के तक खेती भरी
0: हाथ से ढुकरी
1: हाँ
0: तक डालने।
1: जो करवा रहे होते थे होते और रेंट चल तो ऊपर टंग हो ऐसे बरारी होती बाद से भराई करी बहुत बहुत बहुत काम मेहनत को
0: सिंचाई करनो बड़ो मेहनत को काम
1: बहुत
0: हो
1: काम है
0: जुताई करनो बड़े मेहनत को
1: मेहनत
0: काम हो।
1: काम है।
0: अब हम बात करते हैं संजीव मौर्य तुम्हारी क्या उम्र है
1: 21 साल
0: कौन से कर रहे हो
3: खेती जी अभी 15 साल से
0: काय काय की खेती कर दो।
3: ना है धान है गेहूं है
0: जैसे आप कोई फसल बोनी है तो का काम करने पड़ता है।
3: पहले बगर के जुताई करते हैं जुताई करके फिर बीज ले जाते हैं बीज उसमें लगाते हैं खेती में फिर बीज उग जाता है तब उसमें पानी लगाते हैं फिर उसमें घास हो जाती है फिर उसमें नराई लगाते हैं
0: जैसे इन दोनों की उम्र ज्यादा ही तो इनने बताई कि पहले हल बैल की खेती ही रेड से पानी भरते डुकरी से पानी भरते खेतन में। अब कैसी खेती है अब का बदलाव हो खेती में।
3: ये ट्रैक्टर से जुताई होने लगी है पहले बैलों से होती थी
0: और का बदलाव हो
3: और अब ट्रैक्टर के भी साधन बहुत बढ़ गए हैं
0: नई नई मशीनें आ गई हैं।
3: नई नई मशीनें आई हैं
0: कौन कौन सी मशीन जुताई की है काय काय से जुताई होती है खेतन की।
3: रूटावेटर है हैरो है कल्टीवेटर है लोहिया हर है
0: तो इनसे का फायदा होगा खेती में।
3: रूटावेटर की जुताई से मेहन हो जाता है फावड़ा चलाने में आसानी होती है
0: मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जुताई अच्छी हो जाती है। तो
1: हाँ
0: जो बदलाव है कि आपने दोनों ने बताई पुराने समय की बात और इनने बताई कि आज जो रोटावेटर है जो मशीनें हैं उनसे मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है जैसी किसान चाहते हैं वह बहुत कम समय में हो जाती है। समय की बात करें तो राम भरोसे लाल भैया जा बताओ कि जैसे समय के हिसाब से पहले की खेती कैसी ही और आज की खेती कैसी है मतलब समय के हिसाब से कितनो समय कम लगता है आज।
2: आज के जमाने में अब समय बहुत कम लग रहा है। पहले बहुत समय बर्बाद होते जुताई कराते हल से तो वह दिन भर जोतत रहते अब एक घंटा में ट्रैक्टर जोते आते हैं बदलाव काफी है वो।
0: पहले कुंटलों बीघा पैदा ना हो तो आज 4-5 कुंटल हम मान
2: हाँ
0: लो 1 बीघा से अपने ले रहे हैं। जो बदलाव है जो तरक्की है झांझर लाल भैया आप बताओ।
1: हम साहब धान की खेती करते हैं गेहूं की खेती करते हैं बरियान उरियानों कर लेते हैं आलू उलू आड़ लेते हैं
0: पहले कैसे करते हैं रोपाई और अब कैसे करते हैं कोई अंतर आओ धान की फसल में।
1: हाँ हाँ पहले से बहुत अंतर आओ पहले तो साहब हाथ से निराने पड़ते घास उघाड़नी पड़ती अब तो दबा कर देते हैं सब सूख जाती है
0: पता चली पहले 10 जने काम को कर रहे हैं अब
1: हाँ
0: 2 जने काम को खत्म करे आए
1: हाँ का एक जन खत्म कर आवे
0: जा से कहा कि समय की बड़ी बचत भई है।
1: बहुत
0: पहले जैसे खेती में बहुत समय लगतो
1: हाँ
0: बताओ संजीव भैया और जो नई तकनीकें हैं सिंचाई कैसे हो रही है आजकल पहले कैसे सिंचाई होती।
3: सिंचाई पहले बरा से होती थी अब ज्यादातर पाइप लोग ले आते हैं किराए पे डायरेक्ट पाइप डाल देते हैं जहाँ भरना होता है ले जाके अब बरा बनाने में समय ज्यादा लगता है
0: तो राम भरोसे लाल भैया जब बताओ कि जैसे अब सरकार ने भी मदद करी है खेती बाड़ी के काम में
1: हाँ।
0: किस तरह से मदद कर रही है अब खेती में किसानन की।
2: खाद भी पहले से बहुत अच्छी मिल रही है और पहले बोरंग ना है तो फिर अब बोरंग भी चल गए हैं साधन हो इसीलिए पैदावार बढ़ गई जमीन को। और पहले कहाँ हल से कराते तो अब ट्रैक्टर से हो रही है।
0: जाको किस नजरिया से देखते हो, जैसे पहले लोग कैसे जीते कैसे रहते।

0: में कैसे।
1: बहुत बासे जियते अपने परेशानी के हिसाब से।
0: हाँ
1: अब जो है तो बलदाव है, अपने शौक से चल रहे हैं।
0: अच्छा, मतलब गांव के लोग आपस में मिलके काका काम करते, और अब का स्थिति है जा बारे में भी बताबू।
1: पहले सब मिलके सब लोग खेती कर लेते, और अब तो मशीनों द्वारा हो जा खेती।
0: मशीनों से क्या फायदा मिलू खेती को।
1: मशीन से तो बहुत फायदा मिलो, मशीन से तो तुम 100 बीघा एक दिन में बोए दो, और वैसे हाथ से बोते तो 4 महीना में ना बो पाते।
0: आप बता रहे हैं बरियाने की खेती करते हो, तो बरियाने में का का खेती करते हो।
1: बरियाने में आलू करते हैं, गोभी करते हैं, प्याज करते हैं।
0: जो बरियाने की फसलें हैं इनमें का बदलाव हुआ पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा।
1: अब बहुत कम होती है, अब तो बहुत ज्यादा साधन बढ़ गए होंगे, और बीज कुछ बढ़िया मिलते हैं। पहले देसी बीज चलते तो उनमें इतनी पैदावार कहाँ।
0: आज उन्नत किस्में
1: हाँ आज,
0: हैं तो
1: हाँ
0: उनकी पैदावार भी ज्यादा
1: हाँ
0: है।
1: ज्यादा,
0: तो आलू की जैसे बुवाई करते हो तो जाके ले कोई नई मशीनें आ गई हैं अब।
1: हाँ नई मशीन से आलू बो जा रहे हो।
0: पहले कैसे बो करते।
1: पहले तो हाथ से गाड़ते खुरपी से, अब
0: हाँ,
1: मशीन से गाड़ रहे हैं।
0: अब आलू मशीन से काट रहे हो तो बामे जाए कि बचत समय की हो ही रही
1: हाँ
0: है,
1: समय की हो रही है,
0: पैसों की बचत हो
1: पैसों
0: रही,
1: की बचत हो रही है।
0: बय जाए कि खेती में बचत ज्यादा
1: हाँ
0: महसूस हो
1: ज्यादा
0: रही।
1: महसूस।
0: तो राम भरोसे भैया, आपने काय काय की खेती बताई।
1: धान की और गन्ना की।
0: गन्ना की खेती कर दो। गन्ना की खेती में पहले पहले तो गन्ना की खेती बहुत कम हुई करती पुराने समय में,
1: हाँ कम होती। पहले
0: अब गन्ना की खेती को क्या हिसाब किताब है।
1: तो लोग जैसे हल से बहते और दिन भर बहुत रहे थे, अब तो ट्रैक्टर लेकर जाओ और बस बह के चले आओ। एक आदमी बस ट्रैक्टर लेके जाओ, सही बीज रखो, खाद रखी और मशीन सब बह आता, और बस बह के चले आओ। 10 बीघा बह जाता वो 2 घंटा।
0: पहले दिन भरे में शायद 2-4 बीघा बो पाते,
1: और
0: फौरे से के बो बनाते।
1: हाँ गाड़ाते कुछ लोग हल से बोते, अब जो है तो मशीनें हैं तो 2 घंटा में बह के चले आओ। 10-15 बीघा खेत 2 घंटा में बह जाते। एक है आदमी, एक चलान मारो होते, एक देखन मारो होते, दुई आदमी बह आते।
0: दो आदमी, और पहले 10-20 आदमी लगाने
1: अरे बहुत
0: पड़ते।
1: आदमी लगाते।
0: अब जो सरकार अब किसान सम्मान निधि दे रही है वह मिल रही है आपको,
1: हाँ हाँ मिल रही है।
0: बासे का फायदा बहु है।
1: अरे बासा सर बहुत फायदा, वो गरीब आदमी है, अपने बहुत काम चल रहा हो बाबू, धान है बीज है ले लेते, पैसा मिल जाता है तो और खर्चा चल जाता।
0: और आपको मिलती है किसान
1: हाँ
0: सम्मान निधि,
1: हाँ मिलती है।
0: तो आप पैसा को कैसे प्रयोग कर रहे हो।
1: जैसे हमें खाद में जरूरत पड़ी और अपने खाद बो दी, अगर पानी की कृषि में अगर जरूरत पड़ रही फसल में तो डीजल ले आए पैसा निकाल कर, तो इससे बहुत काम चल रहे हैं।
0: तो संजीव जी बताओ कि पहले और अब में किसानन की स्थिति में सुधार हो, उनकी हालत में सुधार हो है।
1: हाँ जी, अब तो गैस चूल्हा भी चलने लगा है, इससे भी खाना जल्दी पकने लगा है, और भी समय बच गया, चूल्हा जलता ही नहीं था, इससे समय बच गया।
0: आपके गांव में किसान तरक्की कर रहे हैं।
1: हाँ जी कर रहे हैं,
0: कैसी तरक्की कर रहे हैं, तरक्की किस बात को मान। तो
1: आसानी से काम हो जाता है।
0: आप बताओ राम भरोसे लाल भैया कि जो जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है।
1: जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ वो। अरे पहले के किसानन में जाइए कि भाई दिन भर चलाते मेहनत कराते मर का कुछ ना बच पातो, और अब तो बहुत बड़ी सुविधा है, 1 घंटा में जाता है और बस पूरे दिन को काम निपटाया है।
0: किसान खेती कर रहे हो, तरक्की हो तो सब खेती से हो रही
1: हाँ
0: है।
1: खेती से हो
0: आज
1: रही
0: का
1: है
0: स्थिति है कितनों
1: आज
0: विकास गांव
1: इसकी।
0: में वो है।
1: अभी पहले हमारे लोग सब घर छप्पर के ही लिंटर पड़ गए, किसी को घर कच्चू ना रहो, जहाँ है तो तरक्की है,
0: समय
1: खेती
0: के
1: से बच
0: साथ
1: रही है।
0: खेती बदली है तो किसान की तरक्की भी
1: हाँ
0: बड़ी है।
1: तरक्की भी बदल गई।
0: तो झांझलाल भैया आप जो बताओ कि आप रहने वाले हो आसपुर खेड़ा के, तो आपकी तरफ सिंचाई का ऐसे कर रहे हैं आजकल किसान,
1: सिंचाई इंजन से हो रही है।
0: नहरें ना है आपके
1: हाँ
0: यहाँ।
1: नहर में तो पानी उनी कम आ रहे हैं।
0: सिंचाई इंजन से हो रही है, और उस समय की बात करें जब आप छोटे हैं तो सिंचाई को क्या माध्यम हो
1: उस समय तो
0: किसानन।
1: बरसात के ऊपर रहे थे, भगवान के ऊपर रहे थे, बरस जाते तो पैदा हो जाते, ना तो ना हो तो पैदा।
0: ना हो तो पैदा। तो अब जो तरक्की भई है इंजन बोरिंग, आपको अपनो बोरिंग है।
1: हाँ है।
0: साथियों आप आज हमारे साथ कार्यक्रम जुड़े, कार्यक्रम में विषय था समय के साथ बदलता खेती का स्वरूप। इस विषय पर आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों, अभी आपने सुनी कृषि गोष्ठी, जिसको विषय हो समय के साथ बदलता खेती का स्वरूप। प्रतिभागी थे राम भरोसे लाल, झांझन लाल, संजीव मौर्य, और संचालन कर रहे थे भैया रविंदर।
3: पुनः मैं देखो जातो ही कृषि गोष्ठी, और अब सुनवाई दो 6 संगत कार्यक्रम के अंतर्गत जो आप जो महिला ही रामकली उनसे जो आपने बातचीत करी खेती बाड़ी व पशुपालन के बारे में, तो बहुत लोग सुनवाई दे रहा।
2: हाँ हाँ।

0: जरूर सुनवा दो भैया।
1: क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता के अंतर्गत आज हमारी बात हुई है सफल महिला कृषक से, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। वो बहुत अच्छे से अपनी खेती बाड़ी करती हैं और साथ साथ पशु भी पालती हैं और बाकी संग संग अपने घर परिवार में सब सदस्यों को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। तो जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपको नाम?
2: रामकली।
1: आप कौन से गाँव में रहती हैं?
2: मुड़िया में।
1: तहसील कहाँ लगती है आपकी?
2: नवाबगंज।
1: और जिला?
2: बरेली।
1: का काम आप करती हैं?
2: खेती बाड़ी करते हैं।
1: पशु भी पालती हैं?
2: हाँ पालते हैं।
1: खेती बाड़ी में कौन कौन सी फसलें करती हैं मुख्य रूप से?
2: गन्ना करते हैं, धान करते हैं, गेहूं करते हैं।
1: अच्छा, गेहूं के समय पे गेहूं करती हैं।
2: हाँ,
1: तो गन्ना में का कोई काम हीरो हुआ है?
2: अब गन्ना में पत्ती छांटिए।
1: अच्छा,
2: और गन्ना बांधो।
1: कैसे छांटी जाती है जा, और कैसे करके जैसे ध्यान रखने पड़ता है कि हमें कौन सी पत्ती छांटनी है?
2: पत्ती पीली नीचे की,
1: अच्छा
2: कल्ली छोड़ने पड़ती है।
1: अच्छा, जहाँ से फायदा होता है कुछ?
2: हाँ फायदा होता है।
1: क्या फायदा होता है?
2: गन्ना गिरते नहीं है, बांधने में बहुत गन्ना सही होता है।
1: अच्छा,
2: कभी नहीं गिरेगा, कट जाएगा।
1: अच्छा,
2: तब तक नहीं गिरेगा।
1: तो बनाई कर दी आपने भैया?
2: बंदाई कर भी रही है, रह भी गई है,
1: अच्छा।
2: छटाई सबकी हो गई है।
1: बांध कैसे हो फिर वो गन्ना?
2: जूना से भाई पत्ती उठाते बांधते।
1: घर की जब बंधाई करते हैं गन्ना में, तो क्या ध्यान रखने पड़ता है कि किस तरीका से हमें बांधना चाहिए जो हमारा गन्ना सही तरीका से बंधाए, गिरे ना?
2: वो गिरने से पहले उसकी छटाई करते हैं, तभी वो उठा कर पत्ती जूना बनाते हैं, उससे बांध देते हैं।
1: अच्छा, कितनी कितनी मूड़े इकट्ठी करके बांध देती हैं?
2: दो कोण की मूड़ पकड़ो और बांध दे।
1: नौलक की बंधाई ना करोगी?
2: ना।
1: तो बा जो बंधाई करिए बा का पेड़ी?
2: वो पेड़ी है।
1: पेड़ी हम किस तरीका से बाकी देखभाल करें जिससे बा सही तरीका से जैसे अच्छी हुई जाए?
2: खुदाई लगाई है हमने, स्प्रे करी है।
1: अच्छा,
2: सुड़ी की देखभाल करी है।
1: अच्छा,
2: अब जा टाइम पे हमने पत्ती छाटी है।
1: अच्छा,
2: अब हम बंधाई करके आए।
1: तो जाकर नौलक के मुकाबले पेड़ी में ज्यादा मेहनत करने पड़ती?
2: उतनी नौलक में उतनी पेड़ी में इतनी है। बार नौलक कुछ छोटे में है, बाम हम अब खाद बह के आए।
1: पेड़ी में और नौलक में बराबर गन्ना निकलता होगा?
2: हाँ बराबर गन्ना निकलता है।
1: वैसे कुछ लोग जा कहते हैं कि घर के एक फेरा की फसल सही ज्यादा वो है,
2: जैसे दो एक क्विंटल कम भी लग सकता है और आप रहा तो 10 क्विंटल बढ़ती भी लग सकता है नौलक में।
1: नौलक में?
2: हाँ। और पेड़ी में सूखा है ना तो बराबर की औसत दे जाएगी।
1: जाकाओ आप कुल दिन से खेती करती हैं, आपकी बात सुनकर लग रही है
2: खेती तो हम कर ही रहे हैं, हमें 10 साल होगी घूमते संग बराबर।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से खेती बाड़ी करती हैं कि हमें अपने खेतन को कैसे ध्यान रखने पड़ा है और कैसे किस तरीका से आप अपनी फसल की देखभाल की। धान की फसल भी आपने लगाई है? वाह, कितनी कितनी बड़ी हो गई है लगभग?
2: धान की फसल हमारी बड़ी अंठाड़ी हो गई।
1: जो घास फूस लगाने के लिए फिर क्या करूँ आपने
2: चलाए?
1: अच्छा,
2: और हमने खुद नराए।
1: तो नराते वक्त भी तो घर के इनको ध्यान रखने पड़ता है कि हम किस तरीका से नरावे जो हमारी फसल अच्छी रहे।
2: जब घास बाम होती है तो हमने बैठ के बात नराई, हमने मांग डाल तो हमने साफ करो खेत। अब फिर वहाँ में सुड़ी लगी, हमने स्प्रे कराई।
1: तो जाकर खूब अच्छे से आप अपनी फसल करती हो?
2: हाँ, फसल अब हमारी दीवीगा चल रही है अड़राम है और 8 बीघा हमारी सी काम चल रही है।
1: अच्छा, अलग अलग क्यों टाइम पे लगा दिया आपने?
2: वो जल्दी तैयार हो जाए और वो है ज्यादा उम्र को धान तो वो बाद में तैयार हुए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से धान लगाए हैं आपने, कुछ अंदाजा?
2: 26-26 खान को लगा हुआ।
1: 26-26 पहले तैयार हुए?
2: हाँ, वो पहले तैयार हो जाए। और हमने PR 13 लगा हुआ तब वो हुए बाद में तैयार, वो आवा इस टाइम सी काम चल रहा।
1: कैसे ध्यान रखती हूँ कि हमारा जो बीज है वो अच्छो आवा, अच्छो हमारा धान जमा?
2: जो बीज जा टाइम पे चाहिए, जो बीज जा टाइम पे चाहिए।
1: घर को ही पुराना ही बीज लगा देती हैं या नौ लाती हैं?
2: हम नौ दुकान से लाते हैं।
1: अच्छा।
2: नाम लेके लाते हैं कि हमें जो बीज निकाल कर दो और हमें जो बीज निकाल कर दो।
1: अच्छा।
2: और हाथ तो बीज मत दे दियो इतना ही।
1: खूब अच्छे से अपनी खेती करती हूँ। देसी घूरो तो आप डांट होगी?
2: हाँ डांटते हैं।
1: क्या फायदा होता है देसी घूरू डालने से?
2: फसल बहुत बढ़िया बढ़िया होती है।
1: अच्छा।
2: जो 4 कट्टा दुकान से डालोगी वो एक डल्लम खाद के सामने कुछ ना आए।
1: जाको मतलब जो घूरू उरू का खरीदती हूँ मोल?
2: पशु पालते हैं।
1: अच्छा, कितने कितने पाल लेती हूँ?
2: अब तो हमारे पास एक ही है।
1: ज्यादा पालती हूँ का?
2: ज्यादा हो गए, हमने बेच दही जब ना रुकी तो नहीं दही।
1: अच्छा, कितने?
2: दी हाँ, और उसके हारो
1: हाँ। कैसे ध्यान रखती हूँ अपने जानवर को, हमें अपने जानवर को कैसे ध्यान रख,
2: कौंदा होता है तो हम अपने जानवर को अंदर रखते हैं।
1: अच्छा
2: हाँ, उससे कि जानवर पर हानि न आवे।
1: और घर के साफ सफाई को ध्यान न रखने, पत्ता के नीचे हाँ? जैसे गंदो ना हो, गोबर इकट्ठो ना हो।
2: दिन भर में 4-5 फेरा झाड़ू लगा देते हैं। अच्छा। जब भी हम चैटा बटोरते हैं तो झाड़ू से बटोरते हैं।
1: अच्छा, तो गीलो तो न रहने देते,
2: गीलो

0: रखेंगे बात तो अलग बात है, जब सहेली भी जगह है।
1: लेकिन तो सानी होनी कैसे खवाती हूँ फिर अब जा टाइम पर का डाल रही हूँ।
0: जा टाइम पे हमारी आधे आधे की घास खा रही हैगी,
1: अच्छा
0: और हमारे पास चरी हैगी, चरी खा रही हैगी।
1: अच्छा
0: थोड़ो सा भूस डालते और भर देते हैं ड्रम चरी से, और ऊपर से थोड़ी पानी लगाओ और डाल देते हैं आटो, जी हमारी भैंस खा लेती।
1: या फिर आप ताजी जैसे नल से भर के पियाती हैं।
0: मोटर से पियाते पानी,
1: अच्छा
0: गर्मी पड़ती है दीवार नहाता है,
1: अच्छा
0: जैसे मौसम ठंडो है एक बार नहाता है। हमारी भैंस रोज नहा रही है,
1: अच्छा खूब साफ सफाई रखती हैं
0: और
1: से बचाओ भूल जाना।
0: हम धुआं करते हैं, अंदर भी धुआं धरते हैं, मोट के सामने धुआं धरते हैं, बैठी रहती है हमारी भैंस रात भर,
1: अच्छा
0: उठती नहीं है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छी तरीका से
0: हाँ
1: अपने जानवरों को ध्यान रखती हैं। आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो आपकी और हमारी बातचीत सुन रहे होंगे, उन सबसे आप सलाह के रूप में क्या कहना चाहिए?
0: अपनों ध्यान रखें, अपने जानवरों को ध्यान रखें। ऐसे टाइम तो है अब मच्छरों को जोर है, तो मच्छरदानी भी लगा के आप सोने
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: सही आपने बात कही, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे भैया बहनों को दी, वो सुनकर लाभान्वित होंगे। आप कार्यक्रम से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत सफल महिला कृषक रामकली के खेती बाड़ी व पशुपालन के अनुभव, और इनसे बातचीत करी हमारी बहन पूनम। और अब पूनम बहन समय ही हो अपने कार्यक्रम में कृषि समाचार को। तो सबसे पहली बरेली से खबर है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च लखनऊ के बीच 16 सितंबर को शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। इस सहयोग से पशु स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा अनुसंधान, नई वैज्ञानिक तकनीकों के विकास को पूनम बहन बढ़ावा मिलेगा।
3: और भैया बरेली में किसानों के लिए एक और उपयोगी जानकारी है, कृषि विज्ञान केंद्र और संबंधित विभाग किसानों को खेती उद्यान और पशुपालन से जुड़े प्रशिक्षण तक तथा आधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भैया बहनों से अपील है कि अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी लेते रहें।
2: पूनम बहन अगली खबर है, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार नए बीज कानून के तहत सख्त प्रावधानों पर काम कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में नकली और घटिया बीजों पर कार्रवाई, बीजों की ट्रेसबिलिटी और अधिक पारदर्शिता पर जोर दोगे। तो पूनम बहन जे तो है आज के कृषि समाचार, और अब बात करते हैं कल यानी कि 18 सितंबर को मौसम कैसे रहने की उम्मीद है। तो आसमान आंशिक रूप से बादल से घिरे रहने तथा कहीं कहीं हल्की वर्षा या गरज चमक की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता लगभग 90% रहने की उम्मीद है, और हवा सामान्य से मध्यम गति से चलने की संभावना है। पूनम बहन देखो, ये तो मौसम की बातचीत ही गई, अब आज मनोरंजन मकाले का।
3: अरे भैया प्यारो से लोकगीत लेके आए हैं अपने भैया बहनन के लिए,
2: तो आप सुनवा देते अपने भैया बहन को जो प्यारो सो लोकगीत।

0: के साथ साथ औषधीय फसलों की खेती जरूर करें।
1: इन्हीं सब बातों के साथ कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र
0: और अपनी बहन पूनम को दो अनुमति। भैया बहनों
1: राम राम।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान वाणी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पे। संध्या के 7 बजे हैं। अब सुनिएगा ग्राम जगत, प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: पूनम मैन, देखो आज मौसम में काफी परिवर्तन है।
2: हाँ भैया,
1: और जब मौसम में परिवर्तन होता है या कहूँ हमारे भैया बहनों को काम होता है तो थोड़ो सो ध्यान रखो जाता है।
2: हाँ भैया, वो तो रखो ही जाता है।
1: ध्यान काय को रखे है? जैसे मौसम गड़बड़ हो तो खेती बाड़ी में फसल है या घर के अन्य काम है उनको विशेष ध्यान दें, या जानवर के काम है उनको विशेष ध्यान दें। लेकिन इन पर हम एक बात जगाएंगे, जब बरसात को मौसम आता तो साथ में गंदगी

0: भी लगा।
1: हाँ वो तो लाते भैया, क्योंकि देखता हूँ आप कि हर जगह कीचड़ उचड़ से पाया देवे होता है, तब घर के अंदर जाओ तो घर में गंद भी जाता है।
0: इन सब चीजों को हमारे भैया बहन ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो साफ सफाई है उसको विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ।
0: आपने देखी जब घर के छोटे छोटे है तो जो घर के दादा दादी है वे घर के आगे सवेरे को 4 बजे उठ गए खुर्र खुर्र खड़े रहो से खड़ा करते,
1: हाँ।
0: यानी कि बेहू साफ सफाई को विशेष ध्यान रखते। तो हमारो कहने का मतलब पूनम बहन जय है कि जो हमारे भैया बहन है चाहे उनको घर हो खेत हो पशुशाला हो या घर के बाहर की जो रास्ता हो उन सब में साफ सफाई को विशेष ध्यान रखना।
1: हाँ भैया साफ सफाई को तो ध्यान रख ही है, और हमारे भैया बहन रखते होंगे क्योंकि वे समझदार इतने हैं आपको पतो है, लेकिन उसके संग संग कार्यक्रम में और भी जानकारी होती है भैया।
0: जानकारी पूनम बहन का है, देखो जब हमारे भैया बहन गांव में रह रहे हैं शिक्षा की भी बहुत जरूरत, और जब घर परिवार बच्चे सब पढ़े लिखे होंगे अपने विकास के साथ साथ समाज को विकास भी अच्छा हो जाता है।
1: हाँ
0: तो हम 6 संगत कार्यक्रम में हमने बातचीत करी एक सरकारी विद्यालय में जाके, सरकारी विद्यालय में बदलती शिक्षा, यानी कि अब शिक्षा वैसी वाली ना है। प्रधानाचार्य है सर्वेश कुमार, पूर्व माध्यमिक विद्यालय खड़ुआ से हमने बातचीत करी। वह अपने भैया को सुनवा दे रहा।
1: हाँ भैया सुनवा दे।
0: साथियों नमस्कार, आज 6 संगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम पहुंचे हैं कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय खड़ुआ में, और हमारे साथ हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी। अब वो इनसे जान लेते हैं, इनको परिचय इन्हीं की जुबानी, और जानते हैं कि विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं किस तरीका से जो विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र उनको दी जाती हैं। सर नमस्कार।
2: नमस्कार
0: सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या?
2: सर्वेश कुमार गंगवार।
0: कितने सालों से यहाँ इस विद्यालय में?
2: प्रमोशन होके मैं बेनीपुर चौधरी से आया था, मुझे 10 वर्ष हो गए इस विद्यालय में।
0: 10? हम देख रहे हैं विद्यालय में साफ सफाई काफी अच्छी है, काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और हम इस समय आए कि बच्चे जो है दोपहर का मध्याह्न भोजन ले रहे हैं इस समय। तो सबसे पहले मध्याह्न भोजन में बात करते हैं, आज का बालकों बना होगा
2: जो एक मीनू गवर्नमेंट से सेट हुआ है, ये NGO प्रोवाइड कराता है, पका पकाया भोजन आता है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें शायद कन्वर्जन कास्ट जाती है SMC अकाउंट में, और उस पैसे से सेक्रेटरी होते हैं प्रधानाध्यापक और उसके प्रेसिडेंट जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं उनके थ्रू खाना पकवाया जाता है, रसोईया रखा गया है।
0: ये जो खड़ुआ है वो नगर क्षेत्र में?
2: नगर क्षेत्र में लगता है
0: जी। विद्यालय में व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। अच्छा बात करें किस किस क्लास के बच्चे हैं इस विद्यालय?
2: कंपोजिट विद्यालय है, इस कैंपस में 2-3 विद्यालय हुआ करते थे, खड़ुआ कन्या पाठशाला करके जो लड़कियों का था 6 से 8 का, वो भी कंपोजिट हो गया है, और ये प्राथमिक विद्यालय खड़ुआ द्वितीय के नाम से था, तो फर्स्ट के साथ मर्ज कर दिया गया शासन के द्वारा, सेकंड के साथ मर्ज कर दिया गया, इस तरह से ये कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय हो गया है।
0: कितने शिक्षक हैं आप
2: विद्यालय में तैनात? 1 शिक्षा मित्र हैं, 1 सहायक हैं, 1 मैं हूँ, हम 3 लोग हैं।
0: 3 लोग हैं, 1 से 8 तक के बच्चे हैं
2: जी,
0: यानी 8 क्लास
2: जी। जो मेरे सहायक हैं श्री अंकुश अग्रवाल जी, उनको पस्तौर विद्यालय है यहाँ इसी अगले वार्ड में CB गंज के पास लाइन क्रॉस करके, उनको वहाँ का चार्ज दे दिया है। तो हम 2 टीचर हैं और 3 विद्यालय चला रहे हैं।
0: 2 टीचर 3 विद्यालय चला रहे हैं, फिर भी आप अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बात करें शिक्षा की,
2: देखिए
0: शिक्षा को कैसे करें?
2: जैसे टॉयलेट है विद्यालय में, शिक्षक है ही नहीं, कौन साफ करेगा? झाड़ू लगाने वाला कोई 4th क्लास कर्मचारी है नहीं, कौन लगाएगा? बड़े अधिकारियों से प्रशासन से PM मोदी जी हैं, उनको विगत वर्षों में मैंने सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए देखा
0: जी,
2: तो मुझे प्रेरणा मिली। तो अभी जब आप आ रहे थे तो मैं शौचालय पाइप से स्वयं साफ कर रहा था, मेरे कपड़े भी भीग गए। सफाई में स्वयं करता हूँ, वाइपर लगा देता हूँ, झाड़ू भी लगा देता हूँ। हाँ चूंकि कैंपस बहुत बड़ा है ये, हम अपनी बेटियों का सहारा ले लेते हैं, जो बच्चियां हमारी हैं झाड़ू लगाने में हमारी मदद कर देती हैं, बच्चे हैं हमारे, बच्चे भी हमारे साथ हमारी मदद कर देते हैं, जैसे कोई टंकी खोल देगा चला देगा, कोई वाइपर लगा देगा तो हम झाड़ू लगा, हम बच्चे इस तरह से जैसे माता पिता के साथ बच्चे घर में रहते हैं और हर काम की जिम्मेदारी हमारी होती है उसी प्रकार से करते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए क्योंकि विद्यालय है, बच्चों को भी उतना ही जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। दूसरा कोई आदमी सफाई करने आएगा नहीं,
2: 1 से 8
0: तो कितनी क्लासे लगाते हैं, कैसे कैसे?
2: देखिए बहु कक्षा शिक्षक प्रणाली अपनाते हैं, हमने इको क्लब के अंतर्गत कार्य किया है विद्यालय को हरित विद्यालय घोषित कराने के लिए और स्वच्छ विद्यालय घोषित कराने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के लिए हम क्रियान्वित कर रहे हैं। दूसरे जो पढ़ाई का सिस्टम हमने बनाया है, जैसे कक्षा 1 के बच्चे हैं तो 1 और 2 के बच्चे हम 1 क्लास में बैठा देते हैं
0: जी,
2: हमारी शिक्षा मित्र उनको देखते हैं। कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चे जो हैं
0: जी,
2: वो अंकुश अग्रवाल जी को बिठाते हैं।

0: वो देखते हैं।
1: जी जी
0: कक्षा 6, 7, 8 में स्वयं देखता हूँ।
1: 3 कैटेगरी में विद्यालय को बांट दिया। बात करें शिक्षा की, आज से अगर 20 साल पहले की शिक्षा देखें और आज की शिक्षा में कितना परिवर्तन हुआ, आपने काफी अनुभव है।
0: गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। एक्चुअली क्या है, कुछ हम लोगों का भी दोष है।
1: जी
0: मैं मानता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का हिरास नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है।
1: जी।
0: मुझे 35 साल हो गई नौकरी करते हुए। 3 साल तक इस विद्यालय में बच्चे सुबह आ जाना और शाम को वापस हो जाना, एक भी टीचर नहीं था। रिकॉर्ड है, अभिलेख है मेरे पास। उस समय मैं यहाँ पर प्राइमरी का हेड था। जब विद्यालय कंपोजिट हुआ भी मेरे चार्ज में आया, मैंने उसको बहु कक्षा शिक्षक प्रणाली अपना दी, मॉनिटर्स बना दिए, शिक्षा समिति के साथ साथ छात्रों की समिति बना दी। जैसे SIR में 4 महीने काम चला, लेकिन पढ़ाई का हिरासत नहीं होने दिया,
1: पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया। क्योंकि मेन चीज है, बहुत जरूरी है शिक्षा।
0: कि यदि इन बच्चों के साथ हमने कटौती कर दी,
1: जी
0: बहुत बहुत बड़े रिचेस्ट लोग जिनके पास पैसे का उनको स्वयं पता नहीं है कि 1,000 करोड़ रुपया उनके पास है, लेकिन मैंने परेशान देखा है
1: जी।
0: जो लोग नैतिकता से और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, ईश्वर उनसे विमुख हो जाता है। और जिस व्यक्ति से ईश्वर विमुख हो जाता है, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, सुख जी नहीं सकता।
1: यानी कि हमें,
0: मेरा मानना है,
1: यानी कि हमारे जो कर्तव्य हैं
0: जी,
1: जो हमें जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें काम करना
0: जी।
1: अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और पूछना चाहूंगा कि सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं इनके अलावा बच्चों को मिल रही है।
0: सरकार ने बहुत सुविधाएं दी हैं। मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सरकार ने फर्नीचर अवेलेबल करा दिया, गवर्नमेंट ने सारे स्कूल हरे भरे करा दिए, वृक्षारोपण करा दिया, बाउंड्री बनवा दी, टाइल्स लगवा दी। जिन विद्यालयों में गाय भैंस पलती थी, लोग बांध देते थे खूंटे गाड़ के, वहां आज कुछ नहीं। आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास टॉयलेटिंग है। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी प्रत्येक विद्यालय में, मेरे विद्यालय में कनेक्शन है, प्रॉपर लाइट आती है। हमारे जीवन का जो मूल अस्तित्व है, वो इस स्कूल की और इन बच्चों की वजह से है।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में, विद्यालय के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, अभी आपने क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता के अंतर्गत सुनी जानकारी, सरकारी विद्यालयों में बदलती शिक्षा। प्रधानाचार्य थे सर्वेश कुमार और उनसे बातचीत की थी भैया सुरेंद्र ने।
1: गुरु महेंद्र को बहुत से भैया बहन ने हमें अपने सोशल मीडिया पे जो कमेंट करे लोकगीत सुनने के लिए, तो आओ जो प्यारो सो लोकगीत सुनवा देते हैं,

0: भैया बहनों, जय लोकगीत के साथ अब कार्यक्रम ग्राम जगत से अपनी बहन पूनम
1: और अपने भैया सुरेंद्र को दे अनुमति। भैया बहनों,
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं सुनते हैं रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना। स्वास्थ्य संबंधी विषय पे होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शनिवार दिनांक 19 सितंबर 2026 को सायंक 7:31 पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे शुक्रवार दिनांक 18 सितंबर 2026 को सायंक 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-7200 नंबर एक बार और नोट कर लें, 0581-251-7200 पे फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे।

विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है, क्या करें जब जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु ना रोए, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, शुक्रवार दिनांक 18 सितंबर 2026 को सायं 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-251-7200। नंबर एक बार और नोट कर लें, 0581-251-7200। सूचना समाप्त हुई।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।
1: ये तो बहुत बढ़िया है। तो सुबह कितने बजे दुकान खोल देते हैं?
2: 7 बजे।
1: 7 बजे खुल जाती है और रात में कितने बजे तक?
2: 9 बजे तक।
1: 9 बजे तक रहती है। और बड़ा लंबा आप जो है ड्यूटी करते हैं
2: जी। अब वो तो अपना काम है।
1: अपना काम है। हाँ हाँ ये तो है ही है। कितने साल से कर रहे हैं दुकान?
2: 4-5 साल हो गए।
1: 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा, ये जो गाना आपने सुनने की फरमाइश की है, किसको सुनवाना चाहते हैं?
2: दोस्तों के लिए सुनवाना चाहते हैं।
1: दोस्तों के लिए है? चलिए तो ठीक है, समाचार के बाद आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मैं ये गाना आपका जो है प्ले करूंगा। ठीक है
2: जी सर।
1: 1 मिनट का समय बचा, उसके बाद समाचार आएंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
2: नमस्ते
1: जी। नमस्कार। नमस्कार जी। 7:19 का समय हो चुका है यहाँ पर और अब होंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद लौट कर आएंगे तो हमारे धर्मेंद्र साहब का मां कसम गाना सुनवाऊंगा। वक्त बदला, दौर बदले, और जो नहीं बदला वो है आपका सच्चा साथी।
3: 26 सालों से आपके साथ 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।

0: जब दिन भर की थकन शामों से गुजर जाती है।
1: जब दुनिया नींद की आगोश में आ जाती है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रज्वलित किया आशीर्वाद का दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर जाने वाली सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 250 बाइकों पर सवार 500 युवा इस यात्रा को पूरा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह यात्रा ऊर्जा से भरपूर होकर सकारात्मक भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, विरासत और विकास, सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ बढ़कर अपनी छाप छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज देश क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई मिशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
3: आज भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तमाम यूनिट भारत के अंदर स्थापित करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ किया है। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। भारत का एआई मिशन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। रोबोटिक के क्षेत्र में भारत की सफलता नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
2: कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीक को आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीवन आसान बना

0: बनाना ही प्रधानमंत्री का विजन है।
1: कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि हर नागरिक तक बैंक की सुविधा पहुंचेगी, लेकिन यह करिश्मा भी भारत में पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। यूपीआई से लेन देन यह हो सकता है, इसकी भी किसी ने कल्पना नहीं। अब एक सेकंड में यूपीआई के माध्यम से आप यहां से चाहें दूसरे स्थान पर पैसा भेजना सहज तरीके से भेज सकते। साथियों, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को बड़े शहरों और दफ्तरों से निकालकर आज आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का काम किया है।
0: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में हर दिशा में अपनी सोच को स्थापित किया है और आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आज शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों, लाभार्थियों ने भी घरों, प्रतिष्ठानों और विभिन्न सार्वजनिक

0: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने सेवा सुशासन पखवाड़े की शुरुआत की। इसी क्रम में आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि श्री मोदी का 25 वर्ष का राजनीतिक सफर देश के विकास और सुशासन से जुड़ा रहा है।
1: ये 25 वर्ष बहुत विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हुए हैं। जन कल्याण की अनेकों योजनाएं लागू हुई, हम लोगों के जीवन में बदलाव आया है। जिस व्यक्ति के कामों से, विकास कार्यों से देश दुनिया में फर्क पड़ा हो, हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो कृतज्ञता पूर्वक हम उनको आभार प्रकट करते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं 3 तलाक कानून के बारे में।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन में बड़े बदलाव ला दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये कानून भारत के संविधान के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देता है।
3: भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया।
2: आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही 3 तलाक के मामलों में 82% की गिरावट दर्ज की गई। मुस्लिम मामलों के विशेषज्ञ रजा रिजवी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून के जरिए मुस्लिम समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास से जोड़ा है।
4: ये कानून केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को विकास से जोड़ा।
2: 3 तलाक कानून का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये मुस्लिम महिलाओं को सम्मानजनक जीवन और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शिल्पकारों, कारीगरों सहित समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जो देश शिल्पकारों और कारीगरों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है। गोरखपुर के श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में आयोजित श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन से उत्तर प्रदेश में आज 3 करोड़ से अधिक लोग कारीगरी, शिल्प से जुड़कर रोजगार और स्वावलंबन की

राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। वहीं लखनऊ में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के अंतर्गत विश्वकर्मा स्वरोजगार और स्वदेशी मेला 2026 पर आधारित प्रदर्शनी और मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी वितरित किए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने आज महोबा में ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर निर्वाचन तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का एक प्रमुख उद्देश्य आगामी चुनाव के मतदान दिवस पर मशीनों में होने वाली खराबी की संभावना को कम से कम करना है, ताकि मतदान के समय मतदाताओं को मशीनों की तकनीकी खराबी के चलते इंतजार या परेशानी का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी लखनऊ की वरिष्ठ समाचार वाचक मीना इरफान का कल देर शाम लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 60 वर्षीय थीं। उर्दू अखबारों के साथ वह दूरदर्शन लखनऊ में भी बतौर न्यूज राइटर कार्यरत थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू हुआ सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रज्वलित किया आशीर्वाद का दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मार्जिन मनी ऋण पोर्टल का किया शुभारंभ। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किए चेक। और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने महोबा में ईवीएम वेयर हाउस और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: सौ दशमलव चार एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य संबंधी विषयों पे आधारित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है माइग्रेन एवं सिर दर्द की समस्या और उसका आधुनिक इलाज, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
2: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
3: 9837000048।
5: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमेशा की तरह आज भी बहुत कुछ खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे माइग्रेन एवं सिर दर्द की। जी हाँ, क्या आधुनिक इलाज है, किस तरह के इलाज की व्यवस्था आज उपलब्ध है, ये सब जानेंगे। स्टूडियो में मौजूद दीपमाला अस्पताल बरेली के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो।
6: थैंक यू सो मच। पहले तो सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार जी। मैं डॉक्टर विकास बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरा ऑलरेडी सर ने बता ही चुके हैं आपको, दीपमाला हॉस्पिटल से हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द और स्पेशली माइग्रेन।
5: डॉक्टर साहब, अगर हम सरदर्द के विषय में जानना चाहें तो ये बहुत बड़ी टर्म हो सकती है।

0: है, क्योंकि सरदर्द तो किसी को भी हो सकता है, बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष कोई नहीं देखता, सरदर्द अगर होना है तो हो जाएगा।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: सरदर्द की जो वजह होती है, साधारण वजह अगर सबसे पहले हम जानना चाहें तो क्या होती है?
1: अगर सरदर्द की बात की जाए तो सरदर्द तो जल्दी अगर बोला जाए तो सबसे बड़ी बीमारी आजकल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सरदर्द है, हर
0: जी
1: किसी को सरदर्द हो रहा है। अगर कॉमन चीज़ों की बात की जाए तो एक नॉर्मल जिसको ज़्यादा बीपी है उसको भी सरदर्द हो जा रहा है,
0: जी
1: बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें कभी कभी चश्मा लग जा रहा है जिसके बोलते हैं आँख में थोड़ा सा पावर बढ़ गया, रिफ्रैक्टरी एरर की वजह से भी सरदर्द होता है, डायबिटीज़ में भी हो जा रहा है, किसी को ब्रेन में पानी बढ़ जा रहा है उसकी वजह से हो जा रहा है, न्यूरो से रिलेटेड हो जा रहा है कि अगर दिमाग में कुछ कोई ट्यूमर हो गया या कुछ दिमाग में कभी कभी होता है हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं वो बढ़ गया, या फिर ओल्ड एज में भी कभी कभी एनपीएच बोलते हैं, तो उन सब बीमारियों में भी सरदर्द हो सकता है।
0: जी जी
1: और एक बहुत कॉमन है जो आजकल यंग में भी हो जा रहा है जैसे जिसको माइग्रेन भी बोलते हैं, एक टेंशन टाइप भी होता है सरदर्द को, और बेसिकली डिवाइड अगर हम डिवाइड करें सरदर्द में तो कॉमन हो जाता है एक टेंशन टाइप हेडेक हो जाता है, एक
0: जी
1: माइग्रेन हो जाता है, कुछ क्लस्टर टाइप हो जाते हैं, तो ये बेसिक डिवीजन है
0: जी
1: सरदर्द
0: जी
1: का।
0: सरदर्द की तो इतनी बड़ी शिद्दत है, मैं तो ये कहूंगा इसे मुहावरों में ही इस्तेमाल किया जाता है।
1: जरूर
0: लोग
1: जरूर
0: कहते हैं कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए सरदर्द है,
1: सही कह
0: तो
1: रहे
0: ये
1: हैं।
0: तो बड़ी साधारण सी टर्म बन के रह गया है, लेकिन सरदर्द वाकई में सरदर्द होता है, एक खास तरह की समस्या है और इस समस्या का समाधान भी जरूरी है। आपने कहा डॉक्टर साहब कि माइग्रेन एक अलग तरीके की समस्या है, ये भी सरदर्द से रिलेटेड है। माइग्रेन के विषय में बताइएगा, क्योंकि ये तय कर पाना कि जो सर में दर्द हो रहा है वो साधारण सरदर्द है या फिर माइग्रेन तो नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है, एक डॉक्टर ही कर पाता है।
1: जी बिल्कुल। माइग्रेन के लिए वैसे अगर हम देखें तो कोई ऐसी कोई अलग से कोई जांच नहीं आ गई है जैसे और बीमारियों में होते हैं, एमआरआई करा लो सीटी करा लो,
0: जी
1: तो इस तरह की कोई ऐसी जांच नहीं है कि इसको हम देखें और बोल दें माइग्रेन है।
0: अच्छा
1: तो माइग्रेन के अपने कुछ लक्षण होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं या सोच मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि इसको माइग्रेन हो सकता है।
0: जी
1: तो जैसे कि हो गया कि ज़्यादातर माइग्रेन होता है कि मैक्सिमम टाइम में कि एक साइड सर में होता है, एक ही हिस्से में दर्द हो रहा
0: अच्छा
1: होता है,
0: दाहिने या बाएं?
1: हाँ किसी भी साइड, एक हो सकता है दोनों साइड भी, पूरे सर में भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम में
0: जी
1: एक ही साइड होता है।
0: अच्छा
1: कभी कभी होता है सरदर्द के साथ उसमें क्या होता है मितली भी आती है, जी मिचलाना हो जाता है,
0: अच्छा
1: उल्टी भी आती है माइग्रेन वाले सरदर्द में, और एक हम टर्म यूज करते हैं अपने मेडिकल लैंग्वेज में ऑरा, मतलब कि कुछ पहले से ही लक्षण आ जाते हैं।
0: अच्छा
1: एक सरदर्द होता है सरदर्द होने से पहले कुछ लक्षण है और सरदर्द होने के या किसी में लक्षण नहीं आते, इसको बोलते हैं विद ऑरा और विदाउट ऑरा। ऑरा मतलब हो गया कि जैसे सरदर्द होने वाला माइग्रेन का अटैक आने वाला होता है जिसको हम बोलते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे पहले कभी आंखों में कोई फ्लैश लाइट्स आ रही है या कुछ जिग जैग सी रोशनी आने लगी है, तो इस तरह की चीजें एकदम से आंखों के सामने आती है, उसके बाद सरदर्द होता है।
0: जी। कई
1: तो
0: बार आप डॉक्टर लोग ये भी पूछते हैं कि सुबह में होता है, उगते सूरज के साथ होता है या फिर ढलते सूरज के साथ होता है, तो ये भी क्या एक प्रकार है माइग्रेन का?
1: जी जनरली ये होता है कि कभी कभी ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है तो लेटने पे प्रेशर कम हो जाता है, तो उस चीज़ों से हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से टाइप का सरदर्द हो रहा है, हम उसको
0: अच्छा
1: डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखते हैं कि सुबह हो रहा है कि शाम को ज़्यादा हो रहा है कि
0: जी
1: दिन में काम करते समय हो जा रहा है, तो वो उससे हमें आइडिया लग जाता है, स्ट्रेस के थ्रू वजह से तो नहीं है या ब्रेन में कुछ और कारण तो नहीं है। सुबह हो रहा होता तो आदमी रात भर लेटा रहता है तो सरदर्द ब्रेन रिलैक्स होता है, तो उस कंडीशन में होता है तो हमें उसके डायग्नोसिस अलग हो जाती है।
0: अच्छा, ये पहचानने के लिए ज़रूरी है
1: हाँ
0: और लक्षणों से ही आप लोग
1: लक्षणों से
0: पहचान
1: हम
0: करते हैं।
1: पहचानते हैं।
0: जी। डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर हम वजह जानना चाहें, ये तो लक्षण हो गए, तो वजह क्या होती है सिरदर्द की? आपने वजह बता दी, आपने ये भी कहा कि ये डायबिटीज़ के मरीजों को भी हो सकता है, इसके अलावा जो दिमाग में ट्यूमर होते हैं उनके वजह से भी हो सकता है, लेकिन माइग्रेन के पीछे क्या वजह मानते हैं?
1: माइग्रेन जल्दी अब लोग सोचते हैं कि एक साधारण सा सरदर्द है, तो माइग्रेन एक साधारण सा सरदर्द नहीं है,
0: जी
1: इसमें ब्रेन के न्यूरोनल जिसको बोलते हैं ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेन के अंदर जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं,
0: अच्छा
1: तो ये नॉर्मल सरदर्द नहीं है।
0: जी, एक श्रोता लाइन पर आ गए हैं सीवी, जिनकी समस्या सुन लेते हैं। रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: मेरा नाम सौरभ शर्मा, नगर पंचायत कुमार गांव से बात कर रहा हूँ।
0: कुमार गांव से सौरभ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: ऐसे चक्कर आना, सिर में दर्द होना, फिर
0: चक्कर आना, सिर में दर्द होना। अगली डॉक्टर विकास गुप्ता की आवाज, और आप बताएं अपना प्रश्न डॉक्टर साहब, इनसे जानिएगा क्या समस्या है, क्या समाधान कर सकते हैं हम लोग।
1: सौरभ जी नमस्कार जी, आप एक बार दोबारा से बता पाएंगे आपको क्या दिक्कत है और क्या चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं?
2: जैसे सिर में दर्द होता है, बार बार सिर में दर्द होता है।
1: तो आप कभी एक बार अपनी उम्र और या एज हमें बता पाएंगे कितनी है?
2: ढाई साल है।
1: अच्छा, तो एक साइड ही सर दर्द होता है आपको?
2: हाँ जी, सिर में।
1: आधे सर में।

0: होता है। अब इसके साथ ये सर दर्द होने से पहले कुछ आपको महसूस होता है कि भी आंखों के सामने लाइट आ गई या कुछ हो रहा है, या सर दर्द के साथ जी में चलाना या उल्टी जैसा तो नहीं लगता है?
1: ऐसा कुछ नहीं होता।
0: तो अब ये जैसे जनरली एक साइड जो होता है वो कभी कभी माइग्रेन भी हो सकता है, तो माइग्रेन के लिए फिर हमें कोई कई चीजें देखनी पड़ती हैं। आप काम क्या कर रहे हैं, आप सो कितना रहे हैं, सोने की नींद पूरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, या आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है आपके काम की वजह से, जॉब की वजह से, तो इन सब वजहों से भी हो सकता है। तो अगर आपको बार बार हो रहा है, महीने में कई बार हो जा रहा है, तो एक बार डॉक्टर का परामर्श जरूर लें।
2: जी सौरभ जी, आप परामर्श लेंगे तो निश्चित ही आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका सर दर्द समाप्त हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आधे सिर की बात इन्होंने की, क्योंकि प्रचलित भाषा में आधा शीशी का दर्द भी कहा जाता है, तो क्या ये माइग्रेन ही होता है या कुछ और?
0: अब जनरली माइग्रेन में भी आधा दर्द होता है, आधे सर में होता
2: इसीलिए
0: है,
2: उसे आधा शीशी
0: आधा
2: कहते
0: सीसी
2: हैं।
0: बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा 90% केसेस माइग्रेन में एक ही साइड की ही कंप्लेन होती है, मतलब एक तरफ के ही दर्द की बात कर रहा होता है, दोनों तरफ बहुत कम लोगों में होता है,
2: जी
0: तो उसको आधा सीसी बोलते हैं जब माइग्रेन के साथ ही होता है। बट उसके साथ माइग्रेन में हमें ये भी देखना होता है कि काम क्या कर रहा है। जनरली माइग्रेन के कुछ कारण भी होते हैं
2: जी
0: जिनकी हम
2: बिल्कुल
0: बात करें, जो हम बात करते हैं,
2: जी,
0: जैसे कभी किसी जॉब में है आदमी, कोई स्ट्रेस है,
2: तनाव की वजह से
0: तनाव की वजह से भी माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है।
2: जी
0: नींद ना पूरी हो पाना एक ये बहुत बड़ा कारण होता है कि माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी खाने की वजह से हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने ड्यूटी के टाइम में खाना नहीं खा पा रहे हैं, लंबा मील के बीच में दूरी हो, एक दो खाने के बीच में लंबा गैप हो जा रहा है,
2: अच्छा ये भी वजह
0: ये
2: होती
0: भी
2: है।
0: वजह हो सकती है।
2: अच्छा
0: तो इन सब वजहों के कारण भी माइग्रेन हो सकता है।
2: अच्छा
0: और
2: अच्छा
0: माइग्रेन वाले पेशेंट में अक्सर होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है तो उसमें भी उसको एकदम से अटैक शुरू हो जाता है माइग्रेन का।
2: अच्छा
0: कभी कभी बहुत साउंड, जब तेज़ आवाज़ हो रही होती कहीं,
2: तब
0: तो
2: भी
0: उससे
2: दर्द
0: भी
2: होता है
0: माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है। तो ये
2: जी
0: सब कुछ लक्षण हैं और जिनको हमें देखना और नोटिस करना होता है कि इन वजहों से तो नहीं है।
2: जी अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन का दर्द जब होता है तो ये कहते हैं कि असहनीय दर्द होता है
0: जी, बहुत सीवियर हो जाता
2: जी,
0: है फिर।
2: बहुत ज्यादा सीवियर
0: जी
2: होता
0: जी
2: है, तो ये सीवियरिटी किस वजह से होती है? क्या हल्का दर्द भी माइग्रेन होता है या फिर जो बहुत तेज दर्द हो रहा है वही
0: नहीं,
2: माइग्रेन है?
0: दोनों ही हो सकते हैं। हल्का दर्द भी होता है किसी किसी को, कभी कभी अटैक पड़ता है तो बहुत सीवियर भी हो जाता है।
2: अच्छा,
0: हाँ, तो ये नहीं कह सकते हैं कि सीवियर मतलब हल्के या तेज की वजह से हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते माइग्रेन है या नहीं है। दोनों कंडीशन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
2: जी ये सिर्फ लक्षणों के बाद ही आप जान पाते हैं कि कौन सा माइग्रेन है, किसी भी तरह की जांच आपने कहा नहीं होती है जो कि ये बता पाए?
0: हाँ, बट हमें जांचें करानी होती है कि हमें ये देखने के लिए कि और कुछ बीमारी की वजह से तो सरदर्द नहीं है।
2: जी
0: जैसे कभी कभी स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, 10th 12th क्लास में होते हैं, तो जनरली हम उनसे कहते हैं एक बार आई टेस्ट करा लो, अपना
2: अच्छा
0: पावर चेक करा लो, जबकि जो कि बहुत कॉमन सी चीज़ है
2: जी
0: जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं तो उनमें ज़्यादातर पावर की वजह से भी सर दर्द हो रहा होता है,
2: जी
0: तो वो टेस्ट करा लेते हैं। कभी कभी ओल्ड एज होता है, 50-60 साल के बाद आ रहा है किसी को, तो उसमें सीटी स्कैन भी करा लेते हैं कि कुछ और कारण तो नहीं है,
2: कोई और कॉम्प्लिकेशन तो
0: और
2: नहीं
0: कुछ
2: है।
0: नहीं है, तो वो चीज़ों को हम रूल आउट करते, पहले हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं किसी और वजह से तो नहीं है।
2: जी,
0: जब कोई कारण हमें ऐसा नहीं मिलता है ब्रेन में, फिर हम उसके बाद लक्षण से इवेलुएट मतलब उसको हम देखते हैं कि क्या है, उस बेसिस पे फिर हम डायग्नोसिस मतलब उसके एक बनाते हैं।
2: जी फिलहाल तो कोई ऐसी स्पेसिफिक जांच नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि जो सरदर्द है वो माइग्रेन है या नहीं, लक्षण ही मुख्य होते
0: मुख्य
2: हैं।
0: होते हैं लक्षण
2: जी
0: के हिसाब से ही उसका करते हैं हम।
2: जी जी डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि मुहावरे भी कहे जाते हैं, तो इलाज के विषय में भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से। आप हमारे श्रोताओं को बताइएगा कि जो सरदर्द है उसका इलाज किस किस तरह से होता है, कौन कौन सी परिस्थितियों में?
0: मैं अब इलाज की अगर बात करूं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि लोगों में ज़्यादातर एक मिसकंसेप्शन है कि माइग्रेन है को एक सिंपल सा सर दर्द है तो ठीक हो जाता है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है। माइग्रेन में हमारा ब्रेन के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं,
2: जी
0: थोड़े से ब्रेन के केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से होता है, तो ये नॉर्मल सिर दर्द से अलग होता है।
2: अच्छा
0: दूसरी चीज़, लोग ये सोचते हैं कि बच्चों में नहीं हो सकता है, तो माइग्रेन बच्चों में भी हो सकता है।
2: अच्छा
0: तो ये कुछ चीज़ें हैं। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि पेन किलर खा लेते हैं माइग्रेन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी पेन किलर खाने से भी सर दर्द हो जाता है।
2: यानी
0: हमारे
2: दर्द
0: एक
2: की दवा खाने से
0: सिर
2: सरदर्द
0: दर्द,
2: हो जाता?
0: यस, हमारे एक मेडिकल में एक हम लोग एक बोलते हैं ओवर यूज सर दर्द जिसको बोलते हैं
2: जी
0: पेन,
2: जी
0: तो कभी कभी दवाइयाँ, दर्द की दवाइयाँ आदमी इतना ले लेता है कि उन दवाइयों की वजह से भी दर्द सर दर्द हो रहा होता है।
2: बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये।
0: तो अगर हम इनकी बात करें मैनेजमेंट के लिए, तो अब किसी को अटैक पड़ रहा है माइग्रेन, अगर स्पेशली माइग्रेन अटैक की बात करें, तो अगर किसी को काम करते समय या किसी उसमें अगर बहुत तेज सडन अटैक हो गया है,
2: जी
0: तो उसका सबसे पहला है कि कोई भी जो भी पेन किलर है आप पेन किलर लें, अपने आप को रेस्ट पोजीशन में ले जाएं। अगर लाइट ज़्यादा है तो कोशिश करें कि हम किसी डार्क रूम में जहाँ लाइट बंद कर दें
2: जी
0: और एक शांत बात।

0: जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं हो, तो ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करें, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है जिन पेशेंट को माइग्रेन का अटैक हुआ होता है।
1: अच्छा,
0: तो ये बेसिक चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ होगी जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले लक्षणों की बात कर रहे थे,
1: जी
0: खाने पीने की चीज़ों की वजह से होता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना होता है।
1: बिल्कुल
0: अगर हम ट्रीटमेंट की अब बात करें तो उसके कई दवाइयाँ हैं, कई रे हमारे कैटेगरीज हैं। तो सिंपल पहले हम पेन किलर से देखते हैं, उससे नहीं ठीक हो रहा है तो उसमें और जो स्पेसिफिक दवाइयाँ
1: जी
0: हैं पेन किलर के अलावा हैं कुछ, फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, फिर एक ट्रीटमेंट सीधे उसी जगह पर काम करना जहाँ पर हो रहा होता है।
1: जी
0: फिर कुछ अब ऐसी एडवांस ट्रीटमेंट भी आ गए हैं जो ना कि दवाइयों के बगैर, जिसको बोलते हैं उसमें मैग्नेटिक स्टिमुलेशन बोलते हैं ब्रेन की, बैगल नर्व स्टिमुलेशन जिसकी बात करते हैं, थोड़ा हाई ट्रीटमेंट हो गया जिसमें हम ब्रेन की कुछ कोशिकाएं नर्व्स होती हैं जिनको बोलते हैं, उनको हम सीधे थोड़ा सा करंट देते हैं जिसकी वजह से ब्रेन के चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी
1: अच्छा
0: दर्द कम हो जाता है,
1: जी, यानी वो चेंजेस ठीक हो जाते हैं और माइग्रेन का दर्द
0: ठीक हो जाता
1: ठीक
0: है।
1: हो जाता है
0: हाँ, तो ये कुछ
1: जी।
0: कुछ एडवांसमेंट आई है बहुत से ज़्यादा ट्रीटमेंट में अभी माइग्रेन के।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब, आजकल स्क्रीन टाइम बहुत महत्वपूर्ण बात है, मोबाइल की स्क्रीन हो या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन। और अब तो हालात ये हैं डॉक्टर साहब कि अगर बच्चा रो रहा होता है तो कई बार माता पिता ही उस बच्चे को उस समय मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा चुप जाता है। थोड़े दिन बाद वही स्क्रीन टाइम की आदत हो जाती है बच्चे को और वो फिर बड़ी समस्या को जन्म देता है। क्या वो भी इसके पीछे वजह हो सकती
0: हाँ
1: है?
0: जरूर, क्यों, जितना ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम होगा उतना ज़्यादा हमारे आँखों पे एक कंटिन्यूस लाइट पड़ रही होती है
1: जी
0: जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को सिग्नल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उस वजह से भी हमारे स्ट्रेस होता है। आँखें खुली हैं उसमें बहुत सी फिजियोलॉजी है कि आँखों की रोशनी, पुतलियाँ बड़ी हैं उसकी वजह से फिर मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है उसकी वजह से भी सर दर्द शुरू हो जाता है।
1: जी
0: तो स्क्रीन टाइम एक, अब इस समय अगर बोला जाए स्क्रीन टाइम तो एक बहुत ही बड़ी बीमारी होने वाली है।
1: बिल्कुल
0: तो इतना बढ़ गया है उसकी वजह से सरदर्द भी हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं बच्चों में, तो छोटे छोटे बच्चों में धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट भी कम हो जा रहा है उसकी वजह से, मेमोरी भी कम हो रही है,
1: जी,
0: तो ये बहुत बड़ा रीज़न है एक।
1: तो बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है और मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल उतना ही करें जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
0: ज़्यादा
1: है,
0: जरूरी है
1: क्योंकि अति तो सर्वत्र वर्जिते,
0: बचते।
1: वो तो समस्या की वजह बनती है। डॉक्टर साहब, सरदर्द की चूंकि हम बात कर रहे हैं, माइग्रेन उनमें से एक होता है, सरदर्द की आपने कई वजह बताई, तो सरदर्द के विषय में बताइएगा, अगर सामान्य सरदर्द है माइग्रेन के अलावा तो उसको पहचानने के लिए क्या कोई विशेष तरह की जांचें आप लोग कराते हैं?
0: हाँ जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, हम पहले देखना होता सरदर्द है किस वजह से, तो हम नॉर्मल मतलब वाइटल्स वगैरह इसको बोलते हैं, बीपी पल्स वगैरह चेक करते हैं उनकी वजह से देख लें, कोई किसी को कोई बीपी वगैरह बड़ा तो नहीं रह रहा उस वजह से हो सकता है,
1: जी
0: या फिर हो सकता है कि कुछ ब्रेन में हो, तो फिर हम ब्रेन से रिलेटेड पहले आंखों का जैसे हम टेस्ट करते हैं, चश्मे का नंबर सीधे सिंपल पावर चेक कराते हैं,
1: जी जी
0: तो ये सारे टेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि सरदर्द किस वजह से है।
1: अच्छा, इसके अलावा क्या जांचें होती हैं डॉक्टर साहब?
0: अब इसके अलावा बात की जाए तो बस यही जाँचें हैं ब्रेन, पहले तो हम जनरल देख लेते हैं कि कुछ, और कोई खून की टेस्ट भी करा लेते हैं कहीं उनकी वजह से तो भी नहीं हो रहा है, तो ये सब
1: अच्छा
0: चीज़ें देखते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सर दर्द हो रहा है, किसी में कम शुगर हो जा रहा है उसकी वजह से भी सर दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें हम एक बार रूल आउट मतलब देखते हैं, रूल आउट करते हैं कि मरीज को पहले से कोई बीमारी तो नहीं है,
1: जी जी
0: उस
1: जी
0: बेसिस पे हम देखते हैं।
1: जी अच्छा, ये तो बात रही जांचों की। साधारण सिरदर्द में आपने ये भी कहा था कि कई बार दिमाग में ट्यूमर होता है
0: जी
1: तो वो भी सरदर्द की वजह होता है, और ट्यूमर तो एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही मन में अजीब सी घबराहट होने लगती है।
0: जी बेसिकली लोग अवॉइड करते हैं कभी कभी, किसी जो मेरे पास कई ऐसे मरीज आए हैं जिनको दो दो तीन तीन साल से सर दर्द था जो ठीक नहीं हो रहा था, उसके बाद उनको और दिक्कतें बढ़ी, कहीं कमजोरी आना शुरू हो गया या बोलने में दिक्कत होने लगी, फिर वो आते हैं, तो उन केसेस में हम MRI या CT स्कैन करते हैं तो हमें उसमें पता लगता है कि इनके ब्रेन में ट्यूमर है।
1: ट्यूमर है
0: तो ये चीज़ें हैं, अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ लंबे समय से हो रहा है, आपको बार बार सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं सर दर्द के साथ, तो एक बार जरूर अपने डॉक्टर से परामर्श लें।
1: जी। अच्छा, क्या कभी ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं जबकि सिरदर्द की वजह से ऑपरेशन ब्रेन का करना पड़े?
0: हाँ वो वही उन कंडीशन में पड़ती है जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ट्यूमर की, कभी कभी ट्यूमर सरदर्द हो रहा है ट्यूमर की वजह से, कभी कभी
1: जी
0: ब्रेन में एक पानी बोलते हैं होता है CSF बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकेफलस हो गया या वेंट्रिकल डायलेटेड हो गया, उन कंडीशन में भी सरदर्द रहता है मरीजों को लगातार, तो उन
1: जी
0: कंडीशन में भी हमें एक सर्जरी करनी पड़ती है।
1: यानी ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, ये सरदर्द कोई सामान्य बात नहीं होती,
0: जी,
1: इसको सामान्य नहीं समझना
0: सामान
1: चाहिए।
0: नहीं समझना चाहिए, मुझे लगता है कि किसी को बहुत सर दर्द हो रहा है, बहुत तेज हुआ है,
1: जी
0: बात करें कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है या बार बार हो रहा है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर दर्द के साथ चक्कर आ रहे हैं,
1: जी
0: सर दर्द

0: साथ दौड़े आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के पास तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो जाके संपर्क करें।
1: यानी चक्कर भी आ सकते हैं डॉक्टर साहब, सर दर्द
0: जरूर
1: की
0: आ
1: वजह
0: जाते
1: से?
0: हैं, वो वही डिपेंड करता है ना कि ब्रेन में हमारे दिक्कत क्या है,
1: जी, दौरे चक्कर ये सब हो
0: सब सब
1: सकता
0: हो
1: है।
0: सकते हैं।
1: अच्छा, अगर हम बात करें आधी आबादी की, अपने समाज में जो महिलाएं हैं उनकी, तो महिलाओं को सरदर्द की कंप्लेंट ज्यादा ही होती है जैसा सुनने में आता है। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे?
0: महिलाओं में एक्चुअली माइग्रेन भी अगर महिलाओं में देखा जाए तो ज़्यादा होता है,
1: जी
0: तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो महिला और पुरुष में अलग अलग होते हैं, उनकी वजह से भी होता है। फिर कुछ होता है कि महिलाओं में स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही लेते हैं, तो वो सब कारण होते हैं जो जनरल हमारे होते हैं।
1: जी
0: दूसरी चीज़ है खान पान में हमारे उनके डिफरेंस रहता है, एक्टिविटी में डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से भी सर दर्द होता है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, सरदर्द की चूंकि बात कर रहे हैं, और कई बार लोग चाय पी के सरदर्द अपना भगा लेते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, तो कई लोग तरह तरह के नशा करने का भी अपने आप को आदी बना लेते हैं, और उन्हें ये भी कहते सुना जाता है कि साहब उनका सरदर्द इससे कम हो
0: हाँ,
1: जाता है।
0: वो अब ये इसको बोला जाए तो ये एडिक्शन हो गया है।
1: हाँ
0: अब इसमें ब्रेन को क्रेविंग हो जाती है, कुछ रिसेप्टर्स हमारे उन चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं,
1: जी
0: तो जो डेली की एक हैबिट होती है और वो नहीं मिलता है, तो आदमी वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है बॉडी को, हमें ये चाहिए, उस वजह से सर दर्द हो जाता है।
1: वो एक वजह होती है
0: वो एक
1: सरदर्द
0: वजह
1: की।
0: होती है, वो
1: जी
0: लेते हैं ठीक हो जाए। जैसे कैफीन का होता है, कैफीन का एक्सेस यूज की वजह से भी हो जाता है,
1: अच्छा
0: और कैफीन जो लोग ले रहे होते हैं अगर उस लिमिट से अगर किसी दिन कम ले रहे होते हैं, तो उनको सर
1: तब
0: दर्द
1: भी
0: शुरू हो
1: सरदर्द
0: जाता है
1: हो जाता
0: माइग्रेन।
1: है।
0: तो ये एक अलग पूरी प्रक्रिया है ब्रेन की हमारी,
1: जी,
0: तो जनरली खाना पीने की वजह से भी सर दर्द होता है।
1: अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए, जो लोग सरदर्द से परेशान रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता, सरदर्द रहता है उन्हें, इलाज भी नहीं लेते, उनको क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है आपका?
0: मैं पहले तो ये बोलूँगा एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।
1: जी
0: दूसरी चीज़ हो गई है कि सरदर्द के हम वजह देखने की देखना चाहिए कि हमारे कहीं जो इसमें हम जॉब में हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा तनाव तो नहीं है,
1: जी
0: हम नींद प्रॉपर ले रहे हैं, जिनको बचाओ की हम बात कर रहे हैं, मैं ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं कि इससे बचना कैसे है।
1: अच्छा
0: नींद प्रॉपर लेनी है हमें, जल्दी खाने के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: जो कभी कभी स्ट्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कैफीन का इंटेक नहीं लेना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट हो गया, कैफीनेटेड अब ड्रिंक्स आ गए हैं, तो उनके
1: चॉकलेट से भी होता है?
0: जी कॉफ़ी कैफीन का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा खान पान करते हैं उसकी वजह से वो होता है।
1: अच्छा
0: दूसरी चीज़ होगी प्रोसेस्ड फूड, जो डब्बा बंद खाना आने लगा है आजकल
1: जी
0: की जमाने
1: जी
0: से, उनकी वजह से भी माइग्रेन के अटैक होते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें,
1: जी
0: जिसकी वजह से हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है।
1: जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा, अगर इलाज के विषय में ही हम जानना चाहें, तो क्या इलाज जो है वो लंबा चलता है माइग्रेन का, या फिर जिस समय तकलीफ हो उसी समय इलाज की आवश्यकता होती है?
0: जी नहीं, माइग्रेन का इलाज अब बोला जाए तो माइग्रेन में ऐसा तो कुछ है नहीं कि एकदम से कुछ दवाई देंगे एकदम ठीक हो जाएगा, माइग्रेन लंबा रहता है, तो उसकी एक ट्रीटमेंट है जिसका एक कोर्स होता है, वो कंटिन्यूस लेना पड़ता है।
1: जी
0: वो लोगों की हैबिट के हिसाब से अब तो ट्रीटमेंट काफ़ी चेंज हो गया, अब हो गया कि पर्टिकुलर मरीज के हिसाब से ही हमें ट्रीटमेंट करना होता है, कि हर
1: जी
0: मरीज की क्या दिनचर्या है, किसके हिसाब से करना है, तो हम उस चीज़ों पर भी फिर ट्रीटमेंट करते हैं।
1: अच्छा
0: हालांकि ट्रीटमेंट इसमें लंबा चलता है
1: जी,
0: अगर माइग्रेन है तो।
1: और सरदर्द में इलाज की बात वो किस तरह सही होता है?
0: सरदर्द की बात करें तो सरदर्द भी हमें पहले देखना है कि कारण क्या है
1: जी
0: सरदर्द का,
1: जी
0: अगर कोई ठोस कारण मिल जाता है तो हम फिर उसका इलाज करते हैं, सरदर्द ठीक हो जाता है।
1: जी जिस समय दर्द हो रहा है उस समय अगर दवाई लेके और दर्द ठीक हो जाता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सरदर्द साधारण था और ठीक हो गया?
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरदर्द किसी भी दर्द में दवाई लोगे तो आपको दवाई का असर आएगा,
1: हाँ
0: वो उस समय तो ठीक करेगा, लेकिन जो बीमारी उसके पीछे है वो नहीं पता
1: जी
0: लगेगी,
1: जी
0: तो सरदर्द फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा हो जाएगा। तो उन सब कंडीशंस में ये करना है कि एक बार डॉक्टर से परामर्श ले लें, उनको अपने लक्षण सारे बताएं, तो वो एक बार हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं सरदर्द नॉर्मल है, माइग्रेन है, टेंशन है,
1: जी
0: या किसी ब्रेन में कोई और चीज़ तो नहीं है।
1: जी
0: कोई
2: ये सब हो रहा है, मतलब 1 महीना हो गया है।
0: अच्छा, और आप काम क्या करते हैं?
2: काम तो हम खेती बाड़ी का काम करते हैं।
0: अच्छा, चलिए अब मैं इसमें अगर बताऊं तो अब ये सरदर्द हमें देखना पड़ता है कि किस साइड, पूरे सर में हो रहा है कि एक साइड हो रहा है, या अभी खेती बाड़ी में इस समय गर्मी बहुत है, कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी सरदर्द होने लगता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा इस समय। आपको काम में क्या मतलब कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं तो सर में हो सकता है कि आपके पास पानी की कमी हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है
2: अच्छा
0: जी। और मतलब कोई ऐसा नहीं उल्टी वगैरह तो नहीं होती है साथ में सरदर्द के साथ, जी मिचलाना ऐसा कुछ तो नहीं है साथ में, मितली
2: जी, ऐसा
0: वगैरह?
2: होता है, मतलब मतलब जी मचलती।

0: सीधे उसमें फूस भी आता है, वो थूकते रहते हैं ऐसा।
1: तो एक बार ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए, क्योंकि जी में चलाना अगर ये हार है सर दर्द के साथ, तो हो सकता है कुछ और भी कारण हो उसका। तो एक बार नज़दीकी किसी डॉक्टर से आप एक बार परामर्श ले लीजिए, हो सकता है माइग्रेन भी हो आपके पूरे सर में, नहीं अगर एक साइड भी हो रहा है तो भी हो सकता है माइग्रेन हो, या पूरे सर में हो तब भी माइग्रेन हो सकता है, और भी कुछ कारण हो सकता है, तो एक बार अपने परामर्श लीजिए डॉक्टर से।
2: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए डॉक्टर साहब। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो कई बार कहा जाता है कि दिमाग में जो पेट के कीड़े हैं उनके अंडे पहुंच जाते हैं,
1: जी
2: वो भी कई बार दर्द की वजह बनते हैं, तो क्या
1: जरूर,
2: वो माइग्रेन की वजह बनते हैं या फिर उनसे सामान्य सर दर्द होता है?
1: वो सर दर्द अलग टाइप, वो माइग्रेन एक अलग टाइप बीमारी है।
2: हाँ
1: माइग्रेन में ब्रेन के अंदर कुछ नहीं होता है, उसमें वो
2: अच्छा
1: ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस उस
2: जी
1: बेसिकली उस
2: जी
1: बीमारी को बोलते
2: जी
1: हैं।
2: जी
1: तो उसमें ब्रेन में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उसके अलग ट्रीटमेंट होता है, उसमें ब्रेन में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है वो, तो उसका इलाज अलग तरह से चलता है।
2: लेकिन सरदर्द उसमें भी एक
1: उसमें सर
2: कंप्लेंट
1: दर्द
2: होती
1: हो
2: है।
1: सकता है, सीजर मतलब दौड़े झटके भी आ सकते हैं उसमें, तो वो सारे सिम्टम इसीलिए हम देखते हैं, उसके हिसाब से जांचें कराते
2: जी
1: हैं।
2: इसीलिए लक्षणों को सही से जांचना और समझना बहुत
1: बहुत
2: जरूरी है।
1: जरूरी है
2: जी अगर किसी को सिस्टोसरकोसिस है, जैसा आपने भी स्वीकार किया दर्द की वजह होता है, तो ऐसी स्थिति में इलाज किस तरह होता है, कितना लंबा इलाज जरूरी है?
1: उसमें, बहुत लंबा इलाज नहीं होता उसमें, मैं पहले एक बार देखना पड़ता है उसको है क्या न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। अगर ब्रेन में वो कीड़े हैं तो उनका एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है, वो हम शुरू करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो उसमें कुछ सर्जरी की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्ट ऑफ द 99% केसेज में वो दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं।
2: अच्छा हम एक बार फिर से महिलाओं की बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि महिलाओं की कंप्लेंट ज़्यादा रहती है सिर दर्द की। क्या खास सुझाव है आपका उन महिलाओं के लिए जो सिर दर्द से हमेशा परेशान रहती हैं?
1: पहले तो मैं ही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला तो तनाव है, एक जो महिलाओं के पास जो सबसे ज़्यादा तनाव लेती हैं आजकल की हमारी
2: जी
1: माताएं बहनें की, तो तनाव कम लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, उनको टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, तो मुझे लगता है कि व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, तो इन चीज़ों से। दूसरा खाने पाने की जिनकी हम बात कर रहे थे, खान पान में सुधार करना चाहिए और खाना टाइम से लेना चाहिए,
2: जी
1: तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं,
2: अपनी दिनचर्या सुधारें वो
1: दिनचर्या
2: ज़्यादा उचित
1: सुधार
2: है।
1: बहुत
2: अगर
1: ज़्यादा।
2: बहुत ज़्यादा दर्दनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कई बार लोग जो वजह है उसको ट्रीट नहीं करते, बस दवाई ले ली और कुछ समय के लिए फौरी तौर पे उन्हें आराम मिल जाता है, तो वो किस तरह का नुकसान अपने साथ
1: वो
2: करते
1: बहुत
2: हैं?
1: ज़्यादा बड़ा नुकसान है वो, जितनी भी ज़्यादातर दर्द की दवाइयाँ होती हैं उससे हमारी किडनी डैमेज हो रही होती है, हमारे पेट में अल्सर बनने के खतरे बढ़ गए होते हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। उन इसको हर चीज़ का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू ये दवाइयाँ चलाई जाती हैं। ऐसे हम रैंडम पेन किलर ले लेते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन वो हमारे लंबे उसमें अवधि में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं शरीर को, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए।
2: जी यानी दर्दनाशक दवाइयाँ बिना डॉक्टरी सलाह के खाना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत को दावत देना
1: दावत
2: है।
1: देना बिल्कुल
2: जी तो हम आशा करते हैं हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि सरदर्द कभी भी साधारण नहीं होता, और इसको साधारण सरदर्द मान के हम घरेलू इलाज ना करें, अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और उचित इलाज कराएं,
1: कराएं।
2: तभी हम निजात पा सकते हैं, चाहे फिर वो माइग्रेन ही क्यों ना हो।
1: जी जरूर,
2: और जहाँ तक माइग्रेन की बात है, तो श्रोताओं डॉक्टर साहब ने जैसा बताया माइग्रेन में लंबा इलाज भी चल सकता है, ये निर्भर करता है कि मरीज की स्थिति क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और कितने दिनों से उसे ये समस्या है।
1: समस्या है।
2: जी बच्चों की बात आपने की थी डॉक्टर साहब, तो बच्चों के लिए एक बार फिर हम आपका सुझाव जानना चाहेंगे क्या है, क्योंकि आज स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चों के ऊपर बर्डन भी काफ़ी है, एक तरफ स्कूल का काम, दूसरी तरफ माता पिता की इच्छाएं, ये सब साथ साथ चलती रहती हैं, और खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं जो नुकसान पे नुकसान करती हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चों से?
1: बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल का जो स्क्रीन टाइम, माता मतलब जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको ही बोलना चाहूँगा
2: जी
1: कि बच्चों को जितना कम हो कि अपना काम करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें, मोबाइल से दूर रखें बच्चों को, जिससे कि उनके डेवलपमेंट में कुछ फ़र्क ना पड़े, उनको एक्टिव स्पोर्ट्स में रखें, नॉर्मल खेल कूद में भेजें, स्कूल के बाद उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जितना मिनिमम होमवर्क है उसको करें, और उनको खेलने के लिए टाइम दिया जाए, ना कि उनको सिर्फ मोबाइल दे दिया जाए, तो एक्टिव स्पोर्ट्स ज़्यादा बेटर है उनको खेलने के लिए, प्लेग्राउंड में जाके खेलें ना कि स्क्रीन मोबाइल में,
2: जी
1: उन चीज़ों के ऊपर से थोड़ा जो पैक्ड फूड आ रहा है आजकल बच्चे बहुत खा रहे हैं, उस चीज़ सब चीज़ों को अवॉइड करें। अगर बच्चा अगर बहुत ज़्यादा सर दर्द की अगर कंप्लेन कर भी रहा है, तो एक बार उसका आई टेस्ट जरूर करवाएं।
2: जी स्क्रीनिंग के बाद इलाज हमेशा सफल रहता है, और एक डॉक्टर ही बेहतर निर्णय ले सकता है कि किस तरह की इलाज की जरूरत है। डॉक्टर विकास

0: गुप्ता जी, आप स्टूडियो में आए और आपने माइग्रेन एवं सिरदर्द की समस्या के विषय में, उसके आधुनिक इलाज के विषय में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
2: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज, चौपला, बरेली।
3: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
3: 9837000000।

रेडियो हेल्पलाइन। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आज का विषय था माइग्रेन और सिरदर्द, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर विकास गुप्ता। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईटी नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेंद पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा, नीरज चोपड़ा का मुकाबला

0: कब है, देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का है, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं, और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटे, जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति याराजी वापसी कर रही है, राष्ट्रमंडल खेलों में वो भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है, अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर, गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे, डेकाथलन में तेजस्विन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास, और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
1: सायंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया, चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए, ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला के जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था उसका एक्लेमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है, तो लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x100 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लमेटाइज करने का व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहाँ जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहे हैं।
1: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है। सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
0: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम हैं उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में। 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे, तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
1: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी। मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी। साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की,

0: जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
1: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एंसी सोजन की बात आपने की थी, एंसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एंसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाउ से। उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
1: हाई जंप में, 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहाँ पे वो 8th आई है 1.77 मीटर। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया का भी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले, और यहाँ से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
0: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
1: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना एशियन गेम्स पे। वुमेन्स टीम अगर इतना अच्छा कर सकते है, वहाँ पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि

0: एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है, तो उसी को साई इस बार मद्देनज़र पे रखती हुए काफ़ी सारे जापान में जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफ़ी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेंस टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुलटन की जो साइड है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा और शॉर्ट मरीन की जो वुमेंस टीम है उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेंस टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
1: फोर्थ प्लेस
0: फोर्थ
1: फिनिश।
0: प्लेस फिनिश जब हम लोग हॉकी वुमेंस में लाए थे तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए और वुमेंस का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो

0: जैसे क्रेग फुल्टन की जो साइड है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
1: फोर्थ प्लेस
0: फोर्थ
1: फिनिश।
0: प्लेस फिनिश जब हम लोग का हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते।
2: महिला हॉकी की चर्चा
1: जी
2: करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है, कि हम 5वें स्थान पर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 20, 21, 22 साल की 11 लड़कियां। तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अन्नान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा,
2: जी
1: सविता लेजेंडरी प्लेयर है, और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पे इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है, और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ड मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
2: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है 2 बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा,

0: आज चिराग और सात्विक पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं। तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है।
1: जी
0: और एक कोर ग्रुप आप देखिए, लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का। तो यहाँ पर त्रिशा और जॉली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखें, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नज़र रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है ज़रूर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हांजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो और एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स। लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोराल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद मैं आऊँगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में, इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए। तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज़ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली अजिंक्य रहाणे में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है, लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
0: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण। तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का। लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा। और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन, पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली। महिला टीम से कितनी उम्मीद है आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले PKL की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है PKL से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का PKL में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया सी ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेन्स टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है और

0: साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का, स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कंपटीशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास। वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल, बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है, जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थीं। मुना, यहां पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता
0: नहीं
1: में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
2: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो चार महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और चौथे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 चीनी जोड़ी को हराकर विमेन्स डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
0: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में काफी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था। कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है, जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल स्टैंडिंग्स में, तो ये काफी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह, दिया चौटाला जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं। तो शरत कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चौटाला, इन तीनों में से काफी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था, जैसे आपने जिक्र किया। तो इनसे आई थिंक मेन्स टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। जी हाँ, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था, और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना आप?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है, और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को, और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
0: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते, ऐसे कुछ लोग मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का

0: ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज़ को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं, और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार हैं, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मुना पार्थ सारथी, आपका, सायंतन मोइत्रो, आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद।
0: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

राहत फतेह अली खान की आवाज को अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेज में। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में आपको सुनवा रहे हैं जुबीन गर्ग का गाया गीत, फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं।

0: नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर तक का हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: The approach in Semicon 2.0
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी, क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे।
0: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को माई गव प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी

0: के लिए माई गॉव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने माई गॉव को एक अच्छी पहल बताया।
2: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
0: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच

0: किया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लिबास फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत आर डी बर्मन का।

दिल है कि मानता नहीं। अभी आपने इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल को सुना। अब सुनिए आरती मुखर्जी को, फिल्म है मासूम। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

खयाम के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए। इस बार फिल्म है रजिया सुल्तान, आवाज लता मंगेशकर की, और इसे लिखा है जानिसार अख्तर ने।

अभी आपने जगजीत सिंह को फिल्म अर्थ में सुना। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही सब।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

जी हाँ दोस्तों, हजरत जयपुरी, इनके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि शब्दकार लिखें, शायर लिखें या गीतकार लिखें। हजरत जयपुरी का असली नाम था इकबाल हुसैन। 15 अप्रैल सन 1922 में गुलाबी नगरी जयपुर में वो पैदा हुए। यहीं से उन्होंने उस समय की मिडिल तक की अंग्रेजी में पढ़ाई की। बाद में उनके दादाजी फिदा हुसैन ने उन्हें उर्दू और फारसी की मुकम्मल तालीम दी। इकबाल हुसैन कोई 20 साल के रहे होंगे जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया। उनकी शायरी में जब मोहब्बत का रंग आन मिला तो उनकी शायरी जैसे खुशबू और ताजगी का निखार लिए हुए आ गई।

बात 1940 की है जब हसरत जफरी मुंबई आए और बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। 11 रुपए बतौर तनख्वाह उन्हें मिलती थी। चूंकि शायरी का शौक उन्हें था ही, तो वो मुशायरों में शिरकत किया करते थे। जिस तरह हीरे की पहचान जौहरी को होती है, पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर ने हसरत को ऐसे ही किसी मुशायरे में देखा और अपने बेटे राज कपूर से, जो कि फिल्म बरसात का निर्माण कर रहे थे राज कपूर, हसरत जयपुरी की सिफारिश कर दी और इकबाल हुसैन से वो बन गए हसरत।

बरसात फिल्म का हसरत जयपुरी साहब का ये पहला रिकॉर्डेड गाना था। फिल्म बरसात में ही एक और गाना उन्होंने लिखा जो एक ड्यूएट था।

ग्रेट शोमैन राज कपूर ने अपनी जो क्रिएटिव टीम बनाई उसमें संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और मुकेश, ये उस जमाने का माना हुआ सफलता का राज कपूर का जैसे फार्मूला था। दोस्तों

दूसरे बैनर के लिए भी इस क्रिएटिव टीम ने काम किया है। प्रेम के मधुरता की और जीवन दर्शन की जिस गाने में बात होती वो गीत शैलेंद्र लिखते, और जिस गाने में हुस्न इश्क की बात, मोहब्बत के शबनम की नजाकत की बात होती वो गाना हसरत जयपुरी साहब लिखते।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह और इज्जत थी। गीतकार शैलेंद्र साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे मारे गए गुलफाम, इस फणीश्वर नाथ रेणु की लघु कथा पर आधारित। वो स्वयं उच्च कोटि के गीतकार थे, पर वो अपने इस साथी को नहीं भूले और हसरत जयपुरी ने भी जैसे कलम तोड़ लिखा कि अमर हो गया वो गाना।

शैलेंद्र ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाए तो हसरत जयपुरी ने भी फिल्म हलचल की कहानी लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दोस्तों, 1951 में आई इस फिल्म के निर्माता थे के आसिफ साहब। गाने ख्वार बाराबंकी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे मोहम्मद शफी साहब और सज्जाद हुसैन साहब।

हसरत जयपुरी ने आर के बैनर के लिए 1949 से 1971 तक मुसलसल गाने लिखे। मेरा नाम जोकर और कल आज और कल इन फिल्मों के फ्लॉप होने तक हसरत जयपुरी आर के बैनर के लिए लिखते रहे। बाद में भी उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए

दोस्तों, हसरत जयपुरी को कई इनाम और इकराम से भी नवाजा गया है। 1966 में आई फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओं को फिल्म फेयर का बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड उन्हें मिला।

हसरत जयपुरी को उर्दू कॉन्फ्रेंस का जोश मलिहाबादी अवार्ड भी मिला। मेरे हुजूर फिल्म के एक गाने झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, इसके लिए भी उन्हें ब्रज भाषा गीत का डॉक्टर अंबेडकर

वर्ल्ड यूनिवर्सिटी राउंड टेबल की डॉक्टरेट भी उन्हें मिल चुकी हैं। 1972 में आई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना के लिए भी हसरत जब

0: पुरी साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों, हसरत जयपुरी ने 350 फिल्में की हैं और 2000 से ज्यादा रिकॉर्डेड गाने उनके पायदार गीतकार होने की गवाही देते हैं। हसरत जयपुरी ने शंकर जयकिशन, सज्जाद हुसैन से लेकर आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित तक के सभी संगीतकारों के साथ काम किया है। गीतों का इतना बड़ा खजाना उनके नाम है, इसका हसरत जयपुरी को कभी भी गुमान न था। कभी बेखुदी में उन्होंने कहा था कि हमने जो नक्श छोड़े हैं वो कभी मिट नहीं सकते हैं। ये कोई गलत बयानी नहीं थी, ये हकीकत खुद उनके हमजबानी थी। दोस्तों, इसी की ताईद करते हैं उनके लिखे गाने। वैसे तो हसरत जयपुरी ने कई फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं। दोस्तों, उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं ससुराल,
1: तेरी

पगला कहीं का इस फिल्म का ये जो गाना उन्होंने लिखा है दोस्तों, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, वाकई इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उनके लिखे हुए तमाम गाने आज भी हमारी जहनों में रचे बसे हुए हैं।

0: तुम मुझे।
1: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने के जाने माने गीतकार हसरत जयपुरी पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, संपादक व प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब अशोक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

0: में चार चार छह छह घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर टू सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया। जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना
0: जी
1: के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
2: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग

0: अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो। कैसे देखते हैं, चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है, लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है, और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है, उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोर दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोर दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था, तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात

0: सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा? और आज जब हम वहाँ बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं, तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
1: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनी है यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया, तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं। 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए उनके लिए काफी कुछ, एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
2: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहाँ की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहाँ के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
3: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की तसदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति के अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी

0: गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव-गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
2: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे, तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वने के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरी कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव-गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे, बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके, उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी

0: आरंभ किया जो आज पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखा ग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखा ग्रस्त राज्य होते हैं, वहाँ खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहाँ हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुँच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
1: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
0: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी, आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289-094-044।
4: इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी का राग अभो की कानना में गायन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का राग आब होगी कन्नड़ा में गायन। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण रात्रि के 11

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया।

0: First ever century for an Indian and third quickest overall as his team crushed Afghanistan by 127 runs in the third T20 international to complete a 3-0 series sweep in New Delhi tonight. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं और हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।